एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 9वीं तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। प्रातः के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देशभर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए चिंतन, विषय है रोशनी।
1: रोशनी, उजाला या प्रकाश, तीनों शब्दों का भाव एक ही है। अंधेरों को हराने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। रोशनी को हम जीवन का पर्याय भी कह सकते हैं। जब सब तरफ गहन अंधकार हो, तब हमें रोशनी की एक छोटी सी किरण आगे का रास्ता दिखाती है। जैसे सूर्यास्त के बाद पृथ्वी अंधकार में लीन हो जाती है, तब हजारों सितारे मिलकर भी धरती के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते, लेकिन एक छोटा सा दिया अपनी बाती की लौ जलाकर हमारे आसपास उजियारा फैला देता है और हम अपने आसपास की चीजों को सुगमता से देख पाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब घना अंधेरा होता है, तब हमारी आंखें होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन माचिस की तीली की लौ या फिर लाइटर से उत्पन्न प्रकाश में हम अपनी जरूरत की चीजों को आसानी से देख लेते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमें देखने के लिए प्रकाश या रोशनी की आवश्यकता होती है। बाहरी अंधेरे को दूर करने के लिए हम कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे मन के भीतर के अंधेरों को हराने के लिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जो एक योग्य गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए। जब हमारे मन में ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है, तो हमारा मन रोशन होने लगता है, और जब ज्ञान चक्षु खुलते हैं तो हमें ये संसार नए स्वरूप में नजर आता है। वास्तविक रूप से हम अपनी आंखों पर अज्ञान का पर्दा डालकर अपना जीवन ढो रहे हैं, और इसी अज्ञानता के कारण मनुष्य मैं, मेरा, भेदभाव और संकीर्ण मानसिकता के साथ जी रहा है। इस प्रकार की छोटी मानसिकता के साथ जीवन जीने से हम स्वयं को श्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह के जाल में मनुष्य उलझता है, तब जीवन दुखी हो जाता है और हम जीवन के रास्तों से भटककर एक गहरे अंधकार में चले जाते हैं। जिंदगी को सुचारू चलाने और इंसानियत के रास्तों पर चलने के लिए हमें अपने मैं से बाहर निकलना होगा। जिस प्रकार काली अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है और धरती पर उजाला होता है, ठीक वैसे ही हमें भी अपने मन के भीतर के तम को हराने के लिए अपने मन में एक नई रोशनी कायम करनी होगी। यही ज्ञान ज्योति हमें सत्य की राह पर ले चलेगी।
0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था रोशनी। यह आकाशवाणी जयपुर का आमेर चैनल है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

वंदना सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए पहला भजन आपको सुनवा रहे हैं जगदीश नारायण शर्मा की आवाज में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृ प्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:10 पर और सुबह 11:00। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा ठीक सुबह 9:30 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 11:30 पर और रात्रि 10:00 से 11:00 तक। युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे ठीक शाम 5:05 पर और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती नी बात। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राधे श्याम और साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन। आइए श्रोताओं।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए। सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: इसी के साथ कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं टिकम चंद बोहरा से कविता पाठ।
3: मैं टिकम चंद बोहरा, हमारी भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, सबको साथ लेकर आगे चलने की

उस सांस्कृतिक विरासत को इंगित करती हुई मेरी कविता है। कविता का शीर्षक है भारत का जयगान हो। भारत का जयगान हो क्यों, किस तरह, ये इस कविता में आपके सम्मुख मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। मात पिता मातृभूमि का मन में सदा सत्कार हो। मात पिता मातृभूमि का मन में सदा सत्कार हो। मत भिन्नता होने पर भी साथी हमें स्वीकार हो। सभ्य भारत के नागरिक पहली यही पहचान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। धर्म पंथ के नाम पर ना अंधविश्वास का पोषण हो। परंपरा के नाम कभी ना मानव का शोषण हो। धर्म पंथ के नाम पर ना अंधविश्वास का पोषण हो। परंपरा के नाम कभी ना मानव का शोषण हो। रूढ़िवाद के स्थान पर शिक्षा में विज्ञान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। निर्मल हमारा हृदय हो, दया का नहीं अभाव हो। आपस के व्यवहार में सदा स्नेह का भाव हो। कि निर्मल हमारा हृदय हो, दया का नहीं अभाव हो। आपस के व्यवहार में सदा स्नेह का भाव हो। हर मानव के प्रति हमारी नजरों में सम्मान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। सादगी शील संयम भरे हम सबके संस्कार हो। सादगी शील संयम भरे हम सबके संस्कार हो। तिरस्कार किसी का ना करे ना मन में अहंकार हो। मंगल की हम करें कामना सबका सदा कल्याण हो। मंगल की हम करें कामना सबका सदा कल्याण हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ की भेद रहित भारत के इंसान हो। अपने कर्म में यकी रखें नहीं चमत्कार की आशा हो। अपने कर्म में यकी रखें नहीं चमत्कार की आशा हो। अपने हाथों से ही लिखी जीवन की परिभाषा हो। नैतिक जीवन मूल्यों का वाणी से गुणगान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। जाति लिंग वर्ण के नाम कभी ना कोई भेद हो। हमारा संविधान भी यही कहता है कि जाति लिंग वर्ण के नाम कभी ना कोई भेद हो। अपनी भूल त्रुटि पर महसूस हमें खेद हो। कि जाति लिंग वर्ण के नाम कभी ना कोई भेद हो। अपनी भूल त्रुटि पर महसूस हमें खेद हो। मातृभूमि और मानवता सबसे मूल्यवान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। जाति पंथ के भेद रहित भारत के इंसान हो। मानवता के मंगल पथ पर भारत का जयगान हो। भारत का जयगान हो। मेरी दूसरी रचना है मां पर। मां किसको प्यारी नहीं होती है, लेकिन मां की जो संवेदनाएं होती है वो अपने बच्चे के प्रति बहुत गहरी होती है। इतनी गहरी कि रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है। कि रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है। चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। नित्य नई खुशियां उगाती है मेरे दामन में। कि नित्य नई खुशियां उगाती है मेरे दामन में। दुआओं के इतने बीज माँ मेरी बो देती है। रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है। चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। सिर झुकाता हूं जब भी उसके कदमों में। कि सिर झुकाता हूं जब भी उसके कदमों में। हर बार आशीषें माँ मेरी सो देती है। रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है। चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। उसके लिए तो मैं आज भी मासूम बच्चा हूं। कि माँ के लिए तो मैं आज भी मासूम बच्चा हूं। मेरे गुनाहों गंदगी माँ भी धो देती है। रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है।

अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। अंधियारा ए मायूसी जब भी महसूस करता हूँ, अंधियारा ए मायूसी जब भी महसूस करता हूँ, अपनी माँ मुझे उम्मीद की नई लो देती है। रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। माँ की पनाह हर खतरे से हिफाजत करती है, माँ की पनाह हर खतरे से हिफाजत करती है, माँ से जुदाई की कल्पना आंखें मेरी भिगो देती है। रोटी अगर एक मांगू तो वह मुझे दो देती है, चोट अगर मुझे लगे तो माँ मेरी रो देती है। मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है। बिन मांगे ही अनचाहा माँ मुझे अपने आप देती है, कि बिन मांगे ही अनचाहा माँ मुझे अपने आप देती है। डर जाता हूँ जब भी मैं, माँ सीने का ताप देती है, मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है। रूठने पर भी माँ मुझको, रूठने पर भी माँ मुझको रोटी चुपचाप देती है, मेरी सलामती के वास्ते माँ खुद को संताप देती है। मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है, मेरी हर गलती पर माँ खुद पर पश्चाताप लेती है, मेरी हर गलती पर माँ खुद पर पश्चाताप लेती है, मेरे हर गुनाह को माँ खुद पर निष्पाप लेती है। मेरे बिन बोले ही माँ मन मेरा भांप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है, मेरी आवाज से ही माँ मेरा बुखार नाप लेती है। मेरी अगली कविता है जो युवाओं के लिए अनुकरणीय होंगी। चलो चलें एक काम करें, कि चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। आओ मन में भर लें जोश, बिल्कुल नहीं खोए होश, आओ मन में भर लें जोश बिल्कुल नहीं खोए होश, पहुंचे बिना मंजिल पर तनिक नहीं आराम करें। कि गुरु का कहना मान लें प्रण मन में ठान लें, कि गुरु का कहना मान लें प्रण मन में ठान लें, कर जाएं कुछ हम भी ऐसा कि दुनिया हमें सलाम करें। चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। चुनौती हम स्वीकार करें और बाधाओं को पार करें, चुनौती हम स्वीकार करें बाधाओं को पार करें, लघु मार्ग अपनाए बिना नो शॉर्टकट, लघु मार्ग अपनाए बिना जग में ऊंचा नाम करें। चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। एकाग्र करें मन मानस को, एकाग्र करें मन मानस को, छोड़े ईर्ष्या आलस को, शत्रु भय अहंकार है, शत्रु भय अहंकार है इनका काम तमाम करें। चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। रेखा अपनी बढ़ाएं आगे मैदान छोड़कर ना भागें, रेखा अपनी बढ़ाएं आगे मैदान छोड़कर ना भागें, साहस स्वविश्वास से हासिल नया मुकाम करें। चलो चले एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। महापुरुषों से पाए शिक्षा पर भूले नहीं गुरु की दीक्षा, महापुरुषों से पाए शिक्षा भूले नहीं गुरु की दीक्षा, मात पिता और गुरुवर को सदा हम प्रणाम करें। चलो चले एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। अवसर ना कोई खोना है ना पछताना ना रोना है, अवसर ना कोई खोना है ना पछताना ना रोना है, नई ऊंचाइयां छूले हम कायम नए आयाम करें। चलो चले एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें। कि आओ ले हम एक शपथ चलें सदा ही नेक पथ, कि आओ हम ले एक शपथ चलें सदा ही नेक पथ, माता पिता को आए शर्म ऐसा ना कोई काम करें।
कि उज्जवल

0: अपना चरित्र हो, अच्छे अपने मित्र हो। दुर्व्यसनों में पढ़कर हम जीवन नहीं हराम करें, चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें, चलो चलें एक काम करें, पाए बिन हम लक्ष्य को तनिक नहीं विश्राम करें।
1: इस कविता के साथ ही कार्यक्रम वातायन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: कहानियाँ सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम और आपके साथ आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से हम जुड़े हैं। बिल्कुल आज अब इस वक्त हो गया है 7:34 और 35वें मिनट की तरफ सेकंड की सुई दौड़ रही है। एक और खास व्यक्तित्व की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, जिसका शुरू में मैंने जब इतिहास की बात की मैंने जिक्र किया था, मैं बात कर रहा हूं मजरूह सुल्तानपुरी साहब की। 1 अक्टूबर 1919 को आपका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध शायर और गीतकार रहे आप। उनका पूरा नाम असरार उल हसन खान था। इनके लिखे हुए कलाम में जिंदगी के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराने की जबरदस्त क्षमता थी और मजरूह की कलम की स्याही नज्मों के रूप में एक ऐसी गाथा के रूप में चारों ओर फैली जिसने उर्दू शायरी को महज मोहब्बत के सब्ज बागों से निकालकर दुनिया के दीगर सहा सफेद पहलुओं से जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने रोमानियत को नया रंग और ताजगी प्रदान करने की पूरी कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए। सुल्तानपुरी ने 4 दशक से ज्यादा लंबे सिने कैरियर में करीब 300 फिल्मों के लिए लगभग 4000 गीतों की रचना की है। इनकी बहुत ही खूबसूरत फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अपनी कलम लेखनी को रूप दिया है, जिसमें अंदाज, साथी, तांगे वाला, धर्म काटा, पेंग गेस्ट, 9-2-11, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, बंबई का बाबू, 3 देवियां, ज्वेल थीफ, अभिमान और एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म पाकीज़ा। जी, उसी के बहुत ही प्यारे संगीत में से जिसे गाया है स्वर साम्राज्ञी लता जी ने, हम उनको श्रद्धा

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के माध्यम से और उनके सभी चाहने वालों की तरफ से। बिल्कुल जी, और एक और खास बात यह है कि जब जब मजरूर जी की बात होती है, जब जब मजरूर सुल्तानपुरी की बात होती है, तब तक उनके उन नगमों की बात होती है जिसको हम हमेशा से याद करते आए हैं और याद

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक जी प्रोग्राम में, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आप सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। और आज मैं एक और खास, एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व की बात करूंगा जिन्होंने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संपूर्ण जीवन अपना देश के नाम कुर्बान कर दिया। जी हाँ, आज है उनकी डेथ एनिवर्सरी, 1 अक्टूबर 1979 को। आप हमारे बीच नहीं रहे, मैं बात कर रहा हूँ चंदन सिंह गढ़वाली जी की। भारत के क्रांतिकारियों में से एक रहे चंदन सिंह गढ़वाल, रेजिमेंट के प्रमुख थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष जोरों पर था उनके, तो उसके दमन हेतु ब्रिटिश सरकार ने चंदन सिंह की गढ़वाल रेजिमेंट को नियुक्त किया। और आंदोलन के दौरान जब अंग्रेज अधिकारियों ने अहिंसक प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने की आज्ञा दी, तब चंदन सिंह ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसके फलस्वरूप उन्हें दंड दिया गया और उन्हें उनके पद से अलग कर दिया गया। चंदन सिंह ने मेसोपोटामिया और फ्रांस में भी कार्रवाइयां देखी, लेकिन आप कहते हैं कि जब उन्हें यह लगा कि अपने देश में ही अंग्रेज अपने देश के ही लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, तब चंदन सिंह ने फैसला किया कि अब वो इस अंग्रेज गोरी सरकार के खिलाफ काम करेंगे। और उन्होंने जीवन भर उसके बाद अपने संपूर्ण जीवन को देश की सुरक्षा में, देश की रक्षा में समर्पित कर दिया। ऐसे महान सपूत को, देश के सपूत को हम नमन करते हैं, उनको हम श्रद्धा सुमन करते हैं अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर के माध्यम से।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: मंगल भवन
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: जी हाँ, वेलकम बैक। और बहुत सारी खूबसूरत फिल्में इनका नाम मैं लेने जा रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये किसकी फिल्में हैं। मशाल, प्यासा, गाइड, वंदनी, टैक्सी ड्राइवर, बाजी और आराधना, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, पाशा संगीत, पाश्चात्य संगीत, सबसे सबके साथ एक बहुत शानदार फ्यूजन, बहुत ही शानदार आपने संयोजन करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे, बहुत ही जिसको मैं सिर्फ दिल से नमन करता हूं और पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले हैं। बिल्कुल, उनका नाम है सचिन देव बर्मन साहब। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 1 अक्टूबर 1906 को आपका जन्म हुआ और आपको बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार और गायक के रूप में हिंदी और बांग्ला फिल्मों के रूप में जाना जाता है। एसडी सचिन देव बर्मन को एसडी बर्मन के नाम से भी जाना जाता है। सचिन देव बर्मन भारतीय संगीतकार जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। बिल्कुल, आपको बताएं कि इतनी सारी फिल्में हैं, उनमें मुख्य गीत उनके हम है रही प्यार गीत और तकदीर से तदवीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना दे, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, है अपना दिल तो आवारा, मतलब एक से बढ़कर एक नगमे, एक से बढ़कर एक संगीत और शानदार विलक्षण प्रतिभा के आप धनी थे और ताल और मधुर संगीत का चिरस्थाई संसार जो आपने खड़ा किया उसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा हमारे अंदर उनके रूप में विद्यमान है। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में।
1: हर शीशे के दिल में एक तस्वीर है, एक शीशा दिल हमारे सीने में भी है जो हर दम इस मोहनी सूरत को छुपाए रखता है। धंधे बंश एक बात सुनोगी, तुम कोई वादा नहीं कर रही हो,

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरे साथ यानी आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। मैं हूं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव संजू। और एक और खास व्यक्तित्व की मैं बात करूंगा, उसके बाद फिर 8 से 9 तक नूपुर आपके साथ आएंगे कुलश्रेष्ठ इसी प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। लेकिन उससे पहले मैं एक और बहुत ही विशेष व्यक्तित्व की बात आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। जी हां, 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में जन्मी एनी बेसेंट जी की, भारत की मिट्टी से गहरा लगाव रखने वाली प्रख्यात समाज सेवी, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी रही हैं आप। एनी बेसेंट ने कई मौकों पर अन्याय का कड़ा प्रतिरोध कर आयरन लेडी की छवि बनाई थी। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म से बहुत आकर्षित थी। उन्हें थियोसॉफी का प्रसार करने के लिए भारत भेजा गया था। उन्हें भारत से अद्भुत प्रेम और अनुराग था। उन्हें भारतवासियों द्वारा उन्हें दिया गया सम्मान और आदर भी दर्शनीय रहा। आध्यात्मिक और राजनीतिक रूप से सोए हुए भारत को जगाने के लिए भारत को अपना घर कहने वाली एनी बेसेंट ने दुनिया भर के धर्मों का गहन अध्ययन किया। उन धर्मों को जाना, परखा और समझा कि वेद और उपनिषद का धर्म ही सच्चा मार्ग है। लेखिका, समाज सेविका और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप सुनते रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और 8 बजे इसी प्रोग्राम में 8 से 9 बजे तक आएंगे आपके साथ में पुनः नूपुर कुलश्रेष्ठ और 9 बजे दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर कार्यक्रम में हाजिर रहूंगा मैं आपका अपना दोस्त 10 बजे तक। और दिन भर के जो प्रोग्रामों की श्रृंखला है वो चलती रहेगी। बहुत विविध तरह के प्रोग्राम और अलग सुंदर सुंदर तरह के विषय के साथ हम बहुत ही खूबसूरत गीतों के साथ, बहुत ही मधुर जिसे कहते हैं लूसिड नगमों के साथ आपके पास आते हैं। हम हैं आपके अपने आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। तो एक और नगमा और मुलाकात होगी आपसे अब 9 बजे प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में। तब तक मुझे संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया है। और अगर बात करें खेलों की, तो जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल

फाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। इसके अलावा पुरुष क्रिकेट में कल रात भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: संगठनों ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
1: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिन्दी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रो एंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
2: आयुष्मान भारत पीएम जय
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: हमले के कारण दो मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
2: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
3: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
4: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा यह कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो

0: है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल पर आपका अपना कार्यक्रम कुछ दिल से, और मैं हूं आपकी दोस्तों रेडियो होस्ट हीना जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का इस कार्यक्रम

वैसे हमारे शरीर में दौड़ता हुआ रक्त हमारे लिए शायद एक सामान्य सी चीज है, लेकिन कभी आपने सोचा है जिस व्यक्ति को अस्पताल में तुरंत रक्त की जरूरत हो उसके लिए यही रक्त जीवन और मृत्यु के बीच की उम्मीद बन सकता है। किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को, किसी बड़ी सर्जरी के मरीज को, किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति को या किसी नियमित रक्त की आवश्यकता वाले मरीज को समय पर रक्त मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त देने वाला अक्सर यह भी नहीं जानता कि उसका रक्त किसके शरीर में जाएगा। न नाम पता, न रिश्ता पता, न पहचान, फिर भी वह अपना रक्त देता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला पहले इंसान है और शायद यही इंसानियत की सबसे खूबसूरत पहचान है। भारत में हर वर्ष 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं उस लाल रंग की जो किसी जाति, धर्म, भाषा या रिश्ते का नहीं होता, जो सिर्फ एक बात कहता है, मैं जीवन बचाने के काम आ सकता हूं। तो चलिए आज की बातें करते हैं कुछ दिल से। सबसे पहले सुनते हैं उम्मीद और जिंदगी से जुड़ा एक खूबसूरत गीत।

दोस्तों, दुनिया में कुछ रिश्ते हमें जन्म से मिलते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, परिवार। लेकिन एक खून का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना पहचान के भी किसी की जिंदगी बचा सकता है, वो है रक्तदान का रिश्ता। सोचिए, एक अस्पताल में कोई मरीज है, उसके परिवार वाले परेशान हैं, डरे हुए हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, और उसी समय कहीं से कोई अनजान व्यक्ति आता है, कुछ समय

नहीं देता है, अपना रक्त देता है और चुपचाप चला जाता है। शायद उसे कभी पता भी न चले कि उसके दिए हुए रक्त ने किसी परिवार की जिंदगी और उस परिवार की मुस्कान फिर से लौटा दी। न रिश्ता पूछा, न नाम पूछा, बस इंसान का काम पूछा। अपना रक्त देकर कोई चला गया और किसी ने उसे अपना भगवान माना। यही है रक्तदान की खूबसूरती। निस्वार्थ भाव से किया गया एक खूबसूरत काम जो किसी की जिंदगी बचा सकता है। रक्त में हम सिर्फ रक्त नहीं देते, किसी को उम्मीद, किसी के परिवार की मुस्कान, किसी को जिंदगी देते हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं इन्हीं बातों के साथ एक और प्यारा सा गीत।

वैसे कई लोगों के मन में रक्तदान को लेकर डर या भ्रम होता है, इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं के साथ साथ सही जानकारी भी रखें। भारत सरकार के ई रक्तकोश के अनुसार रक्तदान से पहले रक्तदाता की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और एक संक्षिप्त स्वास्थ्य जांच की जाती है। योग्य व्यक्ति का ही रक्त लिया जाता है और प्रक्रिया प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में होती है। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति रक्तदान के लिए पात्र नहीं होता। उम्र, वजन, स्वास्थ्य और अन्य चिकित्सकीय परिस्थितियों के आधार पर पात्रता तय की जाती है। ई रक्तकोश की सामान्य जानकारी में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र और कम से कम 45 किलोग्राम वजन सहित कुछ मापदंड दिए गए हैं, लेकिन अंतिम निर्णय रक्त केंद्र की चिकित्सकीय स्क्रीनिंग पर निर्भर करता है। इसलिए रक्तदान करने से पहले किसी अधिकृत रक्तदान केंद्र से अपनी पात्रता की पुष्टि जरूर करें। अफवाहों से नहीं, सही जानकारी से फैसला कीजिए। और याद रखिए, डर कम होता है जब जानकारी सही होती है और सेवा का अवसर मिलता है, तो इंसानियत और भी खूबसूरत हो जाती है। आइए दोस्तों, हमारी बातें बरकरार रहेगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, रक्तदान को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं अकेला क्या ही कर लूंगा, मुझे अकेले के रक्तदान करने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा एक अकेले व्यक्ति की शुरुआत से ही हुआ है। इसलिए जब भी मौका मिले रक्तदान के लिए कभी पीछे ना हटें। एक व्यक्ति रक्तदान करता है, उसका रक्त जरूरत के अनुसार अलग अलग रक्त घटकों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिससे एक दान से एक से अधिक मरीजों को लाभ मिल सकता है। किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए, किसी ऑपरेशन के मरीज के लिए, किसी रक्त संबंधी बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए यह छोटी सी मदद बहुत बड़ी बन सकती है। और सोचिए, हमने किसी अनजान मदद की और सोचिए हमने किसी अनजान इंसान की मदद की और बदले में कुछ मांगा भी नहीं। यही तो है निस्वार्थ सेवा। इसलिए दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले और अगर आपका शरीर उस स्थिति में है कि आप रक्तदान कर सकें, तो जरूर करिए, क्योंकि रक्तदान महादान है। इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता।

तो दोस्तों, आज हम जब अपने घर लौटें तो एक बार जरूर सोचें, हमारे शरीर में बहता हुआ रक्त हमारे लिए जीवन है, लेकिन किसी दूसरे के लिए यही रक्त नई जिंदगी की उम्मीद बन सकता है। आइए सही जानकारी लें, अपना चिकित्सकीय पात्रता समझें और यदि हम पात्र हो तो स्वैच्छिक रक्तदान जरूर करें। और अगर हम स्वयं रक्तदान न कर सके तो कम से कम किसी और को इसके लिए प्रेरित जरूर करें, क्योंकि आपके शरीर से निकली कुछ बूंदे किसी इंसान की जिंदगी और किसी परिवार की आंखों में फिर से रोशनी ला सकती है। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं हिना जैन अब लेती हूं आप सभी से इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे नए दिन नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब समय हो चला है राजस्थानी लोक संगीत का। राजस्थानी लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सीमा मिश्रा की आवाज में गाए कुछ राजस्थानी गीत।

0: मित्र भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। इसी के साथ कार्यक्रम राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी।
2: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे और नशा मुक्त की शपथ दिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश में आज से समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत और सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह मंथन में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कल से शुरू हुआ यह समारोह आयोग के 100 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित किया गया है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आयोग विश्वास, पारदर्शिता और तकनीक के सिद्धांतों के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समय के साथ तकनीक और परीक्षा के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन योग्यता, निष्पक्षता और समान अवसर जैसे मूल सिद्धांत हमेशा बने रहेंगे। यूपीएससी हर साल करीब 250 अलग अलग भर्ती परीक्षाएं और प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इनमें इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र और रक्षा सहित कई क्षेत्रों की भर्तियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर और सीकर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। राजधानी जयपुर में वे भवानी निकेतन महाविद्यालय परिसर में आयोजित सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद

करेंगे और उन्हें नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे। कार्यक्रम में करीब 10,000 युवाओं की भागीदारी होगी। इस दौरान नशा मुक्ति पर लघु फिल्म और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन, विभिन्न खेल पोर्टल का शुभारंभ तथा एशियाई खेल विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सीकर जिले में खाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे और फतेहपुर में जनसंवाद करेंगे तथा लाभार्थी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 आज से लागू हो गया है। राष्ट्रपति ने 13 अगस्त को इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। ये नया कानून बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 का स्थान लेगा। ये अधिनियम बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराएगा, जो मौजूदा बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा। अधिनियम में बैंकिंग रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। इसके तहत मैनुअल, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण किया जाएगा। नए कानून का उद्देश्य मौजूदा बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाना है। प्रदेश में आज से समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत हो रही है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से सप्ताह के दौरान विभिन्न वर्गों के कल्याण और जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी है। इस अवसर पर बुजुर्गों के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से सभी जिलों में शतायु मतदाताओं का सम्मान किया जा रहा है। पाली और करौली में शतायु मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। सवाईमाधोपुर में जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस शिविर में पोषण, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण युवाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके आर्थिक सशक्तिकरण और समान अवसर सुनिश्चित करने के मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता के नियमों को सरल बनाने के विषय पर भी चर्चा की गई। श्री शेखावत ने बताया कि इस संबंध में पिछले 3 महीनों में डॉ वीरेंद्र कुमार से 2 बार पहले भी वार्ता हो चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवाली से पहले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। शीर्ष न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, जबकि दिनभर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के समय में अब 16 अक्टूबर से बदलाव किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश के अनुसार ये बदलाव एक पारी के स्कूलों में प्रभावी होगा। पहले समय में बदलाव 1 अक्टूबर से प्रस्तावित था। संशोधित आदेश के तहत 15 अक्टूबर तक पहले वाली समय सारिणी ही लागू रहेगी। बाकी शैक्षणिक गतिविधियां सत्र 2026-27 के शिविरा पंचांग के अनुसार संचालित होंगी। उधर सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय आज से बदल गया है। नए समय के अनुसार ओपीडी सुबह 9 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगी। प्रदेश में नया पर्यटन सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही रणथंभौर, मुकुंदरा और सरिस्का टाइगर रिजर्व सहित अन्य अभयारण्यों में जंगल सफारी शुरू हो गई है। मॉनसून के कारण 1 जुलाई से सफारी बंद थी। 3 महीने बाद पर्यटन गतिविधियां

0: फिर शुरू होने से देशी विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है। बाली के जवाई में कल देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। वन विभाग के हरिजन सीजन शुरू हो गया है। शहर के किले, महल और संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के अधीक्षक महेंद्र कुमार निम्भल ने बताया कि अक्टूबर से पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है।
1: जो अल्बर्ट हॉल है राजधानी जयपुर में एक हृदय स्थली में है, बिल्कुल मिडिल में है, तो राजकीय केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल है, तो यहाँ पर प्रतिदिन अभी लगभग 1800 से 2000 पर्यटक प्रतिदिन यहाँ विजिट के लिए आ रहे हैं और ये ग्राफ धीरे धीरे अक्टूबर सीजन से बढ़ता ही चला जाएगा। साथ ही म्यूजियम में काफी एंटिक्विटीज हैं जो हमारी पर्यटकों को बड़ा मनमोहित करती है, उन्हें रिसर्च के लिए प्रेरित करती है और राजस्थानी आर्ट और कल्चर को कुछ अपने ज्ञान को समेट के ही पर्यटक यहाँ से ले जाते हैं।
0: राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का कार्यकाल अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। आयोग का गठन स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़े विषयों पर कार्य के लिए किया गया था। आदेश के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदनलाल भाटी सहित आयोग के सभी 5 सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आयोग ने इस वर्ष 5 अगस्त को निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण से संबंधित अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को दी थी। जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। प्रतियोगिता में क्रिकेट के सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ चुनौती पेश करेगी। इसके अलावा भी भारतीय खिलाड़ी निशानेबाजी, जूडो, वॉलीबॉल, साइकिलिंग, गोल्फ, कैनो, नाव प्रतिस्पर्धा, ताइक्वांडो, टेनिस, किक, वॉलीबॉल, रग्बी, सेवेंस और सपोर्ट क्लाइंबिंग जैसी स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे और नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर प्रदेश में आज से समाज कल्याण सप्ताह की शुरुआत और सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:10 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर की आवाज में गाई कुछ गजलें।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पोजीशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पोजीशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के

0: पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
1: गांवढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं।
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
1: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का लिखा है।
1: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
1: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओं, मेघालय यानी मेघों का घर।
1: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है।
1: जी,
0: खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं, अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी,
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूद।

0: हैं।
1: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें और सुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
0: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
1: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
0: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए

0: और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
0: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
0: जी,
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
1: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवीं कक्षा की छात्रा मेघा ने।
2: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
3: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
4: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
2: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
5: प्लीज मेघा
4: दिखा दो।
2: अरे चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
6: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
7: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
5: बहुत अच्छी।
2: मैडम मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
1: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
8: जी मैडम।
1: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
8: धन्यवाद मैडम।
1: क्या मिला पुरस्कार में?
8: जी
2: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
1: अच्छा,
2: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
1: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
8: लीजिए मैडम।
1: हाँ इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
6: अरे किताब ही है।
1: हाँ शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
8: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
1: मेघा ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
6: सैनिकों के बारे में।
2: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
1: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
8: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है, वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
1: अच्छा।
8: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
1: वाह,
2: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
1: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
8: कितनी बहादुर है हमारे सैनिक।
2: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियाँ पढ़ने को मिल सकती है। मेघा मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
5: मुझे भी।
2: इसके बाद नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
8: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
2: पर मेघा इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
1: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
2: रास्ता है?
1: मेघा क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
8: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
1: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदिनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
8: जी मैडम।
5: गुड मॉर्निंग मैडम।
1: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
8: जी मैडम।
1: अच्छा पहले ये बताओ कैसी लगी किताब?
8: मैडम बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
1: क्या बात है।
2: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
8: बताती हूँ सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना शब्द

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: अच्छा, ये अभी नहीं, अरे अरे, क्या बात है, चलो, बहुत मजा आया।

0: जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
1: वाह।
2: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
0: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
2: शाबाश।
0: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
1: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
0: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
3: ओ मैडम जी।
2: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
3: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आए, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
2: ओह हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
3: ठीक है जी।
2: बच्चों, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
0: जी मैडम।
4: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: बहुत वीरता का है।
6: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
7: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौज ही अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह,
8: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
9: मोहित, लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
2: चुप, एकदम शांत। बच्चों, ये है मेजर अशोक।
10: नमस्ते सर।
11: नमस्ते बच्चों।
2: ये भारतीय सेना में अफसर हैं। आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
0: जी मैडम।
11: भाई, आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
0: धन्यवाद सर।
11: सबसे पहले तो मेघा, मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
0: धन्यवाद सर।
11: हाँ, तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
0: सर, मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
11: बिल्कुल ठीक। बच्चों, मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों, परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे, और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
2: जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
11: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली, तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
10: एक हिंदुस्तान।
11: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान, जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा, और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
12: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
11: सर, मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ, किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे,
13: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये जान पकड़ो, फायर फायर।
11: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे,
13: सर दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है, हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे, आप फौरन हवाई कवर भेजिए, ओवर एंड आउट।
11: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
13: सर हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं, ओवर एंड आउट।
11: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
13: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है, हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण घिर गए हैं, पर मैं एक इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
11: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
13: जवानों आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर!
11: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी न पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।

लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 10 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
4: स्वागतम, शुभ स्वागतम, अर्थ स्वागतम, शुभ स्वागतम।
5: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज हमारे बीच हिंदी साहित्य के ऐसे रचनाकार उपस्थित हैं जिनकी रचनाओं में कहानी सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि दृश्य की तरह हमारे सामने घटित होती है। मनोज रूपड़ा समकालीन हिंदी साहित्य के चर्चित कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की सादगी है और साथ साथ गहरी संवेदना, सामाजिक यथार्थ और दृश्यात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। आखिरी सीन जैसी कहानी और प्रतिसंसार जैसे उपन्यास में उनका सिनेमाई लेखन पाठक को शब्दों के माध्यम से दृश्य देखने का अनुभव कराता है। उनकी रचनात्मक दुनिया में इंसान, समाज और उसके भीतर चलने वाले द्वंद बहुत सहज लेकिन प्रभावशाली ढंग से सामने आते हैं। आज हमें उनसे उनके लेखन, उनकी रचनात्मक दृष्टि और साहित्य में उनके प्रयोगों पर बातचीत करने का अवसर मिला है। मनोज जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
6: धन्यवाद। नमस्कार, और विविध भारती के सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
5: आपकी कहानियों में कहीं रेडियो आता है, बड़े वॉल्व वाला रेडियो
6: जी, जी।
5: और कहीं पर संगीत आता है, तो संगीत की बातें तो हम करेंगे बाद में, लेकिन हम रेडियो की बात जानना चाहते हैं कि रेडियो से कैसा लगाव है। और एक जो आपकी कहानी है टावर ऑफ साइलेंस, इसमें कहीं रेडियो भी है और साथ में मुंबई भी है, और मुंबई में है आप और रेडियो स्टेशन पर बैठे हैं, तो ये अपने एहसास साझा कीजिए।
6: जी, मुझे याद आ रहा है एक इलाका है मुंबई का जहाँ पुराने रेडियो के अब भी, मतलब अब तो शायद ना हो, उसको सुधारने वाले उसके मैकेनिक

0: होते थे तो उस दुकान में मैं पहुंच गया, वहां बहुत बड़े बड़े रेडियो थे वॉल वाले और इतने खूबसूरत उसके कैबिनेट, तो देखकर मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसमें से एक दो रेडियो खरीद लूं।
1: क्या बात है।
0: लेकिन उसने कहा कि आप लाख रुपया देंगे तो भी ये रेडियो आपको नहीं मिलेगा।
1: अरे
0: जबकि वो सब बंद पड़े हुए रेडियो थे।
1: जी जी।
0: लेकिन उन रेडियो के जो मालिक थे
1: जी,
0: वो इतने बड़े रेडियो प्रेमी थे कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से फिर से ये रेडियो में आवाज आनी शुरू हो जाए।
1: अच्छा।
0: वो क्योंकि वो वॉल वाले रेडियो थे और वो बढ़ने बंद हो चुके थे, तो उनकी ये कोशिश थी कि कहीं से भी वॉल लेकर आओ, तब तक ये रेडियो तुम्हारे यहाँ पड़े रहेगा। तो इतने पुराने मतलब प्रेमी थे रेडियो के लोग, और मैं तो बहुत पुराना प्रेमी हूँ रेडियो का, विविध भारती वर्षों से सुनता आ रहा हूँ, बीबीसी लंदन सुनता था, और सिर्फ गीत संगीत ही नहीं सुनता था, दूसरे जो कार्यक्रम आते थे महत्वपूर्ण रेडियो के, रेडियो नाटक का बहुत शौकीन रहा हूँ मैं, इसलिए मैं आपकी जो एक धारावाहिक चल रही है
1: गीतों
0: भरी कहानी, उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ, क्योंकि मुझे रेडियो आर्टिस्ट की आवाज शुरू से बहुत पसंद रही
1: है। क्या बात है
0: जी।
1: और आपकी प्रतिक्रिया भी मिलती रहती है कहानियों पर, खासतौर से गीतों भरी कहानी पर। तो रेडियो से आपका प्रेम पहले से ही आपने बताया है। हम लिखने के बारे में जानना चाहते हैं, ये लिखने का सफर आपका कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आपने शुरुआत की?
0: शुरुआत इस तरह से हुई कि 17 साल की उम्र का जब मैं था
1: जी,
0: तो एक मैंने थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन किया था, 7 दिन का वो वर्कशॉप था, और रायपुर आकाशवाणी के निदेशक उस समय थे मिर्जा मसूद
1: जी जी,
0: वो उस ड्रामा प्रशिक्षण केंद्र जो था उसके वो प्रशिक्षक थे। तो मिर्जा मसूद से मैं पहले से प्रभावित था उनकी आवाज से, उनके और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे वो, कई अच्छे कार्यक्रम उन्होंने किए थे। तो वो वर्कशॉप मैंने ज्वाइन किया, वहां कुछ लोग ऐसे मिले जो पढ़ने लिखने वाले थे, कला की दूसरी विधाओं से जुड़े हुए थे। उसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शख्स थे वहां जो उसके निर्देशक थे, क्षितिज रंग शिविर नाम था उस संस्था का, उसके जो निर्देशक थे वो राम हृदय तिवारी। उनको जब मालूम पड़ा कि मैंने बहुत पहले स्कूल छोड़ दी है और मेरी पढ़ाई लिखाई उस तरह से औपचारिक है नहीं, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम ठीक है स्कूल छोड़ गई कोई बात नहीं, स्कूल से बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। स्कूल का जो पाठ्यक्रम हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, लेकिन स्कूल के बाहर ज्ञान की बहुत बड़ी दुनिया है।
1: क्या बात है।
0: तो उन्होंने मुझे लाइब्रेरी का सदस्य बनाया।
1: अच्छा।
0: और वो ये कहते थे कि तुम अखबार रोज पढ़ो और अखबार में संपादकीय को विशेष रूप से पढ़ना चाहिए खबरों के अलावा।
1: जी, जी, जी।
0: फिर वो बहुत सारी पत्रिकाएं मुझे ला कर लेते थे और उस तरह से पढ़ने में मेरी रुचि बढ़ी। फिर जब वो एक संपादक के नाम पत्र नाम का एक कॉलम आता था देशबंधु नाम के अखबार में, एक बार मैंने उसमें एक चिट्ठी लिखी, एक बिल्कुल सामान्य जो पाठक होता है अखबार का उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो किसी मोहल्ले की किसी समस्या पर एक छोटी सी मेरी चिट्ठी थी और थोड़ी लंबी हो गई थी
1: जी, जी।
0: आप लोग सब जानते हैं मैं लंबी कहानी का लेखक हूँ, वो चिट्ठी भी लंबी हो गई थी। वो चिट्ठी तिवारी जी ने पढ़ी तो बोले यार जो तुमने जो लिखा है उसमें कहानी है, यानी वो सिर्फ एक खबर नहीं है, चिट्ठी नहीं है, तुम्हारा लिखने का जो ढंग है उससे ऐसा लगता है कि तुम कहानी लिख सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो पहली बार ये कोई प्रेरित करने वाला आदमी मिला जिसने कहा कि तुम कहानी लिख सकते हो। फिर मैंने कोशिश की लिखने की कहानी, और पहले बहुत कहानियां पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि नहीं कुछ अलग हिट लिखना है। तो दफन कहानी जो लिखी मैंने वो 3 साल में लिखी।
1: 3 साल में
0: मैं ये चाहता था कि पहली कहानी जो आए तो मैं पूरी तैयारी के साथ आए।
1: क्या बात है।
0: और उसमें बहुत मैंने मेहनत की, उसके बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं जा करके लोगों से मिलता था। उसमें कब्रिस्तान का दृश्य है, तो कब्रिस्तान में क्या होता है, उसमें जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाती है,
1: क्या बात है,
0: ये सब जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं कब्रिस्तान जाता था और वहां के जो नमाज पढ़ाते जो थे उनसे मिल करके फिर मैंने उनसे लिखित रूप में लिया, ये इस समय ऐसा पढ़ा जाता है, इस समय ये कलमा पढ़ा जाता है, उस तरह से वो कहानी बनी। शुरुआत इस तरह से हुई।
1: इतनी रिसर्च करनी चाहिए।
0: मैं रिसर्च उस तरह से देखो मैं मतलब पढ़ करके किताबें पढ़ करके या इंटरनेट से या इस तरह से चीजों से रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं मौके पर जाता हूँ और वहां भले मैं किसी रिपोर्टर की तरह नोट ना लूं, लेकिन उस माहौल में जाकर के गहरी सांस लेना भी काफी होता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: उससे वो पूरा माहौल जो ना आपके भीतर अपना एक रास्ता बनाता है।
1: और वो आपकी ये दृश्यात्मक बातें आपकी कहानी में नजर आती हैं, और ये प्रेरणा की बात है हम नए लेखकों के लिए जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, लेखन की दुनिया में आ रही है, तो उन्हें ये बात हमें लगता है नोट करने लायक है कि अगर आपको कहानी लिखनी है किसी मुद्दे पर किसी विषय पर, तो

0: उसमें डूबना चाहिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए। मैं भी समृद्ध हुई इस बात से, तो अगली कहानी में मैं ये ध्यान रखूंगी। और ये बातें नजर आती हैं आपकी कहानियों में। टावर ऑफ साइलेंस एक ऐसी कहानी है आपकी जो बहुत चर्चित है और बहुत डीप में लिखी हुई, तो इसमें जो एक कैरेक्टर है टेम्पटन दस्तूर, ये कहाँ मिले आपको, कैसे ढूंढा आपने?
1: ये बम्बई का ही है और इसमें भी देखो हमारे धोबी तालाब मरीन लाइंस के बीच में हमारे मामा की दुकान है मिठाई की, श्याम जी नारायण जी के नाम से, अब तो बंद हो गई वो दुकान। उनकी दुकान के ठीक सामने ये सारे पारसी परिवार थे।
0: जी, जी।
1: रमन मिश्री जी जो हमारे बहुत अच्छे किताब, उनकी भी दुकान वही है बम्बई में। अगर किसी को हिंदी साहित्य की कोई किताब खरीदनी तो उनकी दुकान पर जाना पड़ता था, तो मैं उनसे मिलने भी जाता था और अपने मामा से भी मिलने जाता था। तो ये जो परिवार जो था, जो मैंने जो करेक्टर जो लिए हैं उसमें, हक्कू भाई का जो करेक्टर लिया है, एक घर था उसमें दो बूढ़े लगभग 85 के आसपास की उम्र की और एक बूढ़ी महिला उसकी भी लगभग 90 के आसपास की उम्र, और तीनों सगे भाई बहन थे, तीनों ने शादी नहीं की थी और एक ही घर में रहते थे तीनों। ये मुझे थोड़ा सा अलग तरह का वो लगा कि कैसे, मतलब ये रहते होंगे भाई बहन एक साथ बिना विवाह किए इतने सालों से। तो मैं हर बार जाता था उस परिवार की कुछ न कुछ जानकारी हासिल करता था। तो टेम्पटन दस्तूर जो था वो उसके भाई का बेटा था।
0: अच्छा।
1: और वो उस तरह से कहानी में तो चीजें बदलती भी है, फिर अब सिर्फ करेक्टर का सवाल नहीं होता, कहानी में लोकल का भी बहुत महत्व होता है।
0: बिल्कुल।
1: वो पूरा जो लोकल है जिसको हम बॉम्बे का जो लैंडस्केप बोलते हैं वो इलाका वही है, और वो पत्थर की इमारतों का जो पूरा इलाका है उसमें मुझे हर जगह एक कहानी छुपी हुई दिखती है, क्योंकि सब इमारतें 100-150 साल पुरानी हैं।
0: जी।
1: तो कितनी पीढ़ियां उन इमारतों में से गुजरी होगी और कितनी कहानियां उसमें बनी होगी।
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक लोकल था, और फिर मुंबई से मेरा नागपुर जाना हुआ तो नागपुर में इम्प्रेस मिल थी, उस इम्प्रेस मिल को मैंने अपने सामने डिमोलिश होते हुए देखा। तो 125 साल पुरानी जो चिमनी थी इम्प्रेस मिल की, कुछ लोग चाहते थे कि उसको हेरिटेज के रूप में रखा जाए, क्योंकि टाटा की ये मदर कंसर्न थी इम्प्रेस मिल, और उस इलाके की भी बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी उस मिल के कारण। बहुत बड़ा एक आर्थिक परिवर्तन हमारे देश में आया, तो लोग चाहते थे कि उस चिमनी को एक हेरिटेज के रूप में रखा है, लेकिन ये संभव नहीं होता। जब वो चिमनी गिराई गई तब पहला बीज मेरे कहानी में आया, तो मैंने मतलब फिर दोनों को रिलेट किया लोकल को, एक यहाँ का इम्प्रेस मिल का लोकल था और एक बॉम्बे का ये वाला लोकल था, फिर उसके जो करेक्टर है, तो फिर चीजें मिलती गई और कहानी आगे बढ़ती गई उसी तरह से।
0: जी, तो वैसे भी आपकी कहानियों में शब्दों के साथ साथ हम आंखों से कहानी को देखते चलते हैं, ये आपकी खासियत है। और एक तो लंबी कहानी लिखने की, जो आपने खुद भी कहा कि लंबी कहानी लिखते हैं, तो क्या ये सायास लिखते हैं लंबी कहानी या अपने लिख जाती है?
1: कहानी लिखते समय कभी ये नहीं सोचता मैं कि इसका अंत कहाँ होगा, और बहुत कोई निर्धारित और निश्चित अंत मेरे दिमाग में नहीं होता।
0: बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट के बारे में सोचते हैं, द्वंद्व के बारे में सोचते हैं, या वो भी लिखा
1: नहीं उस तरह से, मतलब किसी एक पहलू पर नहीं सोचता मैं। और मेरी ये कोशिश होती है हमेशा कि मेरे कहानी के जो किरदार है वो खुद अपनी बात कहे, मैं उन पर अपने विचार न ला दूं।
0: बिल्कुल।
1: या एक लेखक कहीं उसमें मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ये लेखक अपनी बात कह रहा है।
0: जी जी।
1: तो किरदारों को मैं अपनी तरह से खेलने का पूरा मौका देता हूँ, और मेरी इस छूट के कारण वो कहानी लंबी हो जाती कई बार।
0: जी जी। और वो पात्र बोलते हैं, संवाद करते हैं पाठकों से, और पाठक के दिल में कहीं पैठ बना लेते हैं। अब हमें लगता है संगीत आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, संगीत का दामन थाम लेते हैं जब बातचीत थोड़ी आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हम कौन सा गाना आपकी पसंद का सुनवाएं अपने श्रोताओं?
1: पहली मतलब जो मेरी पसंद है, एक गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें सेक्सोफोन की आवाज है, उस गाने का नाम है जिंदगी कैसी है पहली।
0: जी।
1: और उसमें आप ध्यान दीजिए कि सेक्सोफोन कितनी खूबसूरती से बजा है।
0: जी, तो सुनते हैं ये गाना।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपना।

0: मनोज जी ने अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी वाद्यों के बहुत शौकीन है, संगीत के बहुत शौकीन है जहां तक हमें जानकारी है, और इस गाने में सैक्सोफोन का खूबसूरत प्रयोग हुआ है। आपकी संगीतिक कथा त्रयी है, तीन कहानियों का एक संग्रह है अनुभूति, जिसमें तीन कहानियां साज नासाज और आमाजगा और अनुभूति, तीनों कहानियां मैंने पढ़ी हैं।
1: अच्छा,
0: और तीनों में संगीत के सुर हमें दिखाई देते हैं और खास तौर से वाद्य। तो इन जो तीनों कहानियां हैं, तीनों कहानियों के बारे में आप बताइए कि पहले तो साज नासाज में शायद सैक्सोफोन है, तो ये सैक्सोफोन ने आपको यहाँ पर कहानी लिखने के लिए बुलाया या आपको बुलाया सैक्सोफोन ने, क्या थी?
1: दोनों मिली जुली चीजें हैं। मैं एक बार गोवा घूमने गया था अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पणजी में एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल हो रहा था, उसमें हबी साहब का भी एक प्ले था, रमेश तलवार साहब का भी प्ले था, गिरीश कर्नाड साहब का भी एक प्ले था और रतन थियम का भी था। तो मैंने अपना घूमना कैंसिल कर दिया, दोस्तों को अपने रास्ते पर भेज दिया और मैं इस ड्रामा फेस्टिवल में नियमित रूप से नाटक देखता रहा। एक शाम जब शो खत्म हुआ तो मैं समुद्र किनारे गया, एक रॉक बीच था वो पथरीला, उस पर एक बैठा हुआ था बीटनिक कलाकार, लगभग 55 के आसपास की उम्र होगी, लंबे बाल, अधपके सफेद बाल, और वो सैक्सोफोन बजा रहा था डूबते हुए सूरज को देखते हुए। समुद्र का किनारा है, डूबता हुआ सूरज और सैक्सोफोन की आवाज, इतना प्रभाव उसका मुझ पर पड़ा। एक तो वो पूरी दृश्यात्मक था, यानी वो सिर्फ उसके बजाने का असर नहीं था, जिस तरह से समुद्र को या सूर्य को संबोधित होकर के बजा रहा था,
0: क्या बात है।
1: तो प्रकृति, संगीत और ये सब चीजों का जो मिला जुला प्रभाव था वो मेरे अंदर बहुत गहराई तक चला गया। सैक्सोफोन को लाइव पहली बार मैंने उस तरह से सुना, फिर कई सालों तक तो वो मेरे दिमाग में था कि ये सैक्सोफोन है, इसके ऊपर कुछ करूंगा। बम्बई आना हुआ उसके बाद मेरा, लगभग 10 सालों के बाद
0: जी।
1: बम्बई में घाटकोपर में मेरी नमकीन की फैक्ट्री थी, फैक्ट्री के बाजू में एक चाल थी, वहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट रहते थे साज बजाने वाले, जो फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर एक विली भाई हमारे परिचित, हमारे सेल्समैन थे परेल में, उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो थे वो साज बजाने वाले इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे सब, और ये सब फिल्मों में बजाते थे। तो ये मालूम हुआ कि घाटकोपर के चौल में जो रहते थे वो सब उत्तर प्रदेश के थे और ढोलक, शहनाई, तबला, इस तरह के वाद्य बजाते थे, और बरेल में जितने रहते थे वो सारे गोवा से आए हुए थे
0: जी जी।
1: और ज्यादातर वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जो बजाए फिल्मों में उसके बजाने वाले हैं वो लगभग गोवा से आए हुए सब। तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि सिंथेसाइजर आने के बाद और नई जो टेक्निक आई संगीत में, उसके कारण बहुत सारे इस तरह के साजिंदों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया कि अब उनको काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल
0: हो गया,
1: आजीविका में बड़ा फर्क आ गया। तो उसमें फिर ये ख्याल आया कि एक कोई सैक्सोफोन बजाने वाला है और उसने कई माइलस्टोन पीसेस दिए हैं कई फिल्मी गानों में, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं है। हालांकि मैं वैसा कोई एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को किसी भी, हम संगीत निर्देशक को जानते हैं कि किस फिल्म में किसने संगीत

0: दिया, लेकिन उसमें कोई खास धुन किस कलाकार ने बजाई
1: नहीं बताया जाता,
0: ये हमको नहीं मालूम होता है हमेशा। तो एक तो उसको कभी भी उस तरह से मतलब सार्वजनिक कोई पहचान उसको नहीं मिली, और दूसरा उसका रोजगार भी चला गया। तो उस दर्द को मुझे लगता था कि केंद्र में लेना चाहिए कहानी में, तो वो एक सिलसिला बना फिर साज नसाज का।
1: और फिर उसके बाद सारंगी के मद्देनजर आपने आमाजगाह लिखी
0: जी,
1: जिसमें सारंगी का खूबसूरत प्रयोग है। तो कोई सारंगी वादक भी आपको मिला था ऐसे?
0: सारंगी वादक वैसे नहीं मिला, लेकिन सारंगी के बारे में एक बार मैं पढ़ रहा था
1: जी,
0: और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि सारंगी और सैक्सोफोन ये दोनों बड़े बदनसीब साज थे
1: जी।
0: वो इस लिहाज से कि सैक्सोफोन को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा था उसमें बहुत सालों तक कोई जगह नहीं मिली। सैक्सोफोन जो नाइट क्लब होते थे वहां बजता था, बाद में धीरे धीरे और लोग भी बजाने लग गए, फिर बाद में वो ऑर्केस्ट्रा में भी आया। ठीक वैसे ही सारंगी भी
1: और दुख में,
0: और उसको भी शास्त्रीय संगीत के विधिवत मंच में आने में सारंगी को भी बहुत समय लगा। तो ये दोनों साज के भी अपनी एक मार्मिक कहानी है, उसके बजाने वाले की तो हो गई अलग कहानी, लेकिन ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी भी अपनी एक बड़ी मार्मिक कहानी है।
1: बिल्कुल।
0: तो सारंगी का जब मैं ऐसा पढ़ रहा था कि इतना मतलब ये कहां से आया, अच्छा उसकी आवाज इतनी सुरीली है, इतनी खींचने वाली आवाज है, सैक्सोफोन की भी और सारंगी की भी, फिर ये ख्याल आया। और दूसरा जो उस कहानी का जो बीज जो पड़ा, कुमार गंधर
1: जी, पंडित कुमार गंधर,
0: हाँ हाँ, उनके जो पुत्र हैं मुकुल शिव पुत्र, तो जैसा मैंने लोगों से सुना जो उसके बारे में खबर आई, तो उनके उस पीरियड में उस फेज में वो किस तरह की परिस्थिति में थे उसको देख करके मुझे लगा कि मैं अपने कहानी का जो नायक है उसको उस तरह से ले सकता हूँ। बल्कि सिर्फ आमाजगा का ही नहीं, इसका जो सितार वादक है अनुभूति का, वो भी लगभग एक तरह के मानसिक अवसाद की स्थिति में चले जाता है। तो एक कलाकार के जीवन में जब कहीं बड़ा अवसाद आता है, कहीं बड़ी जब उदासी आती है, और कई बार जब बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे उसको घेर लेती है, तो उसका मानसिक संसार कैसा होता है, ये मेरे ध्यान में था, और इसी वजह से ये दोनों कहानी की रचना हुई
1: और बहुत चर्चित हुई। और ये अनुभूति कथा संग्रह में तीनों कहानियां शामिल हैं। हम जानना चाहते हैं मनोज जी कि इन तीनों कहानियों में वाद्य यंत्र और कथा के बीच आपने रिश्ता कैसे स्थापित किया, क्योंकि पात्रों के साथ कहानीकार का भी एक नाता जुड़ जाता है।
0: तो असल में देखो, जो वाद्य बजाने वाला कोई भी जो शख्स है उसका जो भी जीवन हो तो मानवीय जीवन है, और उसके भी अपने रिश्ते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव है, तो वो जीवन का उसका उतार चढ़ाव और उसके रिश्ते। अच्छा, दिक्कत एक ये आती है एक सामान्य आदमी में और एक कलाकार के जीवन में, खासतौर से इंस्ट्रूमेंटल जो प्लेयर होते हैं वो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मुझे तो लगता है कि वो राइटर से भी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इनकी जो ओवर सेंसिटिविटी है वो कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ ले आती है जो मेरे नजर में तो एक कहानी है
1: जी,
0: है ना, उनके जीवन के उस तरह के जो उतार चढ़ाव है, उसके जो मोड़ है, वो कहानी वहीं से बनती है
1: जी।
0: तो मैं उनके संगीत और उनके जीवन दोनों को मिला करके कहानी बनाता हूँ
1: जी, और एक उम्दा कहानी बनती है। जहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक लिटरेचर प्राइज की टीम ने एक फिल्म बनाई थी आपके उपन्यास पर, जिसे जेसीबी शॉर्ट में कहते हैं, वो काले अध्याय पर, काले अध्याय का जब अनुवाद आया था
0: जी जी,
1: तो ये क्या कहानी है, कैसे
0: डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं थी? हाँ। असल में जो भी लेखक शॉर्ट लिस्ट होते हैं,
1: शॉर्ट फिल्म थी कोई,
0: शॉर्ट फिल्म थी उस लेखक के जीवन का परिचय
1: जी जी।
0: तो वो हम पांचों लेखकों के ऊपर बनी थी, जो पांच लेखक उस अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे
1: जी,
0: तो वो पहले से डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं उसकी, और जब किसी को अवार्ड मिलता है तो फंक्शन के दिन उसको दिखाया जाता है
1: जी जी। तो वो फंक्शन के दिन दिखाने के
0: नहीं,
1: लिए
0: नहीं, मुझे अवार्ड नहीं मिला था।
1: हाँ।
0: जिनका
1: पर आपकी किताब शामिल थी उस,
0: हाँ, किताब शामिल थी मेरी
1: जी, तो उस पर एक फिल्म बनाई गई थी और हाँ, लोगों तक पहुंची, हमने भी देखी वो फिल्म।
0: हाँ, हाँ,
1: बेहतरीन।
0: हाँ, वो असल में जेसीबी की एक विज्ञापन फिल्म थी।
1: हाँ।
0: वो अपने चुने हुए लेखक का बहुत अच्छे से प्रचार करते हैं, उनकी एक टीम है, और अपने चुने हुए लेखक को जो, क्योंकि उनको लगता है कि विनर चाहे कोई भी हो, जो पांच लेखक शॉर्ट लिस्ट में आए उनके लिए वो सब समान
1: जी। बिल्कुल सही बात है। बात फिल्मों की चली है तो यहाँ पर एक फिल्मी गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपकी पसंद का?
0: बहुत प्यारी वायलिन की धुन है उस गाने में, एक प्यार का नगमा है,
1: मौजों की रवानी,
0: मौजों की रवानी है
1: शोर फिल्म का गाना।

0: बात फिल्मों की चली है और गाना ये सुनवाया शोर फिल्म का गाना, फिल्मों में आपकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है, बातचीत में आप अक्सर फिल्मों का जिक्र करते हैं और कई बार तो ऐसी फिल्मों का नाम लेते हैं जो सुनी भी नहीं है और आपने देखी होती है, उसके बाकायदा किरदार का जिक्र करते हैं, हिंदी सिनेमा के साथ साथ विश्व सिनेमा का जिक्र करते हैं और ये कहा जाता है कि मनोज रूपड़ा बड़े विलक्षण कथाकार के साथ साथ फिल्मों के मर्मज्ञ हैं, तो बताइए इस शौक के बारे में।
1: मैं अपने आपको जो ना फिल्म का मर्मज्ञ विशेषज्ञ नहीं मानता, मैं फिल्म का समीक्षक भी नहीं हूँ,
0: लोग मानते हैं,
1: मैं अपने आपको फिल्म का एक जागरूक दर्शक मानता हूँ
0: जी।
1: और मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म देखना भी एक कला है।
0: सही बात है।
1: और ये मुझे कब मन लगा, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। दुर्ग में प्रगतिशील लेखक संघ के साथ जुड़ा था मैं और एक बार मैंने कहा कि मेरी इच्छा से एक कार्यक्रम करवाया जाए, तो हमेशा साहित्यिक गोष्ठियां तो होती थी, मैंने फिल्म पर वो कार्यक्रम रखा और उसमें पूना से

0: सतीश बहादुर साहब को बुलाया। तो सतीश बहादुर साहब बहुत सीनियर मतलब टीचर रहे हैं
1: जी।
0: बहुत सारे जो हमारे आज के दौर के जाने पहचाने जो निर्देशक हैं प्रकाश झा हैं या और भी, उनके सबके वो शिक्षक रहे हैं। मैंने चिट्ठी लिखी उनको और उन्होंने जवाब दिया कि कोई दंग है चिट्ठी लिखने का।
1: अरे
0: तो मुझे लगा कि कहीं से भी आपने कोई पेज फाड़ लिया और लिख दिया। पहले सिस्टमेटिक तरीके से चिट्ठी लिखना सीखो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने जो चिट्ठी लिखी क्या प्रभाव पड़ा होगा पता नहीं।
1: हाँ।
0: लेकिन मुझे ना वो जानते थे और ना एक छोटा सा शहर दुर्ग कैसे वो आ जाते। लेकिन वो आए। उन्होंने दो दिन में अपने साथ वो बहुत सारे स्लाइड्स लेकर आए थे, बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स फिल्मों की लेकर आए थे और स्क्रीन पर छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्होंने समझाया कि फिल्म का ग्रामर क्या होता है, उसको कैसे देखा जा सकता है। और उसके बाद बहुत इच्छा मेरी बढ़ गई। मुझे मालूम पड़ा कि पूना में एक कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन का, वो एक महीने का कोर्स होता है और उसके लिए कोई बड़ी औपचारिक की जरूरत नहीं होती, कोई भी कर सकता। तो मैं बड़े उत्साह में चला गया वहां। वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि उसमें भी ग्रेजुएशन की डिग्री लगती है।
1: अच्छा।
0: तो वहां से फॉर्म भरने जब गया था तो उन्होंने मुझे लौटा दिया। फिर मैं फिर सतीश जी के कमरे में गया। मैंने कहा मेरा तो नहीं हो पाएगा इसमें। क्यों? तो मैंने कहा इसमें तो ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो क्या दिक्कत तू? मैंने तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तू कहाँ तक पढ़े हो? तो मैंने कहा कि मैं छठवीं फेल हुआ। वो मेरा चेहरा देखते रह गए। तुम इतनी फिल्मों में इतनी रुचि रखते हो और तुम्हारी कुछ उस तरह की कोई फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं है। तो मैंने कहा लेकिन कुछ कोशिश कीजिए, मेरे लिए कुछ हो सकता है। तो देखो एक काम हो सकता है, पटना में प्रकाश झा 7 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं सिनेमा पर, तो उसमें आ जाओ। तो मैं वहां गया। प्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी थी मुझे बुलाऊंगा, उन्होंने कहा होगा, और 7 दिन उनके साथ रहा। उस कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरह से सिनेमा को समझाया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि शॉर्ट किस तरह से लिए जाते हैं। कोई अगर मीडियम शॉर्ट है तो उसका क्या अर्थ है, कोई एक्सट्रीम क्लोज है तो उसका क्या अर्थ है, कट आ रहा है तो क्या अर्थ है। तो ये शॉर्ट लेने के जो तरीके होते हैं उसमें कहानी होती है। और उसके बाद मेरी रुचि बढ़ती गई और फिर सिनेमा देखना मैंने अलग ढंग से सीखा। अगर मैंने वो क्लास नहीं की होती तो सचित रे की जो एक फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, चारूलता।
1: अच्छा।
0: चारूलता फिल्म के जो 7 मिनट है उसमें एक भी संवाद नहीं है। 7 मिनट तक फिल्म यूं ही चल रही है बिना संवाद के। और कैमरे का मूवमेंट जो है ना, उसको देख करके आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि पात्र जो कहना चाह रहा है वो आप समझ नहीं पा रहे हैं।
1: जी जी।
0: यानी इतना खूबसूरत एक एक शॉट है कि बिना संवाद के भी हर स्थिति आपको बताती कि वो क्या हो रहा है उसके साथ। बल्कि भीतरी जो मनस्थिति है चारूलता की वो भी बिना संवाद के मालूम पड़ जाता है। ये कितनी खूबसूरती है फिल्म की।
1: आपको फिर वहाँ एडमिशन मिला कि नहीं?
0: नहीं मिला।
1: नहीं मिला।
0: उसके बाद वही पटना जाना पड़ा। पटना में 7 दिन उनके साथ रहा।
1: यहाँ पर मेरे जहन में तो सवालों की आंधी चल रही है, तो मैं क्रम से आपसे पूछती जा रही हूँ कि आपने बताया कि आपने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई नहीं की, पर आपकी कहानियां और उपन्यास पढ़ते हुए तो लगता है कि बहुत जरूरत से ज्यादा बौद्धिक इंसान, बहुत जरूरत से ज्यादा पढ़ाई किया हुआ अध्ययनशील। तो ये क्या कहानी है कि आपने कैसे पढ़ाई कैसे छोड़ी और क्यों नहीं पढ़ी?
0: नहीं, पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि गणित में फेल हो गया था और मुझे लगा कि गणित में कभी
1: पास नहीं हो पाऊंगा। ओके।
0: अच्छा, दूसरे सारे जो सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे नंबर थे
1: जी,
0: गणित में नंबर नहीं आते थे। और मैंने टीचर से कहा, एक साखर दांडे नाम की मैडम थी, तो मैंने कहा कि अब मैं छोड़ रहा हूँ स्कूल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कैसे छोड़ दोगे तुम? तो बोले फिर गणित हटा दो। गणित अगर नहीं होगा तो मैं पढ़ सकता हूँ
1: जी।
0: तो घर में ऐसा मतलब कोई ऐसा माहौल नहीं था कि
1: प्रेशर नहीं डाला माता पिता ने?
0: हाँ हाँ, हम लोग का परिवार जो है ना व्यावसायिक परिवार है। और अगर लड़के को मिठाई बनाना आता है
1: बस
0: तो बस बहुत हो गया।
1: हाँ।
0: उसको किसी तरह की अपने आजीविका के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा,
0: अच्छा, मेरी जितनी दिलचस्पी कहानी लिखने में लगभग उतनी दिलचस्पी मिठाइयां बनाने में भी। और बचपन में लगभग 12 साल की उम्र में मिठाई का अच्छा कारीगर बन चुका था।
1: अच्छा। तो फिर मिठाई बनाना तो खैर आपने सीख लिया और जाहिर सी बात है कि मिठाई बनाते होंगे तो आपका परिवार खुश रहता होगा, खासतौर से आपकी पत्नी तो मिठाई खाकर तो बहुत खुश होती होंगी। तो जरा बात चली है तो उनका भी जिक्र कीजिए।
0: नहीं, वो भी उसी परिवार से है, मतलब उनका भी जो व्यवसाय था उनके पिताजी का भी, वो भी मिठाई का ही था। और उनके पिताजी ने भी यही देखा कि इसको कितने तरह की मिठाइयां बनानी, उसने पूछा ही नहीं, जबकि मेरी पत्नी अंग्रेजी में है और मैं

0: आठवीं फेल हूँ तो पूछा भी नहीं कि इसकी पढ़ाई कहाँ तक है।
1: अच्छा।
0: सिर्फ उन्होंने ये देखा कि इसको मिठाइयाँ कितनी बनानी आती है।
1: तो आप पास हो गए मिठाई बनाने में,
0: उसके मतलब कारण पास हो गया।
1: नीता जी जो आपकी पत्नी, उन्होंने हाँ, पास किया कि नहीं?
0: बिल्कुल पास किया होगा।
1: तो मतलब आप उनके लिए मिठाई बनाते हैं घर पर?
0: मैं हर राखी के दिनों में एक मिठाई बनाता हूँ, मोहन थाल, गुजरात की बहुत स्पेशल मिठाई है
1: जी।
0: वो मिठाई मेरे हाथ की बनी हुई सबको बहुत पसंद है
1: जी। क्या बात है।
0: हाँ, सबको बहुत पसंद है। तो वो बहुत जिद करती है। नीता के चार पांच भाई हैं, वो मेरी भी चार पांच बहनें हैं, तो फिर वो इतनी बनती है कि सबको एक एक बॉक्स मिठाई हर घर में पहुंच जाती है।
1: क्या बात है, ये बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बातें चल रही हैं। और बात मिठाई की चली, मिठास तो संगीत भी घोलता है, तो यहाँ पर एक आपकी पसंद का गाना हो जाए, मीठा सा कोई गाना बताइए।
0: बहुत मीठा, बहुत प्यारा सा गाना है, वो पियानो बहुत खूबसूरती से उसमें बजा है। मधुबन खुशबू देता है, सागर रावण देता है
1: जी। साजन बिना सुहागन फिल्म का नाम है, सुनते हैं यही गाना।

0: थोड़ी देर पहले बात चल रही थी फिल्मों की कि आपकी फिल्मों में कितनी गहरी दिलचस्पी है और गहरा दखल भी है, मतलब फिल्मों की इतनी सारी जानकारी आपके पास है। आपकी कहानी है आखिरी सीन
1: जी।
0: और एक उपन्यास भी है प्रति संसार, तो ये क्या सिनेमाई भाषा का प्रयोग इसमें किया है क्योंकि उसमें शाब्दिक दृश्य उपस्थित किए गए, तो इसके बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: एक मतलब ये ख्याल आया एक बार कि कैमरा चल रहा है
0: जी
1: और जो दृश्य दिख रहे हैं और कैमरे की आंख से मैं अपनी कहानी लिखूं, तो पहले मैंने प्रति संसार लिखा था और उसमें शुरुआत ही कैमरे से है कि दृश्य के ऊपर केंद्रित है और जो घटित हो रहा है उसका मैं शाब्दिक वर्णन कर रहा हूँ। तो उस पूरी फिल्म में ज्यादातर विजुअल्स हैं, लेकिन विजुअल्स और शब्द दोनों एक चीज तो है नहीं। तो मैंने प्रयोग किया था कि मैं दृश्यों को शब्दों में किस तरह से दिखा सकता हूँ। वो प्रयोग बहुत सफल हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। और ये जो कहानी है आखिरी सीन, इसका जो कथानक है वो मेरे जहन में काफी सालों से था। मैं अक्सर ये सोचता था कि जहां कहीं कोई बड़ी लड़ाई होती है, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, तो एक तरफ फौज होती है दूसरी तरफ दुश्मन होते हैं।
0: जी जी
1: ठीक है, पर बीच में कुछ स्थानीय लोग भी होते हैं जिनका उस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता
0: जी,
1: लेकिन बहुत बड़ा नुकसान उन्हीं का होता है। तो ये मेरे जहन में था कि जो स्थानीय लोग हैं वो किसी भी बॉर्डर के आसपास का, जितना मैंने बॉर्डर पर एक दो और भी फिल्में देखी हैं, और बल्कि एक तो विशेषांक निकला था ज्ञानोदय का
0: जी,
1: उसमें

0: सारी कहानियां ही वही थी जिसमें सीमावर्ती इलाके के आसपास का लोकेशन था। बॉर्डर जो है वो बॉर्डर में असल में बहुत अलग तरह का जीवन होता है। बॉर्डर में जीने वाले लोग कितने कसम कसम जीते हैं,
1: बिल्कुल।
0: तो उस पर कई कहानियां हैं और उस पर एक लीलाधर मंडलोई साहब जब ज्ञानोदय में थे तो उन्होंने एक विशेषांक निकाला था और मैंने एक लेख भी लिखा था उसमें। मैंने अलग अलग बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में

0: बॉर्डर के इलाकों के कौन कौन सी फिल्में बनी है, तो ये मेरे जहन में था, लेकिन वो कथानक उसको फॉर्म नहीं मिल रहा था। कभी कभी क्या होता है कि आप कहानी का आपका कंटेंट तो दिमाग में आ गया लेकिन उसको किस रूप में प्रस्तुत किया जाए वो रूप कभी कभी नहीं मिलता, कंटेंट मिल जाता है। अब वो दो साल तीन साल तक लगातार चलती रही कसमकस का। मैं पहले एक बार ये प्रति संसार वाला काम कर चुका था तो अपने फॉर्म को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरी सीन में फिर मुझे लगा कि उस फॉर्म के अलावा दूसरा कोई फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस कहानी को भी मैंने सिनेमेटिक भाषा में लिखा है कि जो घटनाएं हो रही है उसमें मैंने फिर ये चरित्र जो रखा वो फिल्म निर्देशक का रखा कि एक निर्देशक है वो एक फिल्म बनाना चाह रहा है
1: जी जी,
0: और उसका व्यक्तिगत जीवन में इतनी परेशानी आ गई कि अब उसका स्टूडियो भी खत्म हो गया, उसका परिवार भी छिन्न भिन्न हो गया और वो फिल्म बना नहीं पा रहा है, तो वो एक मानसिक अवसाद की स्थिति में चला जाता है और जो फिल्म इस कहानी में मैंने वर्णन किया उसको कल्पना में बनाता है। यानी वो उसके पास अब कैमरा भी नहीं है, उसके पास अब पिंग भी नहीं है, वो पैरालिसिस हो चुका है, अब वो खोए रहता है ख्यालों में और उस ख्याल में वो फिल्म बना रहा है। ये उस कहानी का मैंने फॉर्म तय किया था।
1: कितनी सूक्ष्म संवेदना है इसमें, इस कहानी में। तो क्या ये जो सिनेमाई लेखन जो शिल्प होता है, तो इस शिल्प के लिए क्या अलग से आपको कोशिश करनी पड़ी या स्वतः लिखता चला गया एक नदी की धारा की तरह?
0: वो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की भी अपनी एक भीतरी मांग होती है
1: जी।
0: हर बार हम कहानी के दृश्य नहीं खड़े करते, कभी कभी कहानी भी अपने ढंग से अपने दृश्य खड़ी करते हैं। जैसे आपकी खुद की एक कहानी है, मराठी में शीर्षक है उसका,
1: तुझी में वाट पाते।
0: हाँ हाँ, अब उस कहानी में समुद्र किनारे के रेतीले दशाओं में एक कार फंस गई है
1: जी,
0: और वो कार जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उतनी धसती जा रही है
1: जी,
0: और उस कार में जो युगल बैठा हुआ है उसको एक बूढ़ी महिला देख रही है जो उसका अतीत है
1: जी जी।
0: तो वो जो सीन है ना वो आपने नहीं लिखा,
1: उस किरदार ने लिखा है,
0: वो कहानी ने खुद क्रिएट किया है। जब कहानी खुद कोई सीन क्रिएट करती है तो लेखक का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको बिगाड़े ना।
1: बिल्कुल,
0: कई बार लेखक बिगाड़ देता है दृश्य को, जब सहज रूप से कोई चीज आती होती है उसको सहजता के साथ लिखने के बजाय अपनी बहुत ज्यादा जो दिमाग लगाने वाला लेखक होता है वो अच्छी कहानी नहीं लिख पाता।
1: बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा भाषाई खेल करने लगते हैं शिल्प को खूबसूरती से सजाने की कोशिश में बिगड़।
0: सहजता से कुछ चीजों को अपने भीतर आने देना चाहिए, जिसको हम मोटे शब्दों में कहें कि आत्मसात करना।
1: यहाँ पर आपका शुक्रिया भी हम अदा कर दें कि आपने इतने ध्यान से कहानी को पढ़ी और इसका जिक्र किया। यहाँ एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
0: एक बहारो मेरा जीवन भी सवारो, उसमें बांसुरी और सितार का काम बहुत खूबसूरत है।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: बात बांसुरी और सितार की आपने की, तो क्या इस पर, सितार पर तो एक कहानी है अनुभूति, बांसुरी पर भी कोई कहानी लिखी?
1: अब आ रही है,
0: आ रही है।
1: अब वो कहानी नहीं है, वो अब उपन्यास है।
0: हाँ।
1: और लगभग आधा लिखा जा चुका है
0: जी।
1: और मेरी आदत है हमेशा कि मैं लिखने से पहले कई बार बताता हूँ लोगों से, यानी लिखा नहीं है। जैसा आमाज का कहानी जो थी, लिखने से पहले मैंने अपने एक दोस्त है बसंत त्रिपाठी, दोस्तों के साथ बैठा था बसंत के साथ
0: जी।
1: और मैंने पूरी कहानी उसको सुनाई, जबकि उसका एक शब्द भी मैंने नहीं लिखा था। ये जो कहानी है बांसुरी की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें मेरा अभी मतलब अभी लिखा नहीं है मैंने। एक बच्चा है जो माँ से बिछड़ गया
0: जी।
1: और वो लोकल मतलब किसी ट्रेन में बैठ के मुंबई पहुंच गया और वो मुंबई में लावारिस है और इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है। उसमें एक अपाहिज बांसुरी वाला जो बांसुरी बजा करके भीख मांगता है, उसके साथ उस बच्चे की थोड़ी अच्छी तालमेल हो जाती है, उसके साथ घूमता फिरता है, उसके साथ रहता है। मंदिर के सामने कभी बांसुरी बजाता था, कभी चौपाटी में जाकर के बांसुरी बजाता था, तो उसके साथ रहते हुए ये भी बांसुरी बजाना सीख गया। और कुदरती उसके अंदर कोई गुण था बांसुरी बजाने का, वो जब भी बांसुरी बजाता था आसपास चलते हुए लोग ठिठक के रुक जाते थे
0: जी।
1: तो ये किरदार अभी मेरे जहन में है,
0: लिखना बाकी है।
1: लिखना बाकी है जी।
0: तो इस उपन्यास का हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि जो आपने थोड़ा सा टीजर दिया है, तो हमें ही नहीं हमारे सभी श्रोताओं को जो पाठक हैं, जो कहानी और साहित्य से प्यार करते हैं, तो शुभकामनाएं इसके लिए। मनोज जी, आपने फिल्मों का जो जिक्र किया, फिल्में इतनी सारी देखी हैं और आपके जहन में इतनी कचोट के साथ अंदर पैठ किए हुए हैं, और कुछ ये जो भाषा का प्रयोग भी किया आखिरी सीन में और प्रतिसंसार में, तो आपकी क्या तमन्ना है कि आगे चल के आप फिल्मी राइटर बन जाएंगे, फिल्मों में लिखेंगे?
1: फिल्मों पर मैंने लिखना इसलिए भी शुरू किया कि एक समय के बाद जब मैं विश्व की तमाम फिल्में जब देखता था, और उसके बरक्स जब मैं एशियन फिल्में देखता था, एशिया के देशों की फिल्में देखता था, एक समय मुझे ऐसा लगा कि पश्चिम जो है ना वही सारे पैरामीटर्स बनाता है कि फिल्म कैसी होनी चाहिए। कांस फेस्टिवल में लगभग उसी तरह की फिल्में आती है जिसका मानक पश्चिमी सिनेमा ने बनाया है, तो हर बार उनके चले हुए मानक, उन्हीं के पैरामीटर्स के कारण जो फिल्में बनती थी, और उनके ही सारे फेस्टिवल, उस विश्व के जो बड़े जो फिल्म के फेस्टिवल होते हैं या जहां पे उनको बड़ी अवार्ड दिए जाते हैं, उनके मानक के आधार पर ही सारी चीजें होती हैं। एशियन फिल्में जो थी वो बहुत उसमें आती नहीं थी। और एक समय ऐसा आया जब उन पश्चिमी फिल्मकारों ने ये तय कर लिया, मतलब ये घोषणा कर दी कि कहानी की जरूरत नहीं है सिनेमा को। बहुत सारे ऐसे प्रयोगवादी डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि ये विजुअल माध्यम है और दृश्य में जो कुछ कहा गया है कैमरे के द्वारा वही फिल्म है, फिल्म को अलग से किसी कहानी की जरूरत नहीं है। तब मैंने सोचा कि बिना कहानी के कैसे फिल्म हो सकती है। उसके बाद मैंने पश्चिम की ऐसी फिल्में जिसमें सिर्फ एलिनेशन था, जिसमें सिर्फ सिनेमाटोग्राफी थी, उसके बरक्स मैंने एशियन फिल्मों पर लिखना शुरू किया। मैं कुछ फिल्मों का नाम लेता हूँ अभी
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। उसमें एक अफगानिस्तान की फिल्म है ओसामा
0: जी,
1: उसके बाद एक कुर्दिश फिल्म है ब्लैक बोर्ड्स। ये दोनों फिल्म तो सबको देखनी चाहिए
0: जी जी जी।
1: शिक्षा, और वो भी नारी शिक्षा, उसका कितना महत्व होता है ऐसे देशों में जहाँ बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं स्त्री शिक्षा को लेकर के। ये फिल्म और इन फिल्मों

0: की कहानी, फिर मजीदी की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ हेवन, जफर पनाही की फिल्म है ऑफ साइड। ऑफ साइड का कथानक ऐसा है कि लड़कियां जो है वो फुटबॉल देखना चाहती, फुटबॉल का मैच, लेकिन ईरान में फुटबॉल मैच देखने की लड़कियों को पाबंदी है। तो ये लड़कियां सब पुरुष का वेश धारण करके, पुरुष जैसे कपड़े पहनकर, अपने बाल कटवा करके वो फुटबॉल का मैच देखने जाती हैं। इस तरह की बहुत दिलचस्प कहानियां।
1: तो ये सब अपने हिंदुस्तानी सिनेमा में भी।
0: हाँ, और मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया
1: जी।
0: उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा
1: जी,
0: और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: बिल्कुल मनोज जी, आपके लेखन में जीवन की जटिलताओं और मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व, इसकी गहरी उपस्थिति संवेदनात्मक दृष्टि से आती है। तो एक लेखक के रूप में आपको सबसे ज्यादा विचलित और उद्वेलित क्या करता है?
0: दोनों चीजें एक सामने सामने होती है, एक सामाजिक यथार्थ है और दूसरा मनोवैज्ञानिक यथार्थ, मोटे मोटे शब्दों में
1: जी।
0: कि किसकी किसी तरह की, मतलब किसी भी घटना में कोई उसका पहलू जो होगा, जिसके कई लोगों से जुड़ना, उसके बाद उसके साथ जीवन में कोई परिवर्तन आना, और दूसरा खुद उसके भीतर किसी अनपेक्षित विचार का उठना, और खुद उसका भीतर का संसार कहीं दूसरी चीजों से प्रभावित होना। तो बाहर की दुनिया भीतर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है, उसके बाद भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया को कैसे प्रभावित करती है
1: जी जी।
0: तो इसको गौर से अगर देखें तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो बाहर का भी उतना ही है और भीतर का भी उतना ही है
1: जी जी।
0: तो ये भीतर बाहर के जो कश्मकश है उसी में कहानियां हैं।
1: बिल्कुल। तो आपके लिखने का कोई खास तरीका होता है, कोई खास माहौल की जरूरत होती है कि समंदर के किनारे जाके बैठे, नदी के किनारे या घर के अंदर?
0: नहीं, मैं तो शुरू से मेरी लिखने का जो तरीका था वो यही था। मैं मिठाई की जब दुकान थी नागपुर दुर्ग में, तो जो तराजू होती मिठाई तोलने की, उसके नीचे एक डेस्क थी, वही मेरे लिखने का टेबल था, और लिखता था कुछ और कोई ग्राहक आ गया तो उनको मिठाई दे दी, वो चले गया तो फिर लिखना शुरू कर दिया। तो मेरी शुरू से ये हैबिट रही है कि अगर कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई आसपास ना हो, कोई बोलने वाला ना हो, बार बार बीच में कोई हस्तक्षेप करने वाला ना हो, तो मैं कहानी नहीं लिख सकता
1: जी जी। ये तो बात उल्टी हो गई। अमूमन लिखकों को
0: हाँ एकांत चाहिए,
1: एकांत चाहिए।
0: हाँ, मैं अभी अपने वर्कशॉप में बैठकर लिखता हूँ।
1: हाँ,
0: काम चलता है और सारे दिनचर्या अपने तरह से चलती रहती है और मेरा लिखना भी चलता है।
1: आपका जो लेखन है उसमें बड़ी वो शांति, हालांकि आप बड़े अशांत माहौल में लिख लेते हैं, लेकिन लेखन में शांति महसूस होती है पढ़ते हुए, और बहुत मंथर गति से पाठक पढ़ना चाहते हैं, आराम से, तसल्ली से, क्योंकि हड़बड़ी में नहीं पढ़ सकते हैं। लेखन भी है, मौन भी उतना ही है और संवाद भी उतने ही होते हैं। तो ये जो तादाद में है, किस तरह से स्थापित करते हैं आप?
0: देखो, पाठक का तो ध्यान बहुत पहले रखना ही पड़ता है। लिखते समय मेरी सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि मैंने जो एक वाक्य लिखा है वो खुद मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: और मैं एक एक वाक को चार चार पांच पांच बार लिखता हूँ। कहानी के भले मैं ज्यादा ड्राफ्ट नहीं बनाता, लेकिन वाक्यों के ऊपर मेरी बहुत मेहनत होती है, और मेरी ये कोशिश होती है कि हर वाक्य में कोई एक शब्द चमकता हुआ हो, उससे पाठक, मतलब जो पूरे वाक्य में जो बात कही गई है, एक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक तुरंत मतलब आकर्षित हो
1: जी जी। बिल्कुल।
0: तो उसको पढ़ने में मजा आता है। तो पढ़ने का जो सुख होता है, अगर जैसे हम पढ़ते समय, मैं पाठक भी हूं ना भाई, मैं लेखक तो हूं, उसके अलावा दुनिया के बहुत सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं, दूसरी सब चीजें, तो जिस उपन्यास में किसी लेखक की भाषा बहुत शानदार होती है, उसकी वाक्य रचना बहुत अच्छी होती है, उसको पढ़ने में इतना आनंद आता है। तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि मैं जब लिखूं तो पढ़ने वालों को मजा आना चाहिए।
1: जी बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें कि मनोज जी एक उत्कृष्ट साहित्यकार के साथ साथ एक उत्कृष्ट चित्रकार भी हैं।
0: उत्कृष्ट तो, चित्रकार
1: ये आप कहते हैं। तो चित्रकारी के शौक और चित्रकारी के बारे में?
0: नहीं, शौक तो है, शौक तो संगीत का भी है, लेकिन मैंने आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। चित्रकारी का मैं हिम्मत कर ली थोड़ी, और इसके पीछे एक ऐसा किस्सा, एक उपन्यास मैंने पढ़ा था, मून एंड सिक्स पेनी
1: जी,
0: हिंदी में उसका अनुवाद है चांद और छह आने। उसका जो किरदार है वो सामान्य जिंदगी जीने वाला, वो LIC का एजेंट है। उसकी जो पत्नी है वो बड़ी कला प्रेमी है, और वो अपने सब मेहमान

0: किसानों को जब बुलाती है उसमें साहित्यकार है कलाकार ये सब आते थे, इससे वो मिलाती नहीं थी कभी से। तो एक बार एक उपन्यास का जो लेखक है वो उसके घर गया मिलने और उसने कहा कि भाई आपके पति कहाँ है उनसे मिलाओ हमको, बच्चे कहाँ है उनसे मिलाओ। बोले हमारे पति जो है कला में साहित्य में उनकी कोई रुचि नहीं है, नहीं अभी उनकी मतलब मिलने की इच्छा नहीं है। तो नहीं नहीं बोले आपके घर आया हूं तो उनसे मिलकर जाऊंगा। तो मुलाकात हुई, उस पल दो पल की मुलाकात में एक दूसरे को दोनों ने क्या देखा क्या समझा पता नहीं। और ये दो चार दिन के बाद वो इलायची का जो एजेंट था उसने घर छोड़ दिया, कहीं चला गया बिना बताए। बहुत खोजबीन हुई, बाद में मालूम पड़ा कि वो पेरिस चले गया है और उससे पूछा गया भाई तुम क्यों साहब आ गए घर बार छोड़कर। तो बोले मुझे चित्रकार बनना है। तो भाई चित्रकार बनना है लेकिन तुमने जीवन में कभी कोई चित्र बनाया? बोले नहीं बनाया लेकिन मेरी इच्छा हो गई चित्रकार बनने की। ये उपन्यास मैंने पढ़ा उसके बाद मैंने सोचा यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। तो मैंने छोटा मोटा कोई स्केच में नहीं किया कागज अच्छा। में बड़ा कैनवास, वो भी फ्रेम किया हुआ कैनवास नहीं, कैनवास का रोल पूरा
1: जी जी।
0: मैंने कहा कि करना तो बड़ा करना है भले वो किसी काम का ना हो लेकिन हाँ। करना बड़े कैनवास
1: बढ़िया।
0: तो चार पांच चित्र मैंने बनाए और उसके बाद वो मामला रुक गया। तो उस तरह से चित्रकार नहीं हूँ, एक क्षणिक दौरा पड़ा था
1: जी जी।
0: वो दौरे में दो चार हाथ मैंने चला लिए।
1: अपने श्रोताओं को बता दें कि आप निबंध लेखन भी करते हैं, अनुवाद भी किया है, कहानी उपन्यास तो है ही, और इस समय रिकॉर्डिंग के समय रिकॉर्डिंग में आपकी पत्नी नीता जी भी आई हैं स्टूडियो में, कांच के उस पार बैठी हैं। नीता जी का कितना योगदान है आपके लेखन में?
0: नीता जी का योगदान ऐसा है,
1: सहयोग
0: नहीं बड़ा योगदान है। इसलिए क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं लिखने से पहले सुनाता हूँ तो कोई और नहीं होता, जब मेरा कोई दोस्त नहीं होता तो ये अकेली मेरी श्रोता होती है। कई मैंने कहानियां जैसे अभी अनुभूति कहानी जो है वो मैंने अपने ऑफिस से फोन करके नीता को सुनाई कि अभी ये ख्याल मेरे दिमाग में आया है। तो नीता मेरी पहली श्रोता होती है और उसके एक्सप्रेशन मुझे समझ में आ जाता है कि कहानी ठीक बन रही है कि नहीं, इससे बड़ा योगदान क्या होगा।
1: जी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: उपन्यास जो है काले अध्याय
1: हाँ हाँ।
0: वो पूरा उपन्यास मैंने अपनी बेटी को सुनाया लिखने से पहले, उसको सुनाता था रात, उसको बहुत जिद होती थी कहानी सुनने की जब वो छोटी थी तब भी
1: जी।
0: रोज पापा कहानी सुनाओ कहानी सुनाओ, जब तक मैं उसको कोई कहानी और बना बना कर कोई भी कहानी सुनाता था जिसका कोई सिर पैर ना हो
1: जी जी।
0: लेकिन जब तक नहीं सुना तब तक उसको नींद नहीं आती थी। तो लोरी सुनने के बजाय वो कहानी सुनती थी।
1: क्या बात है।
0: तो ये मेरा मतलब तरीका रहा है कि मैं अपने आपको जो है ना कभी छुपा कर नहीं रखता कि मैं जो लिखने वाला हूँ उसको अगर बता दूंगा तो किसी की टोक लग जाएगी और मैं लिख नहीं पाऊंगा।
1: खुली किताब होना चाहिए एक लेखक को। मनोज जी बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी जानकारी वाली बातें आपने कही है हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है और हमें तो सचमुच बहुत आनंद आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं तो घड़ी की सुइयां अब विराम लगाने को कह रही है, फिर कभी एक लंबी बातचीत आपसे करना चाहेंगे। आज बस इतना ही, आप आए विविध भारती के स्टूडियो में और इतनी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। शुक्रिया शुक्रिया।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उपन्यासकार कहानीकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग रीमा जोशी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार

तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की सुबह।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।

0: विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार।
1: अभी हमारी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिहरन और अलका याग्निक की आवाज में गाए और जावेद अख्तर द्वारा लिखी कुछ गजल।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो।
1: हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 11:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अभिमान से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एसडी बर्मन का संगीत निर्देशन।

राव जान से लिया ये गीत आप सुन रहे थे जिसे गाया था आशा भोसले ने। धुन बनाई थी खैयम ने। फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म अभिलाषा से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी, गीतकार हैं नजरुल सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं आदि परमन।

फिल्म संगीत की प्रस्तुति आप सुन रहे थे फिल्म मासूम से। आर डी बर्मन की संगीत को आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। फिल्म संगीत की आखिरी प्रस्तुति आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म द बर्निंग ट्रेन से। किशोर कुमार की आवाज, साहिर के बोल और आर डी बर्मन का संगीत निर्देशन।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्मी संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। दोपहर के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
1: कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को उस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने और इस प्रोसेस में फाइनेंस

0: फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी हैं। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ आपने सुना। सुजाता फिल्म के इस गीत में आवाज आशा भोसले और साथियों की। आज गीतकार मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार सचिन देव बर्मन की जन्म जयंती है और उन्हीं के मिले जुले गीत आपको इस कार्यक्रम में हम सुनवाने वाले हैं।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।

0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों को हम आपको सुनवाने वाले हैं।

दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल।

दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, दिल पे आसरा किए हम तो बस यूं ही जिए, एक कदम पे हद लिए, एक

राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम, राह में पड़े हैं हम कब से आपकी कसम। देखिए तो कम से कम बोलिए न बोलिए, देखिए तो कम से कम

9:11 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे विविध भारती पर यादों की महफिल। आपको याद दिला दें, आज शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं टेलीविजन और फिल्म लेखक पुनर्वसु मालवीय से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है और रात 8 बजे हवा महल में सुनेंगे झलकी अंगारे, लेखन सोमनाथ नागर का, निर्देशन सत्येंद्र सैयद का। और इस वक्त कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी लौटते हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके गीतों के जरिए।

वाह परदा बबरदा, वाह वाह परदा बबरदा, अरे मौला परदा बबरदा है पिनहा परदा नशी का।

0: गई पागल मोए, कर गई पागल मोए, कर गई पागल मोए। मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल।
1: अरे
2: बात एक रात की। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
3: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ

0: सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आपने सुना फिल्म गाइड से। शैलेंद्र ने इसे लिखा। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सचिन देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे बंदिनी फिल्म से। इसे लिखा शैलेंद्र ने। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनकी जन्म जयंती पर।

0: शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभिमान फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का

0: पूर्णिमा से एक खास बातचीत में उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
1: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आज याद कर रहे हैं संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी को उनके जन्म जयंती पर, और उन्हीं के गीतों के जरिए यादों की महफिल कार्यक्रम आज गुजार है। आइए सुनते हैं अनामिका फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: अनामिका फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार के आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देव बर्मन की तर्ज।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आराधना फिल्म से गीत आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में संगीतकार सचिन देव बर्मन और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी के गीत आपको सुनवा रहे हैं। चलिए सुनते हैं अंदाज अपना अपना फिल्म से ये गीत। अलका याग्निक और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर में आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में रोजाना करते हैं कि एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पर और उसमें छुपे होते हैं वो शब्द जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल करने वाले हैं। तो आज की इबारत आपको पहले सुना देते हैं। आज की इबारत है, उम्र का क्या है बढ़ती जाती है और ये दिल दिल तो बच्चा ही रहता है। तुम भले 60 के हो या 55 के, कहां भूलते हैं दिन बचपन के। वैसे बचपन ही क्यों, जवानी प्रेम प्यार एक दूसरे से मिलने की हर घड़ी भी तो उन महकती यादों के साथी है जो हमने साथ साथ चलते हुए गुजारी है। कुछ भी कहो, इन चांदी से चमकते बालों में जो नरमी है वो बादलों में भी नहीं। तुम्हारे मीठे बोल आज भी धड़कनों को जमा बनाने का हुनर रखते हैं। वैसे हम भी कम नहीं, आज भी जिस गली से निकल जाए हसीनाएं जान छिड़कती हैं, आहें भरती हैं। पर क्या करें, तेरे चेहरे से नजर हटे तो कुछ देखें। उम्र की ये ढलती शाम भी तेरे जुल्फ के साए में बितानी है, ना इसके सिवा कुछ चाहा, ना इससे बढ़कर ये जिंदगानी है। तो ये हमारी आज की इबारत है जिसमें बहुत से ऐसे शब्द छुपे हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। साथ ही एक थीम भी इसमें छुपी हुई है जो हमारे साथियों ने बिल्कुल सही पहचानी। वरिष्ठ नागरिक दिवस की शुभकामनाएं देते हैं हमारे साथियों को, और हमारे साथियों ने उम्र को लेकर बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गूगल का जमाना तो अब आया, पुराने जमाने का असली गूगल अगर कोई है तो वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन ही है जिनके पास अनुभवों का खजाना होता है। पुराने जमाने में कोई अच्छे कार्य शुभारंभ करने से पहले या विकट परिस्थितियों में निकलने के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इस बात पर गुजराती मुहावरा भी है, गेढ़ा गाढ़ा वारे, यानी मतलब दलदल में फंसी बैलगाड़ी हो या जीवन रूपी गाड़ी हो, बुजुर्ग व्यक्ति अपने अनुभव से बाहर निकाल सकता है। तो इन्होंने वरिष्ठ श्रोताओं को और वरिष्ठ नागरिक दिवस पर सभी छोटे बड़े मित्रों को शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। आप भी हमें भेजिएगा बहुत सी बातें। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि उम्र कैलेंडर की तारीखों से नहीं स्वयं के नजरिए से बढ़ती है। शरीर भले 55-60 का हिसाब रखने लगा है पर दिल ने घड़ी पहनना सीखा ही नहीं। वो आज भी उसी आंगन में कूदता है जहां बचपन में कूदता था, उसी गली में खड़ा है जहां पहली बार धड़कनें तेज हुई थी। लेकिन ढलती उम्र के साथ जब बालों में सफेदी आती है तो बढ़ती उम्र की निशानी नहीं होती बल्कि जीवन में मिले अनुभवों का प्रमाण पत्र होती है, और दिल का बचपना मिजाज इस बात का सबूत है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने उस बचपने और जवानी को जिंदा रखा हुआ है। जो तो आज कोई भी गीत सुनकर जो मुस्कुरा देता है, जहां जीवन की ढलती शाम भी किसी नए सवेरे से ज्यादा हसीन लगती है। भाई बेहतरीन बातें आप लिख भेजते हैं कोई भी विषय हो, लेकिन ये भी तो बताइए कि उम्र को आप किस तरह से देखते हैं। क्या कोई ऐसे काम है जिन्हें आप अब नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि ये सब करने की अब उम्र नहीं रही। बताइए हमसे, और साथ ही बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं उसे लिखा किसने है और संगीतबद्ध किसने किया है।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव बर्मन का संगीत आपने सुना सुजाता फिल्म के इस गीत में। यह हमारे सवाल का सही जवाब था जो आपने बिल्कुल सही बताया।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: तो विविध भारती के जश्न में तो आप सभी शामिल होने ही वाले हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप सुन रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आज हम वरिष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर कुछ उम्र की बातें कर रहे हैं। हमारे साथी कहने की उम्र तो जीवन के मौन यौन परक शैशव बालक किशोर युवा प्रौढ़ वृद्ध और अति वृद्ध जैसे विभिन्न पड़ावों का एक स्वरूप मात्र है। इसमें किशोरावस्था को उस मौन यौन परक रवानी की तीव्रता अपने नियत सुर तय ताल जैसे दर से मृत्यु पर्यंत नृत्य कर रही है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी बातें लिख दी हैं। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक बचपन था, आंगन में नंगे पांव दौड़ते हुए छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाते हुए बिना किसी चिंता के शाम तक खेलते हुए एक दिन पीछे मुड़कर देखने पर पूरा बचपन एक सुंदर सपना लगने लगा। और शायद यही तो सफर है, बचपन की मासूमियत से उम्र की समझदारी तक, काले बालों की रवानी से चांदी की कहानी तक और दूसरों के लिए जीते जीते एक दिन अपने ही भीतर लौट आने तक। मगर सच कहें तो यादों में आज

0: भी वही बच्चा कहीं मुस्कुरा रहा है। वाकई अपने अंदर अगर बचपन जीवंत है तो बहुत सी बातें ऐसी लगती हैं कि जैसे कल की ही बात हो। हमारे एक और साथी कह रहे कि वक्त का पंछी बचपन और यौवन के पड़ावों से उड़ते हुए आखिरकार बुढ़ापे की दहलीज पर आ पहुंचता है। ढलती उम्र में प्रगल्भता और अनुभव का साथ बुजुर्ग इंसान को अधिक समर्थ बना देता है, साथ ही साथ खुद के भीतर उत्साह से भरे बचपन को जिंदा रखना इसी में उसका बड़प्पन है, सुख समृद्धि है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन दिवस की अनेक शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं। ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को, क्योंकि अगर हमारे बहुत से श्रोता वरिष्ठ नागरिक हैं भी और बहुत से नहीं भी हैं, लेकिन उनके आसपास तो जरूर वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हमें ये बताइए कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा किस काम के लिए टोका जाता है और उन्हें वो टोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो ये हमें बताइए आप। और साथ ही ये भी बताइए कि जिस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उस फिल्म का नाम क्या है, और ये भी बताइए कि आपके लिस्ट में क्या ये गीत शामिल था।
1: हम जब होंगे 60 साल के और तुम होगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की।
2: क्या क्या क्या

हो जाए, दिल की नजर से देखेंगे, आंखों में तुम यूं ही देखना, आंखों में तुम यूं ही देखना, क्या है जरूरत।

मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे, बात न होगी अनबन की, बोलो प्रीत निभाओगी ना, तब भी अपने

कल आज और कल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। याद है कि आपने तो सारे जवाब हमें दिए हैं कि किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज है और शैली शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। यहां तक कि आपने ये भी लिख भेजा कि रणधीर कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और बबीता इस फिल्म में नजर आते हैं। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज के युवकों को हम 60 प्लस वालों के विचार अच्छे नहीं लगते, ना ही उन्हें हमारी सलाह उनके मन को भाती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पर इस दिन शुभकामनाएं सिर्फ ना दें बल्कि अपने वरिष्ठों को समय दें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभवों का सम्मान करें और उन्हें अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखें, क्योंकि किसी घर में बुजुर्गों की मौजूदगी केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि उस घर की स्मृतियों, संस्कारों और आशीर्वादों की छांव होती है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ करना चाहते हैं पर देखो ना, जैसा पहले दौड़ते थे अब नहीं दौड़ पाते, और हाँ रस्सी भी तो नहीं कूद पाते, पर जो नहीं कर पाते वो क्यों सोचे, जो कर पाते हैं क्यों ना उससे खुश हो। तो हम वॉक करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, घर के सभी काम कर लेते हैं, अगर सहायिका ना आए तो झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं। वैसे अब हम वरिष्ठ नहीं है अभी। और हमारे एक साथी कह रहे हैं याददाश्त के बारे में, यानी कि वो कह रहे हैं कि याददाश्त के बारे में टोका जाता है जो बार बार, तो वो अच्छा नहीं लगता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक था बचपन, ये जो गीत है लता जी का गाया हुआ, इसमें बचपन पूरा समाया हुआ है। बचपन को याद करते हुए करते हैं तो एक सुकून सुखद एहसास होता है, लेकिन जब बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक याद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा गाड़ी में सवार हुए बहुत से यात्री सफर बीच में ही छोड़ गए, उनकी यादों की गठरी बांधे हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि अक्सर ये गीत हम जब होंगे 60 साल के, मैं अपनी धनपत्नी को सुनाता हूं और कहता हूं बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की, तो धनपत्नी मुस्कुराकर गर्दन हिला देती और मेरे से पूछती है और आप, मैं कहता हूं कोई शक, हम तो हंसते ही हैं, साथ में बच्चे भी मुस्कुराते हैं। क्या ही बेहतरीन बात आपने कही। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत से साथियों ने बताया कि ये गीत उनकी लिस्ट में तो शामिल था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चांदी से चमकते बाल किसी को अच्छे नहीं लगते, फौरन काले कर लेते हैं। क्या आप भी इनमें शामिल हैं या आप अपने चांदी से चमकते बालों के अनुभवों को सबको दिखाते हैं? चलिए हमें और एक बात जो याद आई जो आपसे पूछनी है वो ये कि क्या बचपन की कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी याद है जो आपके मन में अब भी ऐसे ताजा है जैसे कल की ही बात हो? तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, बताइए किस पर फिल्माया गया है, यानी जो पर्दे पर नजर आते हैं वो कौन है।

0: वक्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। हमने पूछा था पर्दे पर कौन नजर आते हैं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बलराज साहनी और अचला सचदेव।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिल

हमारे साथी कह रहे हैं बहुत सी बातें, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने चांदी जैसे बालों को कलर कर लेते हैं पर उम्र छुपाने के लिए नहीं बल्कि अपनी एवरग्रीन ब्यूटी को बनाए रखने के लिए। उम्र तो हम इस धाक के साथ बताते हैं कि देखो इस उम्र में हम कितने एक्टिव और अपडेटेड हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बाल तो 50 पर सफेद हो गए लेकिन आज तक हमने कभी डाई नहीं करवाया, अब तो 72 पहुंच गए। तमाम मौकों पर लोगों ने बाल काला कराने की सलाह दी लेकिन मैंने कहा कि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक नहीं कई सारी शरारतें जिनमें पुरानी मिठास हो, बारिश होती ही छत पर जाकर भीगना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं घूमने निकल जाना और लौट कर ऐसे बनना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, किसी की आंखों पर हाथ रखकर पूछना कि बताओ मैं कौन, गली में खेलते खेलते हार जाए तो कहना चलो एक आखिरी बार और, बिना किसी वजह के जोर से हंसना और फिर दूसरों को भी हंसा देना। ये बचपन की ऐसी बातें हैं जो इन्हें याद आती हैं जैसे कि कल की ही बात हो। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज विश्व वृद्ध जन दिवस है, गीत जब हम होंगे 60 साल के, ये गीत तो इनकी पसंद पर और बहुत से साथियों की पसंद पर चल ही चुका है। हमारे एक साथी कहने की किस बातों पर टोका जाता है वरिष्ठ नागरिकों को, जो हमने पूछा उस पर वे कहने की बहुत बोलते हैं और बिना मांगे सलाह देते हैं, इस बात पर वरिष्ठ नागरिकों को अक्सर टोका जाता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि लगातार टोका जाता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कह रहे हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा आप बाहर मत निकलो ये बात उन्हें कही जाती है, तब अंदर ही अंदर मायूस हो जाते हैं। क्यों जब हम 60-70 वर्ष के हो जाते हैं तब उनमें भी बचपन आ जाता है, जब वो बाहर घूमना उन्हें अच्छा लगता है, मेरी समझ ऐसी है। उनका ऐसा कहना है हमारे साथी का, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब बचपन का एक दौर वापस आ जाता है जब हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर ना निकलने की सलाह

जाती, वो इसलिए क्योंकि कभी कभी कहीं गिर जाते हैं या चोट लग जाती है, उससे चिंतित रहने की वजह से लोग, घर के जो लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो मना करते हैं, उन्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन इसमें दोनों ही किसी तरह से उलझ जाते हैं। वहीं हमारे एक साथी कहने की उम्र भले ही गणित के अंकों की तरह बढ़ती रहती है, लेकिन मन यादों के गलियारों में कुछ कुछ बचपन, थोड़ा थोड़ा यौवन काल रहता ही है। अवस्था तो गतिशील है और अंतकरण बाल सुलभ रहता है। बाल्यकाल जीवन का स्वर्णिम सोपान होता है। इस अवस्था से जुड़ी जो यादें हैं वो बचपन की उम्र के बाद के लिए किसी राजशाही खजाने की जैसी होती है। यौवन की अवस्था की यादें भी कम हंसी नहीं होती, लेकिन इस अवस्था में बहुधा जीविका के संघर्ष, पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ, थोड़ा कठिन दौर रहा करता है। फिर बचपन के बाद की अवस्था बालों में आई रजत सफेदी उम्र के बढ़ जाने का एहसास तो कराती ही है, लेकिन उसमें जो कोमलता है वो बादलों में भी नहीं होती, जो प्रेम की परिपक्वता, जीवन से जुड़े अनुभव के साथ बुद्धिमत्ता के भी द्योतक होती है। इस उम्र में बाल सुलभ बन यादों के पिटारे से कुछ न कुछ निकालने में लगा रहता है। हमारे एक साथी कह रहे कि वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखकर आज की इबारत बनाई गई है। शायद आज सीनियर सिटीजनशिप की, सीनियर सिटीजन को धन्यवाद दे रहे हैं वो इस दिवस की, और कुछ यादें, कुछ गीत इन्होंने अपनी पसंद के लिखे हैं। देखना है कि आपकी लिस्ट और हमारी लिस्ट कितनी मैच करती है आज। तो अब आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत हमने चुना है, और साथ ही हमें ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हैं और अपनी उम्र को मात देते हैं, ये हमें बताइए।

0: सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और बात हो रही है उम्र की। हमारे साथियों ने जो 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था गीत की कौन सी फिल्म का है हमने आपसे पूछा था, जब प्यार किसी से होता है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि हमारे एक मित्र कह रहे 100 साल तो नहीं मगर 25 साल जरूर हो गए प्यार करते करते। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि उम्र को मात नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो आनी ही आनी है, लेकिन कार्यकुशल होना एक अलग बात है और उसके लिए सभी अपने आप को बौद्धिक और शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रायः तैयार ही रखते हैं। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे कि उम्र के साथ बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन दिल तो जवान होता है और जवान ही रहना चाहिए हर वक्त। हमारे एक और साथी कह रहे कि सफेद बालों से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती किंतु हम उम्र लोग भी अंकल कहने लगते हैं तब बालों को काला करने का विचार आता है। भाई ये जो अंकल कहने की जो एक प्रथा है, अंकल और आंटी कहने की, ये बड़ी ही कह सकते हैं कि एक अजीब सी परंपरा है क्योंकि कई बार लोग हम उम्र को भी अंकल या आंटी कह देते हैं या कई बार वो अपने से छोटों को भी कह देते हैं इस तरह से, तो ये संबोधन तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, हमें भी ऐसा लगता है। क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 100 साल पहले मतलब 1926 से 2026 में भी प्यार जारी है। भई ये तो आपका एक चुटिला अंदाज है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं तो मानती हूँ कि घर में कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो तो एक चीज जो मुख्य तौर पर बनी रहती है वो है अनुशासन। व्रत त्योहार उनके होने से कुछ और ही चमक लिए होते हैं। ये संचार क्रांति का दौर है। मेरी मम्मी ने अभी हाल ही में स्मार्टफोन खरीदा और उन्होंने मोबाइल चलाना सीखा भी है जैसे बचपन में खींच कर ले गया। कैसे वे एक एक अक्षर बड़े धीरज से सीखती थी, सिखाती थी। आज उसी धीरज की जरूरत हम सबको है और यही धीरज धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो धैर्य धके और अपना बचपन याद करें, बुजुर्गों की हर बात सुने और समझें। हमारे एक साथी ने यही बात कही है, उन्होंने कहा है कि मोबाइल के बारे में एक से ज्यादा बार पूछने पर बच्चे झुंझला जाते हैं, तब हमें याद आता है कि उनका बचपन जब हम एक सवाल का जवाब 50 बार देते थे। हर की जो बुजुर्ग है वो इस बात को लेकर एक बात अक्सर कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, कहते हैं कि जब तुम उस दौर में जाओगे, जब हम उस दौर पे थे यानी माता पिता बनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमने तुम्हें किस तरह से पाला है। तो क्या आपको भी ये बात सुनने मिलती है, किस तरह से हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ना कल की चिंता थी ना आज का गम, कितने खुश मिजाज हुआ करते थे हम। बेशक पैसा कम था लेकिन बचपन में दम था। उम्र के साथ ज्यादा कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति के पास हर प्रश्न का उत्तर होता है लेकिन प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता। दूसरी ओर उम्र के इस पड़ाव पर ऐसे लोग भी हैं जो शान से कहते हैं कि बचपन ही तो गया है, बचपना नहीं, और अपने आप को खेलकूद और मनोरंजन में व्यस्त रखते हैं। फिर भी हमारी जिंदगी की किताब में सबसे बेहतरीन चैप्टर बचपन होता है। वाकई आपने बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र के साथ साथ दिल बड़ा होता जाता है और उसके अंदर नए नए रिश्ते और दोस्त, नए नए रुचियां और शौक शामिल होते जाते हैं। जब हम बचपन में थे, यानी वो कह रहे जब हम यंग थे, तब हमारे पेन फ्रेंड हुआ करते थे और अब रेडियो फ्रेंड और वॉइस फ्रेंड हमारे बन गए हैं। तो इस तरह से भी हम अलग अलग तरीके से खुद को देख सकते हैं, ढाल सकते हैं। और अब आप ये सुन सकते हैं एक गीत जिसे हम आपको सुनवाने वाले हैं और इस गीत को किस फिल्म से लिया है आपसे पूछते हैं यही सवाल, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस बात के लिए टोका जाता है और आपने किस बात के लिए सबको सबसे ज्यादा टोका है।

महुरानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं कि आज के युवा भले ही इलेक्ट्रॉनिक युग में पैदा हुए हैं और उनके प्यार का ढंग भी एआई से प्रभावित हो रहा है। घर के बुजुर्गों का प्यार देखें, उनके आगे ये मॉडर्न प्यार बिल्कुल टिकता नहीं। जरा सी देर में गुटरगो और जरा सी देर में लड़ाई हो जाती है। हम बुजुर्गों में कैसा सामंजस्य था, भले भरा पूरा परिवार था लेकिन हमारी श्रीमती जी के साथ चाय पीने, खाने और सोने में कभी कोताही नहीं करती थी। कहीं जाना भी हो तो साथ में भी जाती, अकेले जाने नहीं देती थी। इतना प्यार जवानी में कहाँ था, तब इतनी परवाह कहाँ थी। बस हम कमाने में लगे थे और वे घर गृहस्थी और बच्चों में बिजी रहती थीं। अफसोस साल भर पहले हमें छोड़ गई। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन का वो मौज मस्ती और बेफिक्री का दौर, बचपन के सुनहरे दिन होते हैं और वो दौर के बाद जैसे जैसे कदम जवानी की ओर बढ़ते हैं तो अंदर उत्साह और जोश का संचार होता है। यही जोश और उत्साह भविष्य को संवारने में मदद करता है और युवावस्था से सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। फिर इस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमको वरिष्ठ होने तक निभानी पड़ती है जिम्मेदारियां। हमारे जीवन के इन तीनों पड़ावों में सबसे सुनहरा दौर बचपन का होता है जो कभी लौट कर नहीं आता। वहीं हमारे साथी कहने कि हम भी सीनियर हैं पर फिर भी मुझे नहीं मालूम क्योंकि मुझे टोकना नहीं पड़ता पर वो लोग हर बात पर टोकते हैं, खाने पीने में और रोका टोकी करना डांटना। वैसे कई बार हम ये भी होता है कि सीनियर सिटीजन वाकई बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं और जिन चीजों की उन्हें मनाही होती है वो जब वो खाने लगते हैं तो फिर घर के बच्चों को तो टोकना ही पड़ता है, ना माने तो थोड़ा सख्त भी होना पड़ता है। तो ये भी आप देखिए कि अगर आपकी सेहत के लिए या आपके भले के लिए टोका जा रहा है तो वहां आपको थोड़ा खुद भी समझना पड़ेगा और अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा।

हमारे साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक दिन ऐसा आता है कि घर की सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिनकी वृद्धि होती है वही वृद्धजन कहलाते हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कैसे आज की भारत में बताया कि समय के साथ शरीर तो ढलता है लेकिन प्रेम और आत्मा बूढ़े नहीं होते, और उम्र की तीनों अवस्थाओं को अलग अलग खानों में बांटने के बजाय एक ही धागे में उन्हें पिरोया गया है। जहां बचपन यादों में है, जवानी दिल के धड़कन में, और बुढ़ापा इन दोनों के अनुभवों को समेटे हुए एक शांत सुखद ढलती शाम का आनंद ले रहा है। भाषा शैली काव्यात्मक, रोमांटिक और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से भरी हुई है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही बढ़ती जाए लेकिन दिल में बचपन की मासूमियत और जवानी की खूबसूरत यादें हमेशा बनी रहती है। प्रेम और प्यार में बिताई हुई हर मुलाकात, हर पल की यादें जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में

जीवन को महका देती है। चांदी से बालों में भी वही अपनापन, मीठे बोलों में वही मिठास और धड़कनों में वही चाहत रहती है। उम्र की ढलती शाम में किसी अपने का चेहरा, उसकी नजर और जुल्फ का साया साथ हो तो जिंदगी आज भी खूबसूरत लगती है। तो इस खूबसूरत जिंदगी के नाम ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपको ये पहचानना है कि किसने इस गीत को लिखा है।

हमें संघर्ष और सामाजिक जीवन और सामाजिक ज्ञान का बोध करवाती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन का सफर महकती यादों का सफरनामा है, जिसमें खूबसूरत यादों के साथ जीवन का अनुभव होता है जो किस्से कहानियों के रूप में बयान होता है। हर किस्सा कोई न कोई सबक दे जाता है। उम्र एक पड़ाव है, जिंदगी तो बस जिंदा दिली का नाम है, क्योंकि दिल हमेशा जवान रहता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते कितने मौसम बीत गए हैं, बालों में चांदी उधर आई पर मन के रंग लाल पीले हैं। लोग भले ही कहे कि उम्र ढल रही है, पर हम तो कहते हैं कि उम्र की शाम सुहानी है। हम दोनों का साथ है अगर तो हर दिन एक नई कहानी है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं क्या कि आज की भारत में गीत पहचानने में उन्हें उलझन हुई, लेकिन कुछ गीत उन्होंने पहचाने और हमें ये देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि उनके जो भी गीत हैं वो सारे शामिल हो चुके हैं। बचपन जवानी और बुढ़ापा ये जीवन का चक्र है। बचपन की शरारतें जीवन के जवानी की मीठे पल दो दिलों का टकराना बुढ़ापे में उन सुनहरे पल को याद करना। शरीर जरूर कमजोर हो जाता है पर दिल हमेशा जवान रहता है। हमें इस जज्बात में जीना है, जिंदगी को खुशनुमा बनाना है। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं, मेरे लिए तो सबसे वरिष्ठ सबसे बड़े ज्ञानवर्धक विविध भारती है, जो मेरे पिताजी ने सुनी, मेरे दादाजी ने सुनी, परिवार ने सुनी, अभी मैं सुन रहा हूं, अब आने वाला कल मेरे बच्चे सुनेंगे। तो सबसे बड़े विविध भारती की ये वरिष्ठ उद्घोषक है जो हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते हैं। वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बुढ़ापा अजीब है। हमारे दादा दादी एक दिन नहीं जाता जब झगड़ा नहीं करते हो, लेकिन एक पल एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते। दादी को अगर दादाजी खाना ठीक से न खाए तो खुद भी ठीक से नहीं खाती है। उनको एक ही बात की टेंशन है कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। तो एक वक्त के बाद ये दोनों आपस में एक सोल की तरह बन जाते हैं, ऐसा इनका कहना है। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज की रचना शाश्वत सत्य को रेखांकित करती है कि शरीर भले ही उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहा हो पर मन और भावनाएं हमेशा तरोताजा रहती है। बचपन की मासूमियत से लेकर जवानी के प्रेम और मुलाकातों तक हर पल की यादें बुढ़ापे में जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उम्र भले ही अभी 26 की है पर दिल सदियों पुराना प्यार समझता है। तुम्हारे मीठे बोलों पर ये दिल आज भी हद से ज्यादा धड़कता है। वैसे तो नजरें फिराने को हंसी चेहरे बहुत हैं इस महफिल में, पर क्या करें, ये दिल तो सिर्फ तुम्हारी जुल्फ के साए में ठहरता है। भाई क्या बात है। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस फिल्म का है, आवाज भी पहचान लीजिए।

नौनिहाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। बोल किसके हैं यही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन डे पर सलाम है हमारे उन एवरग्रीन रॉक स्टार्स को जिनके चांदी से चमकते बालों में बादलों जैसी नरमी है और इनके मीठे बोल आज भी धड़कनों को जवान बना देते हैं। ऐसा हमारे साथी कह रहे कि पापा का नया स्मार्टफोन सीखना हो या मम्मी की पुरानी सहेलियों संग गपशप, इनकी जिंदगी की ढलती शाम भी किसी सुरीले सफर से कम नहीं। तो आज अपने घर के इन एवरग्रीन बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनका पसंदीदा गाना गुनगुनाइए और उनके तजुर्बों को एक जादू की झप्पी दीजिए। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन के हर पड़ाव हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं, चाहे बचपन हो, जवानी हो या फिर बुढ़ापा। हम जीवन भर विद्यार्थी ही रहते हैं। एक ओर बचपन हमें पुस्तकों के माध्यम से नैतिकता सिखाता है, वहीं दूसरी ओर जवानी

बात करता कोई तो कहता हेलो, घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक चलो, कोई तो हमसे जो बात

0: अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती के जश्न में तो आपका इंतजार रहेगा ही, लेकिन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बस मैं यही कहना चाहूंगा कि उस घर के लोग बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके घरों में बुजुर्ग होते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से भी पहले महत्वपूर्ण होता है और ये नहीं भूलना चाहिए कि आगे चलकर हम भी बुजुर्ग होंगे, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ओल्ड इज गोल्ड। वहीं हमारे साथी कह रही है मैं तो सीनियर सिटीजन में आ गई हूं पर मैं अभी भी बच्चों की तरह ही सोचती हूं, मेरा अपने से छोटों में मन लगता है, मैं अपने आप से ही फेसबुक यूट्यूब गूगल और भी साइट्स देखती रहती हूं, विविध भारती में भी एक्टिव हूं, फेसबुक के कई म्यूजिक ग्रुप पर भी एक्टिव हूं। तो इसी तरह से अगर आप एक्टिव रहते हैं तो उम्र का जो असर है, उम्र की जो भी ऐसा कहते हैं कि इतनी उम्र हो गई अब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बिल्कुल दूर होती चली जाती हैं। और आपको देखकर हम तो बस यही कहेंगे जो गीत कहने वाला है आपके लिए, फिल्म का नाम बताइएगा।

0: नजर नहीं हटती।
1: कभी कभी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे, जब तक हम अपने मन को बच्चे जैसा रखते हैं तब तक हम कभी बूढ़े नहीं होते। बहुत ही अच्छा संदेश, और इस संदेश के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

चली जा रही है, यानी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज वरिष्ठ नागरिकों का हिस्सा है, बुजुर्गों का हिस्सा है। बुजुर्ग हमारे समाज का एक बहुत जरूरी अंग है। उन्होंने अपनी एक शानदार जिंदगी बिताई और अब वो सेवानिवृत्त जिंदगी बिता रहे हैं। उन्हें भी अपना प्यार चाहिए, उन्हें भी परिवार के लोग चाहिए जो थोड़ी देर उनके साथ बैठें, बातें करें, उनकी समस्याओं के बारे में, दुनिया भर के बारे में उनसे विचार विमर्श करें और उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करें।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान। आज वरिष्ठ नागरिक दिवस है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती जा रही हैं, जीवन शैली बेहतर हो रही है और हमारी जीवन अपेक्षा बढ़ती

बुजुर्गों को सिर्फ अपना समय देने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि समय के साथ साथ जिस तरह से तकनीक बदल रही है, समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, उन्हें इस पूरी धारा में शामिल करने की जरूरत है। ये होना चाहिए कि नई पीढ़ी थोड़ी देर उनके पास बैठे, उन्हें मोबाइल चलाना, मोबाइल की नई तकनीक सोशल मीडिया सिखाए, उन्हें कंप्यूटर या टैबलेट चलाने के गुर सिखाए, उसकी ट्रिक सिखाए, और उन्हें ये भी बताए कि कैसे वो अपने जीवन को रचनात्मक बना सकते हैं। कई घरों में ये भी देखा गया है कि नई पीढ़ी के लोग पत्रिकाओं को पढ़कर अपने बुजुर्गों को सुनाते हैं। ये भी एक तरीका है बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का। अब हमें ये सोचना है कि हम अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव कर सकते हैं और उनकी उंगली पकड़कर जिंदगी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं।

जिंदगी को जीकर ही समझा जा सकता है। बुजुर्गों के पास जीवन का एक विराट अनुभव है और ये अनुभव नई पीढ़ी के लिए एक बहुत जरूरी मार्गदर्शक बन सकता है। नई पीढ़ी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बुजुर्गों को दरकिनार न करें, हाशिए पर न रखें, बल्कि उनके अनुभवों से सीखें, क्योंकि दुनिया की जैसी समझ बुजुर्गों के पास होती है वो नई पीढ़ी के पास आ ही नहीं सकती। उन्होंने जिंदगी का एक लंबा सफर बीहड़ रास्तों पर तय किया है, अपनी जेब में अनुभवों को जमा करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते चले गए हैं। इसलिए बुजुर्गों से हमें आशीर्वाद भी लेना है, उनके अनुभवों से सीखना भी है और उनके साथ बैठकर समाज को बेहतर बनाना है।

0: अपना नजर नहीं।
1: ये थी आज की त्रिवेणी। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। हमें अपने आसपास के बुजुर्गों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी बात के साथ इजाजत लेता हूँ मैं आपका दोस्त यूनुस खान।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग

0: आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।

0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
3: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
4: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया

0: सतीश खोलिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबील पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
0: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी से, सोती रातों में जागी से, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: किशोर कुमार की आवाज में चलती का नाम गाड़ी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत, और इससे ठीक पहले आपने सुना तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

भी

0: जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प

0: देविया फिल्म के गीत में मोहम्मद रफी को आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन।

0: लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे। राहुल देव बर्मन का संगीत समाधि फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की
1: सुबह। तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सहेली नमस्कार सभी सखियों को, सभी सखाओं को, और साथ ही आज हमारे साथ हैं कौन? नेहा।
1: तो आरती जी, नेहा शर्मा का नमस्कार आपको भी और सभी सुनने वालों को भी।
0: बिल्कुल। और नेहा, आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक साथ आए ना।
1: और इतने सारे दिन लेकर आए
0: आज समझ लो दिनों की, यानी कि दिवस की बहार है पूरी।
1: हाँ।
0: तो हम लेकिन बीच बीच में, बात बात में हम अपने दिवस की बात भी करते जाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बता देना चाहिए कि आज हम कौन कौन से विषय लेके आए, ताकि जो हमारे श्रोता है जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर सके। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
1: मुझे कुछ कहना है, हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहे, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल। हाँ, किस तरह से हो,
0: कैसे करनी चाहिए, कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है।
1: हाँ,
0: बस कुछ चीजों को हमें ध्यान रखना है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है, उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना?
1: क्योंकि
0: संगीत का दिन है ना, तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया।
1: तो कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत आने देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं,
1: हाँ,
0: तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा दिन. क्या क्या है, कौन कौन से दिवस है जरा बताइए तो. सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना, बहुत मजा आ जाएगा. क्योंकि देखो, एक तो शाकाहार दिवस, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं, माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया बढ़िया. वैसे शाकाहार में फल भी आता है, सब्जियां आती है, सब कुछ आता है.
0: जब उपवास करते हैं तो बस फलाहार बोल के जो खाते हैं हम,
1: हाँ, वो फलाहार भी वही है. तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया. और हमारा खून भी बढ़ाती है, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती है, तेज करती है. तो बहुत सारी चीजें हैं, तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाये. और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी, तुम्हें क्या पसंद है,
0: ये क्यों पूछे आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ गए?
1: देखो, एक तो शाकाहार दिवस है, समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं,
0: समझ तो गए हम भी, कॉफी या चाय में से क्या पसंद है. तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे.
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या पसंद है, चाय की कॉफी.
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी मिलेगी.
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा.
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है. तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है, है ना.
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन लोग खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते हैं.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि सभी एक नए
1: शाकाहार के साथ में
0: कुछ कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है शाकाहारियों की, इनकी थाली को देखकर, सब्जियां देखकर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है. तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात करते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है.
1: बिल्कुल. लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं कि हाँ कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. आपको जिस कलर की, जिस रंग की सब्जी पसंद है आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए. और देखिये, खाने के समय भाषण सुनना ऐसा ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली चीजें हैं, इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें. तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें, उसको आनंद उठाएं उस पकौड़ों का. तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे. तो हम अपनी अपनी बात करिए, आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक सब्जी को. तो ये बता सकते हैं आप, और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोलवाला.
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे. लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कुछ घरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है. कहते कि क्या बनेगा ते पनीर, कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई आ रहा है तो भी पनीर, कोई नहीं आ रहा है तो भी पनीर.
0: और बहुत दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर. तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग चीजें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की. तो पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग रूपों में
1: हरा भरा भी पनीर हो जाता है जब हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं.
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी. भाई शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो तो अपने आप

0: नहीं है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारी रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग रहता है,
1: सच में
0: तो बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उनपे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है। और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज अब मत खाते रहे कि हमने पनीर खाना तो पनीर चला जा रहा है बाकी चीजों को भी मौका दीजिए अपने स्वाद को पहचानने का। तो दालें हैं और प्रोटीन के और बहुत सारे स्रोत हैं और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं। तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे यार हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो। लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है।
1: बिल्कुल, लौकी को ही नहीं, अगर हम दाल में चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है वो।
0: हाँ, तो वही बात है कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ, मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई मुंह ना,
1: लौकी का कोफ्ता, वाह क्या बात।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका है।
1: कहने की मतलब कहने का मतलब है कि एक छोटी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते वो किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना
1: चाहिए, क्योंकि थोड़ा हटे वहां से
0: दिमाग और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया जाएगा।
1: बिल्कुल, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।

होगा। एक खास जश्न, राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: तो आरती जी, 3 तारीख का जो जश्न है वो तो बड़े जोर शोर से होने वाला है, और हमारे सभी जो श्रोता है वो भी फेसबुक पेज के जरिए लाइव सुनेंगे, शायद
1: सबको इंतजार होगा,
0: लाइव सुनने तो मिलेगा ही उन्हें।
1: बिल्कुल। और अब हम बढ़ते हैं अगले अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कहानी पद्मश्री की। तो आज हम लेकर आए हैं जिनकी कहानी, वो है लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है।
0: जी।
1: और कभी कभी समाज को बदलने के लिए किसी बड़े पद की नहीं, बस एक बड़े सपने की जरूरत होती है, और एक ऐसा सपना जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए देखा जाए जिनकी आवाज उठाने के लिए उनके साहस की जरूरत होती है।
0: बिल्कुल। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो ऐसी प्रेरणादायक महिला है, क्योंकि इन्होंने बैंक को सिर्फ पैसा जमा करने और कर्ज लेने की जगह नहीं माना, बल्कि उसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम भी बनाया। जैसा कि आपने नाम कहा, लक्ष्मी बरुआ है ये, और असम की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी महिला है। उनका जीवन विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है।
1: बिल्कुल। और लक्ष्मी बरुआ का जन्म हुआ आसाम के जोरहाट जिले में हुआ था उनका जन्म, और उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। परिवार की कमजोर आर्थिक परिस्थितियों की चुनौतियों के बावजूद शिक्षा और समाज के लिए बहुत कुछ करने का उनका हौसला जो था वो बना रहा।
0: 1973 में प्रभात बरुआ से इनका विवाह हुआ और इसके बाद इनकी जिंदगी ने नई करवट ली। प्रभात प्रगतिशील सोच के मालिक थे और लक्ष्मी के लिए वो सुलझे हुए जीवन साथी और मेंटोर दोनों साबित हुए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उन्हें कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि 1980 में जब वो जोरहाट के वाहना कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने में कामयाब हुई, तब प्रभात ने उन्हें नौकरी करने के लिए भी प्रेरित किया।
1: बहुत बड़ी बात है ये उस समय के लिए खास तौर पर। और विवाह के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए काम करने का अपना संकल्प छोड़ा नहीं। ग्रामीण विकास, व्यस्क शिक्षा, जरूरतमंद महिलाओं की सहायता और वंचित लोगों के बीच काम करते हुए उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा था कि आर्थिक निर्भरता जो होती है वो महिलाओं के लिए जो उनका जीवन होता है उसको कितना सीमित कर देती है।
0: जी। तो लक्ष्मी बरुआ ने बैंक में काम करते हुए एक ऐसी समस्या को महसूस किया जो आज हमें तो छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी थी। जैसे कि गरीब और कम पढ़ी लिखी महिलाएं जो बैंक तक आती थी, लेकिन बैंकिंग की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार मदद ही नहीं मिल पाती थी।
1: बिल्कुल। और यहीं से उनके मन में सवाल उठा कि अगर बैंक की व्यवस्था इन महिलाओं तक आसानी से नहीं पहुंच सकती, तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो महिलाओं की जरूरतों को समझे। और 1983 में उन्होंने जोरहाट के दक्षिण में महिला समिति की शुरुआत की,
0: और महिलाओं के साथ काम करते हुए उन्होंने महसूस किया कि छोटी छोटी आय अर्जित करने वाली महिलाओं के पास भी सुरक्षित बचत और वित्तीय जानकारी के पर्याप्त साधन नहीं थे। महिलाओं के लिए बैंक खोलने का विचार उनके मन में 1990 के आसपास आकार लेने लगा था।
1: बिल्कुल। लेकिन सपना देखना तो आसान था इतनी बड़ी बात को, लेकिन उसे सच करना उतना आसान भी नहीं था। लक्ष्मी बरुआ को कई कठिनाइयों और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लगभग 8 वर्षों तक उन्होंने प्रयास किए और उसके बाद उनका सपना वास्तविकता की दिशा में बढ़ सका, और अंततः 1998 में जोरहाट में कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना हुई।
0: और इस संस्था का उद्देश्य केवल बैंकिंग सेवा देना नहीं था, इसका उद्देश्य था महिलाओं में बचत की आदत को विकसित करना, उन्हें वित्तीय जानकारी देना, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनाना। और ये बैंक अपने स्वरूप में बहुत ही खास था।
1: ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित था और इसके संचालन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बैंक ने कम आय वाले लोगों

0: और महिलाओं तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया। छोटी बचत से लेकर ऋण और वित्तीय जागरूकता तक इस पहल ने बैंकिंग को उन महिलाओं के करीब लाने का प्रयास किया जो पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से दूर थी।
1: और एक छोटा सा विचार है आरती जी, और ये छोटे से विचार ने ही धीरे धीरे हजारों खातों और अनेक परिवारों के जीवन को प्रभावित किया। लक्ष्मी बरुआ की सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था कि महिला को सिर्फ सहायता देना नहीं है बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर देना होगा।
0: यही सबसे बड़ी बात है कि हाँ, अवसर देना चाहिए उनको। और क्योंकि जब किसी महिला के पास अपनी कमाई होती है, बचत होती है, बैंक खाता होता है और आर्थिक फैसले लेने का आत्मविश्वास होता है तो उसका प्रभाव केवल उस महिला तक सीमित नहीं रहता है और उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
1: हाँ, और बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ता है इसका असर, घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है, धीरे धीरे पूरे समाज पर पड़ता है। और यही कारण है कि लक्ष्मी बरुआ की कहानी केवल बैंक की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान की कहानी है।
0: बिल्कुल, उनके सामाजिक और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को अनेक स्तरों पर सम्मान भी मिला। 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से जुड़े सम्मान के माध्यम से कनकलता महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य को भी राष्ट्रीय पहचान मिली और लक्ष्मी बरुआ को देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और फिर आया वर्ष 2021 जब सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया।
1: और ये सम्मान उनके लिए नहीं बल्कि उन असंख्य महिलाओं के संघर्ष और आत्मनिर्भरता की कहानी के लिए महत्वपूर्ण पहचान बना जिनके लिए उन्होंने वर्षों तक काम किया। लक्ष्मी बरुआ का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सच्चा बदलाव वही है जो किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत दे। तो जब महिलाएं काम करती हैं, कहते ना वो जिस तरह की बात है कि महिला अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार पूरा समाज शिक्षित होता है, उसी तरह से जब एक महिला ये सोचती है कि महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है या समाज के लिए कुछ करना है तो बदलाव जरूर आता है।
0: बिल्कुल, और एक बदलाव हम लेके आते हैं कि एक गीत संगीत में से कोई गीत सुन लेते हैं।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ

0: तो आरती जी, हम तो बातें कर रहे हैं लेकिन हमारे साथियों ने लिखना शुरू कर दिया है कि कौन कौन सी सब्जियां उनके घर में बनती है।
1: अच्छा,
0: तो हमारे एक साथी कह रहे हैं हम तो सब्जी आजकल गोभी की ज्यादा खाया करते हैं, कल आलू की सब्जी खाई थी, आलू भी स्वादिष्ट थे, आगरे के थे वो मीठे होते, पंजाब का आलू स्वादिष्ट नहीं होता है। अच्छा। हमें तो आलू एक जैसा ही लगता है सारा।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि सही कहा आपने, आलू ही जीतेगा, सबसे ज्यादा आलू पसंद है हमारे घर में सबको, पनीर तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे पनीर तो सभी को पसंद होता है, चलिए आपको पसंद नहीं,
0: नहीं सभी
1: तो
0: आप को आलू खा सकते हैं। सभी को आलू भी पसंद होता है, सभी को कुछ भी,
1: क्योंकि आलू में भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिल जाता है, कहते ना उसमें आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
0: हमारे एक साथी कह रहे कल ही हमने हमारे घर पनीर बनाया था, छोटी वाली बहन ने बकायदा प्यार से दही मटर छोले और आलू मिक्स कर करके बनाया था, लेकिन बाद में पता चला कि आज तो वो उपवास है, फिर क्या हुआ वो रह गई।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि प्लेन रोटी के साथ पनीर की भुर्जी अच्छी लगती है, जैसे कि तुमने बताया था नेहा, क्योंकि उसमें मसाले कम जाते हैं, पनीर का रियल टेस्ट भी, ये तो सही बात है, मसाले कम डालो तो उसका जो स्वाद है ना वो निखर के आता है।
0: बिल्कुल, और पनीर की बात भी एकदम निराली है, क्योंकि एक जैसा सफेदी लिए पनीर होता है ना, उसको इतना ज्यादा मसाले में डालने में ऐसा लगता है कि कुछ तो बेचारे को हम बहुत परेशान कर रहे हैं ऐसा लगता है ना। हमारे एक साथी जो अलग अलग बातें तो लिख रहे हैं, लेकिन अभी देखिए सब्जी की जो बातें उन्होंने लिखी, आलू सबके साथ चल जाता है,
1: सबके साथ,
0: तो आलू हमें सिखाता है कि हमें उसकी तरह बनना चाहिए कि हम सबके साथ घुल जाए और अकेले भी हमें खाया जा सके, खाया तो नहीं जा सके बट अकेले भी हम चल सके अपने जीवन में और सबके साथ मिलकर भी चल सके। लेकिन पनीर को हमेशा किसी न किसी चीज की जरूरत होती है ना, खाली पनीर भी खाया जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे सेक के खाते हैं, भले चाट मसाला डाल के खाते हैं, तो उसका जो टेस्ट बढ़ जाता है
1: वो तो है नहीं है, लेकिन पनीर को बैगन के साथ नहीं खा सकते ना। आलू को बैगन के साथ भी खा सकते हैं,
0: आलू को पनीर के साथ भी खा सकते हैं,
1: बिल्कुल आलू को पनीर के साथ और खा सकते हैं, और साथ ही जो बैगन के साथ में आलू खा सकते हैं, ऐसी सब्जियां जिनके साथ में पनीर नहीं खा सकते उनके साथ भी आलू चल सकता है, यानी कि आलू जीतता है।
0: तो आलू को हम जिताएं उससे पहले एक अंतराल
1: ले लेते हैं।

0: कार्यक्रम के बारे में बता दिया, सब विषय बता दिए, अब पहले गीत, यानी कि शुरुआत हम जब कार्यक्रम की संगीत से करते हैं ना, तो पूरा जो कार्यक्रम है वो संगीत में हो जाता है ना, एक रिदम में आ जाता है।
1: हाँ, जब हम बहुत देर तक बातें करते रहते हैं तो बीच में एक संगीत आता है तो एक अलग सी अनुभूति भी होती है, भाव अलग हो जाते हैं।
0: और कभी कोई धुन हमें हंसा देती है तो कभी वही धुन अनकहे आंसू भी ले आती है।
1: और कभी ऐसा भी महसूस किया हो हमारे श्रोताओं ने कि कोई पुराना गीत अचानक जब सुनाई देता है तो हम बरसों पीछे लौट जाते हैं, वही कमरा, वही मौसम, वही चेहरा, वही अधूरी सी कहानी। संगीत के पास यादों को सहेज कर रखने की एक अनोखी शक्ति होती है, और एक धुन जिसे हमने शायद वर्षों से नहीं सुना है लेकिन पल भर में अगर हमने उसे सुना तो पल भर में बीते हुए समय का पूरा दरवाजा खोल देती है।
0: कभी कभी लगता है ना, जब कोई पुराना गीत सुन रहे होते ना तो एकदम से खो जाते हैं उसी में, उस पूरा दृश्य हमारे सामने आने लगता है। तो संगीत खुशी में हमारा साथी है और उदासी में हमारा हमराज। जब हम थके हुए होते हैं, जब हमारा मन थका हुआ होता है, कोई मधुर राग भीतर जैसे धीमी सी रोशनी जला देता है। जब दिल किसी बात से भारी होता है, संगीत उस दर्द को शब्द दिए बिना समझ लेता है। और शायद इसीलिए कई बार हम किसी से अपनी परेशानी नहीं कह पाते, लेकिन एक गीत सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ, यही तो मैं महसूस कर रहा था। बिल्कुल
1: हाँ, तो वो गीत सारी बातें हम तक साझा कर देते हैं। संगीत की खूबसूरती भी तो यही है कि इसे समझने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं है। शास्त्रीय राग हो, लोकगीत हो, भजन हो या कोई सादा सी कोई धुन हो, हर सुर अपनी तरह से मन को छूता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी एक ही संगीत पर मुस्कुरा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और बचपन में माँ की लोरी से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक संगीत हमारे साथ चलता है। त्योहारों में भी गीत है, प्रार्थनाओं में स्वर है, प्रेम में धुन है, और विदाई में भी संगीत की एक धीमी सी प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जैसे जीवन की कहानी शब्दों से नहीं सुरों से भी लिखी जाती हो।
1: हाँ, और शायद संगीत का सबसे बड़ा जादू भी तो यही है ना आरती जी, कि हमें हमारे भीतर से मिला देता है। कुछ देर के लिए अगर दुनिया की भागदौड़ जो होती है वो रुक जाती है, आंखें बंद करते हैं और हम अपने ही मन की आवाज सुनने लगते हैं संगीत में डूबकर।
0: और इसीलिए जब कभी मन उदास हो, कोई प्यारी सी धुन को आप सुन सकते हैं। हो सकता है समस्या वही रहे लेकिन उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो बदल जाए, क्योंकि संगीत हमेशा परिस्थितियां नहीं बदलता, कभी कभी वो हमें इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां हमें थोड़ी आसान लगने लगती हैं।
1: और संगीत सुनाई सिर्फ नहीं देता है बल्कि महसूस होता है, याद बनता है, और कभी कभी जीवन

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली।
1: सखी सहेली
0: सिर्फ हम आलू गोभी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे संगीत।
1: हाँ बिल्कुल, आलू गोभी की हमने बात कर ली है जी। हम संगीत पे आते हैं तो संगीत कुछ सुरों का मेल भर नहीं है, बल्कि वो एहसास है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुंच जाता है। यानी कि जब हम गीत सुनाते हैं, जब कहते हैं ना कि हमने

0: तो ये जागरूकता दिवस है। और हमारे जो साथी हैं क्या क्या लिख रहे हैं, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत तो मेरी रूह है, जान है, जिंदगी है, जब से होश संभाला है तब से संगीत और गीत सुनती आई हूं, और विविध भारती मेरे रेडियो ट्रांजिस्टर और अब फोन में बजता ही रहता है, मेरे किचन, बाथरूम और आराम करते समय, सोते समय भी बजता है क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आ गई हूं, पर मुझे शुरू से ही पुराने फिल्मी गीत संगीत बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा कि केएल सहगल, पंकज मलिक, सीएच आत्मा और हेमंत कुमार, लता रफी, गीता दत्त बहुत पसंद है, आजकल के गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गीत हैं जो उनको आज के भी अच्छे लगते हैं।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे साथी के लिए संगीत का जादू ऐसा जो सिर चढ़कर बोलता है, विविध भारती इसमें मेरी सबसे प्रिय और सहयोगी रही है उन्हें। और एक और साथी कहते हैं कि संगीत का जादू तो मेरे सिर चढ़कर बोलता है, ऐसा मेरे घर के लोगों का कहना है। सच भी यही है, मैं खुश रहती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, दुखी होती हूँ तो संगीत सुनती हूँ, बहुत गुस्से में होती तब भी संगीत चलता ही रहता है। हालांकि मेरी मम्मी बोलती घर में कुछ भी हो जाए इसका रेडियो बंद नहीं होता। वैसे आजकल की बात नहीं है, बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी रेडियो सुने बिना मेरी पढ़ाई नहीं होती थी।
0: बहुत ही अच्छी बात है। तो और संगीत, एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि संगीत केवल फिल्मी संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसको इतना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर तरफ व्याप्त है संगीत। हवा की रागनी में घुला है संगीत, झूमते वृक्षों में, बहते दरिया में है संगीत, भंवरे की गुंजन में है संगीत, मंदिर की बजती घंटियों में है संगीत, गौरी की बजती पायल खनकती चूड़ियों में है संगीत, आसमां से बरसती बूंदों में है संगीत, पक्षियों के मधुर कलरव में है संगीत। सच में रूह का सुकून है ये संगीत।
1: वाह क्या बात हमारे साथियों ने कही है। तो इन संगीत से जुड़ी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है, पर क्यों ना इस वक्त एक संगीत
0: एक बिल्कुल गीत तो सुनना ही चाहिए
1: जी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की
0: जुबान। तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: और मन झूमने लगता है आरती जी जब संगीत की बात हो। हमारे एक साथी लिखते हैं कि संगीत एक ऐसी अलौकिक कला है जो बिना किसी भाषा और सीमा के सीधे दिल से जुड़ती है। ये सिर्फ सुरों और ताल का मेल नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है।
4: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जब भी अपने बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस कि जब भी मेरे पतिदेव से जब मैं नाराज होती हूं या गुस्सा होती हूं तो वो मुझे गीत गाकर मनाते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एकदम से खिलखिला उठती हूँ। भाई क्या बात है।
3: और हमारे एक साथी कह रहे कि संगीत एक ऐसा जादू है जो बिना शब्दों के भी दिल की बात कह देता है। इसकी मधुर धुनें कभी चेहरे पर मुस्कान ले आती है तो कभी आंखों में पुरानी यादों की नमी भर देती है। संगीत में मन को सुकून देने, थकान मिटाने और उदास दिल को संभालने की अद्भुत शक्ति होती है। कोई धुन हमें बचपन की गलियों में ले जाती है तो कोई गीत किसी अपने की याद दिला देता है। सुर, ताल और शब्द

0: हैं कि मैं तो लोक गीतों की भी बहुत शौकीन हूँ और प्रादेशिक हो या किसी भी भाषा को उनको लोकगीत बहुत पसंद है। तो गीत वो तो कोई भी हो सकता है, लोकगीत हो या किसी भाषा का हो, संगीत तो संगीत है फिर। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि जहां शब्द थम जाते हैं वहां संगीत बोलना शुरू करता है। शायद इसीलिए संगीत केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जहां शब्द खामोश हो जाते हैं वहां संगीत दिल की भाषा बनकर बोलता है।
1: तो हमारे कई साथियों ने से एक ही तरह की बातें लिखी, क्योंकि संगीत से जुड़ी जो भावनाएं हैं वो एक तरह से हम सबकी एक ही है। हमारे कह रहे हैं कि सुर ना सजे का गांव में एक साथी ने लिखा है, सुर के बिना जीवन सूना, संगीत का जादू वो अदृश्य शक्ति और प्रभाव है जो बिना किसी भाषा की सीमा के सीधे मन और आत्मा को छू लेता है। ये भावनाओं को जगाने, थकान मिटाने और लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। संगीत हमारी गहन भावनाओं को व्यक्त करता है जिन्हें कई बार साधारण शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। तनाव भागदौड़ के बीच संगीत सुनने से मन को असीम शांति और ताजगी मिलती है। पुराना संगीत सुनते ही इंसान पल भर में अपनी पुरानी यादों और बीते हुए पलों में पहुंच जाता है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, ये हर संस्कृति और देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है। लेकिन यहाँ आरती जी एक बात कहना जरूरी है कि भाई संगीत तो बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते भी हैं, पर ऐसा नहीं हो कि हम जब सड़क पे जा रहे हैं तो संगीत कानों में हमने लगा लिया, हेडफोन लगा लिया और हमने सोचा कि चलो सुनते सुनते ही जाएंगे आज हम, और उस वक्त संगीत आपको अगर कहीं किसी दूसरी दुनिया में या किसी दूसरी यादों में आपको खोने के लिए मजबूर कर देगा तो सड़क नहीं, पर नहीं, आपका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
0: बिल्कुल, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ी सावधानी, ये भी कोई भी चीज सावधानी के साथ अगर करी जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो सड़क पर चल रहे हैं या आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप संगीत को थोड़ा देख रोक दें, तो वो आप जब कहीं बैठे हैं या कहीं आप आराम से अपने घर में या इस तरह से कभी हैं तो आप तब सुनिए कहीं। लेकिन बाहर जाते समय या रेलवे स्टेशन में कई लोग ट्रैक पे जब चलते हैं है ना, ट्रेन की वो पार कर रहे होते हैं रेल लाइन के, तो वहां पे भी आप ये सब मत लगाएं तो अच्छा रहता है, नहीं तो बहुत सारी दुर्घटनाओं का कारण बन जाता है।
1: और अगर आप सार्वजनिक स्थान पर हैं और सफर कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने एकदम जोर से जो लगा देते हैं ना संगीत की भजन, आप भजन भी सुन रहे हो, चाहे कोई बहुत ही अच्छा संगीत भी आप सुन रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि किसी और को भी वो संगीत पसंद आ रहा हो। और तेज आवाज में जब संगीत चलाया जाता है तो कभी कभी जो उसकी जो खूबसूरती है वो खो जाती है, तो वो भी आपको उससे भी बचना चाहिए
0: और अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरों को भी हो सकता है किसी को खराब या किसी को परेशानी हो रही हो, कोई बीमार हो या कोई परेशानी हो सकती है, तो संगीत को उतना ही सुनिए जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो।
1: तो संगीत को जो मधुरता उसकी है उसकी मधुरता बनी रहे, बस इसका ध्यान रखना चाहिए,
0: जैसे लड़ाई झगड़े ना हो। और दूसरी चीज है कि आप, क्योंकि आप बाहर लगा अगर आप गाड़ी चला रहे हैं उस समय आप तेज आवाज में सुन रहे हैं तो हो सकता है दुर्घटना का कारण बन जाए, कोई सामने वाले को किसी को परेशानी हो जाए, तो आप चीजों को ध्यान में रखते भी आप संगीत को सुनिए। और एक हमारे साथी हैं जो लिख रहे हैं कि संगीत केवल सात सुरों का संगम नहीं है बल्कि आत्मा की भाषा है जो बिना किसी शब्दों के सीधे दिल तक पहुंचती है। बहुत अच्छी बात लिखी उन्होंने भी।
1: बिल्कुल, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो साथी हैं उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं बिल्कुल मिल रही है आपस में, क्योंकि एक तरह से संगीत के लिए अगर कहा जाए तो कुछ यही बातें हम कह सकते हैं जैसे भावनाएं हमारे साथियों ने भेजी है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर, मतलब हम दोनों कहने का ये अर्थ है कि हम सब मिलकर एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं संगीत के समय।

0: इश्क है।
1: तो आरती जी ये बातें तो हो गई, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो तो हमने की नहीं।
2: कौन सी जरूरी बात नहीं की हमने?
1: इतने सस्पेंस आपने ले आया, लेकिन वृद्धजनों की देखभाल के उपयोगी टिप्स जो हमें देने थे और हमारे साथियों ने ढेर सारे कमेंट्स के जरिए
2: उसी पे आ रहे हैं हम लोग, उसी पे तो आ रहे हैं अब। और क्योंकि हमारे साथियों ने कितना सारा तो लिख के भेजा है, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, तो हम ले लेते हैं अपने साथी का पहला कमेंट जो लिखते हैं कि सभी को वरिष्ठ नागरिक दिवस पर शुभकामनाएं दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। वैसे देखा जाए तो इन्हें स्वस्थ और हर हाल में खुश रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है, पर आजकल के जो युवा वयस्क हैं वे तो समझदार हैं पर इन्हें शायद और जागरूक होने की जरूरत है। वरिष्ठ नागरिकों को आदर सम्मान और हर तरह से उनका ख्याल रखने की जरूरत है। एक तरह से नई पीढ़ी उनसे बहुत कुछ सीख सकती है, उनके पास बहुत सारे अनुभव तो होते ही हैं।
1: और हमारे साथी कह रहे हैं कि हमारे घरों में कहा जाता है बुजुर्ग हमारे दरवाजे की शोभा होते हैं, तो उन्हें अपनी शोभा बनाए, घर के कोने में पड़े हुए शोपीस नहीं बनाए। और एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन बुजुर्गों की देखभाल और उनकी देखभाल की जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो उन्होंने इसकी हमें बधाई दी है।
2: अच्छा, और साथ ही हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि मेरे मम्मी जो 83 वर्ष की आयु की हैं वो मेरे साथ रहती हैं और वो वॉकर से चलती हैं और उनको मतलब खाने में परेशानी होती है कि उनके दांत में भी दांत भी नहीं है, तो लिखते हैं कि मेरी वाइफ उनको सब खाना क्रश करके मतलब पीस के देती हैं, उनको ब्रश स्नान जैसे सारे कामों में हेल्प करते हैं वो और दवाई वगैरह सब अच्छे से देते हैं। सब चीजें लिखी है कि पूरी चीजें सब काम करते हैं उनका। उनके पास सादा कीपैड का फोन है, उनको स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो मैंने अखबार लेना और टीवी से केबल मतलब उनको कनेक्शन चालू करवा दिया ताकि उनका टाइम पास हो और दुनियादारी से वो अपडेट रहे। तो उनसे वो बात करते हैं जब शाम को अपने जॉब से आते हैं, तो वो बात भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने साथ में अपने जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो बुजुर्ग हैं उनके साथ में बैठना, उनके साथ बातें करना, खाना पीना, यही चीजें हैं बस देखभाल के लिए, और कुछ आपको नहीं करना होता है कुछ ऐसा।
1: हमारे साथी भी कह रहे हैं कि बुजुर्ग होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि ये जीवन का एक सम्मानित और सुंदर पड़ाव है जिसपे अनुभव की परिपक्वता और गरिमा होती है। बुजुर्गों के पास जीवन का लंबा अनुभव और ज्ञान होता है जो आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। वे हमारे समाज की अनमोल धरोहर है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से परिवार और समाज को सींचा है। हर उम्र की एक गरिमा होती है जिसे हमें ईमानदारी से स्वीकार करके खुशी से अपनाकर जीना चाहिए।
2: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि वृद्धजनों की देखभाल की बात मैं क्या करूं जब मैं खुद 75 पार कर चुका हूं और घर में तो सभी दादा कहते ही हैं। अब विविध भारती फेसबुक पेज पर जुड़े हमारे सभी साथी भी दादा कहकर पुकारते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। घर के सदस्य सभी मेरी अच्छी देखभाल रखते ही हैं, बाकी मैं खुद अपनी देखभाल रखता हूं। रोज सुबह विविध भारती जागो सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूं, शाम को इवनिंग वॉकिंग करने जाता हूं और रात ढलती जाए रात सुनते हुए शुभ रात्रि हो जाती है। अब मैं सखी सहेली शुरू होने से पहले एक छोटी सी झपकी ले लेता हूं, तो अपनी झपकी से उन्होंने देखिए झपकी भी अपनी तोड़ी और हमारे लिए लिखा भी उन्होंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और हमारे साथी ने लिखा है कि वृद्धजनों की देखभाल उनके शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक शांति और भावनात्मक जुड़ाव का ध्यान रखकर पूरी गरिमा और स्नेह के साथ करनी चाहिए। बुजुर्गों की सही देखभाल के लिए मुख्य बिंदु उन्होंने बताया कि रक्तचाप मधुमेह और अन्य पुरानी बीमारियां अगर हो तो समय समय पर जांच कराएं, डॉक्टर जो निर्देश दे उसके अनुसार उन्हें दवाई दें, भोजन में प्रोटीन विटामिन

0: भी कैल्शियम, ताजे फल और हरी सब्जियां शामिल करें। पानी की कमी से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पानी पिलाते रहें। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, उन्हें अकेला न रहने दें। कुछ कमियों के बावजूद परिवार में एक सहारे के साथ बहुत खुश रहते हैं हमारे जो वृद्धजन होते हैं, तो उन्हें बहुत लग्जरी सुख सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि प्यार और देखभाल सम्मान की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल, वो सम्मान आप प्यार देते हैं तो बस वो देखभाल हो गई, इससे ज्यादा बड़ी देखभाल तो और क्या होगी जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं। तो इसी के साथ एक छोटा सा गीत सुन लें।
2: आ

0: तो बहुत शुक्रिया, हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारे साथी चाय को पसंद करे, कॉफी को नहीं।
1: वैसे आज कॉफी दिवस है लेकिन हाँ। चाय ने बाजी मार ली है।
0: कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत गया। आप आपकी चाय जीत गई तो कोई बात नहीं, हमारा आलू भी जीत
1: आलू भी जीता है।
0: और हमारे एक साथी लिख रही कि चाय मुझे बहुत पसंद है, सुबह ब्लैक कॉफी पीता हूँ। देखो कॉफी पी रहे हैं वो, और कह रहे नाश्ते के बाद दूध वाली चाय। इतनी चाय की बात हो रही है, अभी कोई आया तो चाय तो मुझे बनाना ही है, कॉफी ज्यादा पी लेता हूँ खासकर शाम को, तो रात को मेरी नींद गायब रहती है। मतलब मिली जुली सरकार चली है, इन्हें कॉफी और चाय दोनों पसंद आ रही
1: है। तो एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, आइस टी भी पसंद है इनको, और ये जो भी चीजें बनती हैं घर में खा लेते हैं। इन्होंने बोला ये टिंडे भी खा लेते हैं, इन्होंने सब्जियों के बारे में बताया कि ये सब्जियां भी स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो भरवा टिंडे, भरवा शिमला मिर्च, और सच बोलूं तो करेले की सब्जी भी फेवरेट है। क्या बात है, सच में
0: कुछ हमारी टीम के लग रहे हैं। और हमारे एक साथी ने कहा मुझे चाय बहुत पसंद है, जब भी कभी यार दोस्त मिलते हैं तो चाय की चुस्की तो होती है, बैठे बैठे गप्पे हो जाती है, और इस बीच कुछ खाने को हो जाए तो कचौड़ी या दाल मंगोड़े की बात ही क्या। मतलब प्रोग्राम के बीच में अगर खाने की बातें होती है तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें जाके चाय पकौड़ी कुछ खाना चाहिए। अब हमें ये सोचना भी पड़ेगा क्योंकि घड़ी भी आज हमारा साथ दे रही है, क्योंकि घड़ी भी ये इशारा कर रही है कि हम जाए चाय पकौड़े खाएं, कॉफी भी पी सकते हैं।
1: कॉफी आज तो कॉफी पियेंगे, क्योंकि आज कॉफी दिवस है तो कॉफी।

0: तो पीनी ही पड़ेगी हमें।
1: तो ये भी बताते चले कि कॉफी दिवस अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन ने 2015 में पहली बार मिलान में इटली में इसे मनाना शुरू किया था उन्होंने, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो लाखों किसानों और श्रमिकों का समर्थन करना था जिनकी आजीविका इस फसल पर निर्भर करती है। और फिलहाल ये निर्भर करता है कि समय तो कह रहा है कि बिल्कुल अब आप अलविदा कह दें, तो स्वीकार कीजिए नेहा शर्मा
0: और आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सबसे पहले तो ये टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए, 0222867 0288, यानी 02228670288। दूसरा टेलीफोन नंबर है 0224002466 2, यानी 02240024662। ये दोनों बड़े काम के नंबर हैं, क्योंकि इन्हें जब आप सोमवार को दिन में 11 बजे डायल करते हैं तो हम विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से कहते हैं हेलो फरमाइश, और फिर आपसे करते हैं बातें और पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। तो शुरू करते हैं आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सिलसिला, ये बताते हुए कि रिकॉर्डिंग सोमवार को होती है दिन में 11 बजे से। आज का पहला कॉल ये रहा। हेलो फरमाइश
1: जी। यूनुस जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ, रामनगर गुना मध्य प्रदेश से।
0: नरेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम इन दिनों में आपको अच्छे लगे हैं?
1: इन दिनों में अच्छे लगे हैं, सबसे पहले तो यही है हेलो फरमाइश, और आपने फिर से शुरू किया है सखी सहेली का जो हेलो सहेली कार्यक्रम, वो भी लाजवाब है, पसंद आ रहा है। और जो पत्रों पर आधारित मन चाहे गीत फिर से शुरू हुआ, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यक्रम तो विविध भारती में बहुत सारे हैं, और ज्ञान और मनोरंजन का खजाना है विविध भारती।
0: विविध भारती अब अपनी यात्रा के 69 बरस पूरे करते हुए 70वें बरस में प्रवेश कर रही है 3 अक्टूबर को, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना

0: एक प्यार का नगमा है, मोटो की रवानी है,
1: जिंदगी का दर्शन छिपा हुआ है इस गाने में, संतोष आनंद के बोल हैं ये। चलिए बहुत शुभकामनाएं, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार यूनुस जी।
0: नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं बीकानेर गंगा शहर से उत्तम सोनी बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह उत्तम जी, उत्तम हुआ कि आपका कॉल लग गया।
1: जी सर, और पहली बार आपसे बात हो रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है सर।
0: जी जी जी, मुझे बताएं कि ये जो गंगा शहर है ये कहाँ है और ये गंगानगर से कितना अलग है?
1: ये गंगानगर तो अलग जिला है सर।
0: अच्छा।
1: और अपना जो गंगा शहर है ना, ये बीकानेर का ही उपनगर है, बीकानेर का ही एरिया है गंगा शहर।
0: अच्छा क्या बात है, और बीकानेर तो भाई बहुत ही अलबेला शहर है।
1: बिल्कुल सर, हमारे शहर के खाने पीने की चीजें बहुत फेमस हैं।
0: बिल्कुल बाकायदा, और वहाँ की अपनी एक संस्कृति है।
1: बिल्कुल है, पुराना शहर है सर।
0: जी
1: पकौड़ी, खाने पीने की सारी वस्तुएं बहुत ज्यादा फेमस है सर हमारे यहाँ की, नमकीन।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी इतनी सारी बीकानेर की बातें हो रही थी तो एक कोई लोकगीत नहीं सुनाएंगे तो फिर ये कॉल तो सुना सुना हो जाएगा।
1: जी सर, मेरी आवाज तो वैसे खास नहीं है।
0: फिर भी कोशिश कर लीजिए।
1: बन्ना रे भागा में झूला गालिया।
0: अच्छा बहुत ही मशहूर है ये ना। हाँ बिल्कुल
1: जी, राजस्थानी सॉन्ग बहुत फेमस है सर यहाँ के।
0: बिल्कुल बहुत ज्यादा, और वहाँ के कई गायक जो हैं वो बड़े मशहूर हुए हैं।
1: बिल्कुल हुए हैं सर।
0: आप मुझे बताएं कि आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप?
1: तोबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के।
0: ओहो।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, हम नारायण कुमार पटेल बजहा धमकरिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, क्या बात है। बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना हमको जो है हीर राजा का, ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं।
0: इतना ज्यादा निराश क्यों हो रहे हैं भाई? ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, आवाज भी थकी हुई लग रही है।
1: मुझे अच्छा लगता है मोहम्मद रफी का गाना सुनने में, अच्छा लगता है, निराश नहीं हो रहे हैं।
0: अरे भैया, हम तो घबरा गए थे कि आप इतना आराम से थके हुए बोल रहे हैं ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं। हम तो अभी आपको समझाने वाले थे।
1: नहीं नहीं सर, समझाने वाले नहीं थे, इधर थोड़ा हम अपना गांव तरफ में भी खाली थे।
0: अच्छा,
1: वो आप लगाने लगे तो इस टाइम आप ही से बात हो रही थी, हमने सोचा कि फोन लगाए आपसे, बहुत बड़ी ख्वाहिश थी बात करने के लिए। हम 1995 से रेडियो सुन रहे हैं, पहले रेडियो सुनते थे, मोबाइल ऐप सुनते हैं।
0: अच्छा, ये बताइए, खेत वेत सब जगह चलता है विविध भारती फिर?
1: हाँ सर, एकदम क्लियर, चाहे जहाँ जाओ। इसमें हम धान के खेत में टहल रहे हैं, धान फूट गया है।
0: अच्छा,
1: आंधी तूफान आया जिससे कुछ धान गिर गए हैं, नुकसान हो गया है।
0: जी जी, समझ रहे हैं, मौसम खराब हो गया ना अचानक, इसलिए। अच्छा, हमें बताएं, विविध भारती इतने ध्यान से इतने सालों से आप सुनते रहे, तो वक्त के साथ जो बदलाव आए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है?
1: जी, बहुत बढ़िया बदलाव आया, क्योंकि हम वो जमाना जानते हैं जब रेडियो शॉर्ट वेव पे आता था, कुछ आवाजें क्लियर नहीं आती थी, सतरा की आवाज जो है धीमी हो जाती, फिर तेज होती थी, फिर उसके बाद 2:30 बजे तक वो शॉर्ट वेव पे ये प्रसारण बंद रहता था, चलता था हमारे यहाँ।
0: जी।

0: FM जो है दो बैंड के रेडियो होते थे शॉर्ट वेव मीडियम वेव, उसमें एक प्लेट 100 रुपए एक तब लगती, तब 40 रुपए मजदूरी थी, तो 100 रुपए की प्लेट लगा दिया करते थे तो वो स्विच रहता था, उसको स्विच ऑन कर दो एरियल लगा रहता था, ऊपर कर दो तो साफ क्लियर FM है हमारे यहाँ प्रयागराज 10.3 MHz सुनाई देता था। फिर उसके बाद एक बॉक्स आने लगा, उसमें स्पीकर और FM सेट, बिजली जो बिजली बचता था वो कोई गोमती में दुकान में कमरे में लगाए रखते थे, और पढ़ने वाले बच्चे भी कमरे में लगाए, तो हम रेडियो सुनते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम कक्षा 2 में थे तब से यानी सुन रहे हैं, जब से यानी हमको संभाला है हमने।
1: अलग अलग तरह के कार्यक्रम हमारे आते हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको ज्यादा पसंद रहे हैं?
0: जी आज के फनकार हो गया, हेलो फरमाइश, उसके बाद जो है हमारे मेहमान, सेहतनामा हो गया है, एक सखी सहेली आता, अब तो मन चाहे गीत भी शुरू हो गया है जिसमें हम पत्र डाल भी चुके हैं।
1: अच्छा बढ़िया।
0: हाँ जी, और एक आपका जिज्ञासा जो है वो तो एकदम समझो मजा अच्छा। आ जाता है सुनकर।
1: अरे बहुत शुक्रिया। तो फिर अब हमको समझ में आ गया कि आप ठीक ठाक हैं, मतलब सिर्फ गाना ही था, ऐसा कोई मन की हालत ऐसी नहीं है?
0: गाना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, हम अपने आप में खुश रहते हैं।
1: बस ऐसे जोश में रहना है ना, भले गाना अपन ये वाला सुन लेंगे, ठीक है, सुनाते हैं आपको ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन काम की तो है ना
0: सर।
1: सुनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा विशाल जी, सब ठीक है?
1: हाँ बढ़िया सर।
0: और इंदौर की क्या हालचाल है?
1: इंदौर के बढ़िया, मौसम अभी खुशनुमा है और थोड़ी बारिश अभी बंद है।
0: अच्छा, हमने तो सुना था खूब बारिश हुई पिछले दिनों इंदौर में।
1: हाँ पिछले महीनों में हुई थी, पर अब नहीं हो रही है, थोड़ी बारिश की थोड़ी प्रॉब्लम है इधर।
0: अच्छा, और आपका काम काज

0: कैसा चल रहा है?
1: सर मैं रेडीमेड के सिले का काम करता हूँ इंदौर में, और बढ़िया चल रहा है।
0: और विविध भारती के कार्यक्रम सुनते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सर, आपके तो खास करके।
0: अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट सिंगर कौन है?
1: मेरी फेवरेट सिंगर लता जी है और आशा जी।
0: क्या बात है, तो उनके गानों की फरमाइशें आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में करते रहते हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और लता जी का तो जन्म ही इंदौर में हुआ था भाई?
1: हाँ इंदौर में हुआ था, हम जानते हैं ना, उनके शराब से हम लोग गाने सुनते रहते हैं, और जैसे कुछ उनके कार्यक्रम वगैरह भी आते हैं।
0: हाँ
1: वो भी सुनते हैं।
0: इंदौर का जो फूड कल्चर है वो तो बड़ा कमाल है, तो इन दिनों जो है वो कौन कौन से व्यंजनों का मजा लिया जा रहा है?
1: सर हमारे यहाँ पे सराबा फेमस है, तो अभी जैसे अभी मौसम के हिसाब से भुट्टा किस वगैरह अच्छा चलता है।
0: और वो कचौड़ी?
1: बिल्कुल, यहाँ पे कचौड़ी और ये चीज तो फेमस ही है सर यहाँ पर।
0: बिल्कुल, जैसे इंदौर को याद करो तो अपना एक फूड कल्चर याद आता है ना?
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ खाने पीने की बहुत फेमस चीजें हैं, यहाँ पर
0: कोई एंड नहीं है खाने पीने का।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो ये बारिश के मौसम में दाल बाफले के मजे लिए जा रहे हैं?
1: हाँ लिए जा रहे हैं सर, ये भी हमारे सराफे में बहुत फेमस है।
0: अच्छा तो इंदौर वासी तो निकल पड़ते होंगे सराफे की तरफ जब मन चाहे?
1: हाँ बिल्कुल, रात को 4 बजे तक चालू रहता है सर ये।
0: बहुत सही।
1: ये गाना सुनना है सर मुझे।
0: कौन सा?
1: राजा और रंग की मूवी का, मेरा नाम है चमेली।
0: ओके, आवाज में क्या बात है। तो चलिए फिर आपको सुनवाते हैं राजा और रंग फिल्म का।

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी, मैं आरिफ खान मंसूरी बोल रहा था भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: आरिफ खान मंसूरी साहब, आपकी बहुत फरमाइश आती है।
1: सर आपसे मेरी 15 साल पहले बात हुई थी सर।
0: अरे नहीं, यहाँ नहीं आती है, वो फेसबुक पे आती हैं, चिट्ठियों में आती हैं।
1: बाकी तो सब में आती हैं, और मैंने आपसे बहुत साल पहले बात हुई थी।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ सर, भोपाल के किस इलाके में हैं आप?
1: सर भोपाल के कोलार इलाके में सर हम।
0: अच्छा अच्छा, बताइए क्या हालचाल है आपके?
1: सर बढ़िया है, मैं टेलर हूँ
0: जी,
1: और जो आरती से मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी,
1: और 2000

0: 2005 और 2010 के बीच में मैंने मुंबई में 150-200 फल लगाए होंगे सर, कम से कम।
1: अरे बाप रे, ये तो रिकॉर्ड हो गया भाई।
0: और जितने भी आगे थे उस टाइम के, कमल शर्मा जी हो, सहनाज जी हो, चाहे ममता जी हो, जितने भी आगे थे सबसे मेरी बात हो चुकी थी।
1: और मेरे से?
0: और सर आपसे 2-3 बार आपसे बात हुई थी सर मेरी।
1: अच्छा
0: सर, क्या है कि मैं जैसे आपसे आज मेरी बात हो रही है तो मैं डायरी में नोट होकर रख लेता हूँ, तो मेरे पास वो 2005 से और 2010 तक मैंने फोन लगाया, वो डायरी में मेरे पास सब नोट कर लिखा हुआ है सर।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया है। आप बताएं कि एक पुराना भोपाल हुआ करता था, एक पूरा कल्चर भोपाल का 30-40 साल पहले जिस तरह का था, क्या वो आज खो गया है?
0: तो अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है सर, पुराने भोपाल भी अब बहुत डेवलपमेंट हो गया है, नए भोपाल भी जो बन गया है, और ये कोलार इलाका भी पहले भोपाल में नहीं आता था, अभी 5 साल से आ रहा है।
1: नहीं, लेकिन जो तहजीब थी भोपाल की, जो पुराने घर,
0: सर तहजीब तो सर भोपाल की वही रहेगी, क्योंकि जो बुजुर्गों सीखते हैं वो बच्चे करते हैं, अमल में लाते हैं।
1: बिल्कुल, एक पूरा शायरी का मिजाज और वो बात करने का अपना एक तरीका, भोपाल का पान।
0: जी सर, जी सर,
1: वो जलवे कायम है।
0: हाँ सर, जलवे कायम है, वो पान की गुमटियाँ भी कायम है और नमक वाली चाय भी कायम है और वो बिल्कुल रौनक भी कायम है, मगर वो ज्यादातर पुराने भोपाल में पाई जाती है सर। वो
1: बिल्कुल, वो क्या कहते थे, तालों में ताल भोपाल ताल, बाकी सब तलैया।
0: जी जी सर,
1: क्या बात है
0: सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
0: फिल्म का नाम है मेरे हम सफर, और गाने के बोले किसी राह में किसी मोड़ पर यू चलना देना यू छोड़कर।
1: कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मुकेश की आवाज। आपके लिए ये गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, मेरे हम सफर।

0: जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सवान बात कर रहा हूँ।
1: जी जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है सर, आप कैसे हैं सर?
1: बिल्कुल अच्छे हैं, आप सभी से बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, फोन कॉल नहीं लग रहा था, बहुत परेशान हो रहा था सर। अब जैसा शुरुआत हुआ था उसके बाद फोन ही नहीं लगा था मेरा।
1: बताइए, इतने दिनों बाद फोन लगाए, तो बताइए आपके इलाके की क्या हालचाल है भाई?
0: सर इलाके की हालचाल तो बहुत गर्मी है और बहुत धूप है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। अब तक खेत में फसल को पानी भर रहा है, कपास को।
1: जी, कुछ जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, कुछ जगहों पर बारिश ही नहीं हो रही, क्या माजरा है ये?
0: हाँ सर, मैं भी सुन रहा हूँ कि मतलब जगह जगह रेडियो के कार्यक्रम सुनते रहते हैं ना, तो कुछ जगह बताते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, उत्तर प्रदेश में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश क्यों नहीं हो रही सर?
1: हाँ, देखिए ना, मौसम किस तरह से बदल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना।
0: सही बात है सर, परेशान हो रहे हम लोग कि यहाँ पे खेत में सब मोटर से पानी चला रहे हैं और ऊपर से बारिश नहीं हो रही है।
1: जी जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सर विविध भारती के कार्यक्रम मुझे सबसे ज्यादा हेलो फरमाइश और सखी सहेली, हेलो सहेली और जो पत्र आधारित के कार्यक्रम शुरू हुआ ना, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है हेलो फरमाइश।
1: अच्छा, सखी सहेली तो महिलाओं का कार्यक्रम है,
0: तो भी अच्छा लगता है सर सुनने में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो गाने की फरमाइश?
0: गाने की फरमाइश सर, फिल्म का नाम है सरगम और गाने का बोल है पर्वत के उस पार।
1: चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: कैसे होगा वो?
1: सर बस टकरा गई थी उससे, बस और उसका हुआ ट्रक का।
0: तो आप काय में थे, बस में कि ट्रक में?
1: बस में थे सर, डिपो में यहाँ पे हमीरपुर में।
0: ए दद्दा रेसो, सब ठीक ठाक है, सलामती है?
1: सर फट गया था सर, अभी दो तीन महीने से हाथ फ्रैक्चर है, अभी बिस्तर में पड़े हैं सर।
0: ए दद्दा रे, तो बहुत ही बुरा हुआ। आजकल लोग गाड़ियाँ वाड़ियाँ ठीक से नहीं चला रहे मालक?
1: हाँ हाँ सर, ऐसा भी
0: है ना। हम सब लोगों से ये कहेंगे कि सड़क पे निकलें तो थोड़ी अच्छे से गाड़ी चलाए, और का?
1: जी सर, आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी।
0: दूसरी बार? हमें तो याद नहीं है
1: सर, अभी हुई थी ना, जब आप पूछ रहे थे अमियां लग गई आम में कि नहीं लगी।
0: अरे हो अमियां, गर्मी के मौसम में बात हुई?
1: हाँ जी सर, हुई थी।
0: अच्छा जी, बताइए कि छतरपुर के क्या हालचाल? आधा बारिश हो गई?
1: हाँ हाँ सर।
0: अच्छा अच्छा
1: सर, वो खेत हमारे तालाब में है ना, इसलिए डूब जाते हैं, ज्यादा बारिश तो नहीं हुई, मतलब ठीक ठाक हो गई।
0: अच्छा, तो का उगाते हैं अपन इन दिनों में खेत में, का चल रहा हो?
1: सर सोयाबीन, उड़दा और मूंग।
0: अच्छा, उड़दा भी उग जाती है?
1: जी सर।
0: अच्छा, जो हमारे श्रोता बुंदेली नहीं जाना तो उनको बता दें, उड़दा माने उड़द की दाल।
1: जी सर, उड़द।
0: हाँ, नहीं तो उड़दा लोग समझ ही नहीं पाए हैं।
1: जी सर, आप तो बुंदेलखंडी जानते हैं अच्छे से।
0: नहीं, थोड़ी थोड़ी जानते हैं भैया, हम सोई बुंदेलखंडी आए।
1: सर आप बताते रहते हैं ना, भोपाल में सागर में रहे हैं तो आप तो जानते ही होंगे।
0: हाँ, थोड़ी थोड़ी। हाँ, अपन बुंदेलखंडी आए थोड़े थोड़े।
1: जी सर।
0: सो आज कौन से गाने की फरमाइश आ रही है, ये बताओ।
1: सर हम वो वाला सॉन्ग सुनना चाहते हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
0: चलिए पूरी कर रहे आपकी फरमाइश, छतरपुर में आपके लाने सुनवा रहे जे गाना।
2: हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते सर, यूनुस खान जी।
0: नमस्ते भैया,
1: मेरा नाम रामेश्वर रैकवार है, मैं ग्राम भगवता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: अरे क्या बात है, छतरपुर से बोल रहे, क्या हाल चाल भैया?
1: बढ़िया है सर, अभी एक्सीडेंट हो गया था, 2-3 माह पड़े रहे बिस्तर में।
0: क्या हो गया एक्सीडेंट?

हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तुम्हें किधर को जाते ही दंडाना, क्यों पास ना आते ही दंडाना, क्या मारी ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता दंडाना। तुम्हें किधर को जाते ही दंडाना, क्यों पास ना आते ही दंडाना, क्या मारी ये बाता दंडाना, दिल तोड़ ये घाता दंडाना। हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले।

0: चंदन हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: हेलो फरमाइश।
2: नमस्कार सर, ग्राम बिछिया जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ। सर
1: कैलाश जी कैसे हैं?
2: बस सर एकदम मस्त है सर। यूनुस जी आपकी आवाज तो हमारे दिलों में बसी है बिल्कुल, आपकी आवाज सुनते हैं तो समझ जाते हैं यूनुस जी आ गए हमारे।
1: अरे क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत पुराने श्रोता हैं आप विविध भारती के।
2: बिल्कुल सर आपने सही पहचाना, कम से कम 30 साल हो चुके हैं विविध भारती से जुड़े जुड़े।
1: इन 30 सालों में विविध भारती कितनी बदली है कैलाशी?
2: प्रोग्राम तो सर एक सुबह का एक लाजवाब है सर विविध भारती के, और लगातार विविध भारती हम सुनते हैं, एकदम देश की सुरी धड़कन विविध भारती कहते हैं वो बिल्कुल सच है बात।
1: और देखिए 3 अक्टूबर को विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश करेगी, इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं आप?
2: बस सर इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। बस सर बस सभी लोग यूं ही विविध भारती सुनते रहें, मनोरंजन तो है ही और साथ में ज्ञान भी मिलता है सर, इससे विविध भारती से बहुत अच्छा लगता है साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं कैलाश
2: जी? जी सर आज सुनना चाहेंगे फिल्म मन का है नशा, ये प्यार का नशा है, क्योंकि विविध भारती का नशा जो है ना बहुत है हमको, और वर्षों से सुनते चले आ रहा है और अच्छा लगता है ये।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रामपुर ग्राम खेड़े टांडे से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: वसीम भाई कैसे हैं?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, ईश्वर की कृपा है और आपकी दुआएं सर।
0: आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर है ना, इससे बहुत सारी चीजें याद आ गई।
1: जी सर,
0: फिल्मों में पहले दिखाते थे रामपुरी।
1: जी, रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है सर। हाँ। और ये इंडस्ट्रियल एरिया है रामपुर।
0: अच्छा।
1: मतलब सर यहाँ पे धानों की खेती, गन्ना, गेहूँ होता सर।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ही पुराना इलाका है, वहाँ की तहजीब बहुत अलग है।
1: जी सर, सर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: अच्छा।
1: और जब जब समय मिलता है सर आपका प्रोग्राम सुनते हैं। विविध भारती से सर बहुत पुराना नाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आपसे हेलो फरमाइश में बात हो रही है, तो अपनी खुशी सर मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि इतनी खुशी हो रही है सर मुझे।
0: आपकी आवाज में आपकी खुशी छलक रही है।
1: जी सर, और आपकी आवाज सुन लेते हैं तो सर आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम अच्छे से पेश करते हैं सर, बहुत खुशी होती है सर आपकी आवाज सुन के सर, बस कुछ बयां नहीं कर सकते कि इतनी खुशी महसूस हो रही है सर आज।
0: शुक्रिया भाई, बताएं किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: सर मूवी का नाम है अंदाज और उसमें एक सॉन्ग है किसी से तुम प्यार करो फिर इजहार करो, इसके बोले।
0: जी बिल्कुल।
1: और जी सर आपके लिए दो लाइन है।
0: इरशाद।
1: कि काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, काश की मिल जाए मुझे मुकद्दर की स्याही और कलम, लम्हे लम्हे की खुशी लिख दूं सर आपकी जिंदगी के लिए।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। और अब आपको सुनवा रहे हैं अंदाज फिल्म का ये गाना रामपुर में।

0: हेलो फरमाइश।
1: बहुत दिनों से बात करने चाह रहा हूँ तो आपसे आज बात हो रही है सर
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: मैं इस्माइल पात्रूर शरीफ तालुका मजलेगांव जिला बीड से बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ सर, आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल से।
0: और बताएं, विविध भारती के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको?
1: बहुत अच्छे लग रहे सर, सब गाने सुनता हूँ सर मैं आपके कार्यक्रम के।
0: जी जी, बहुत बहुत
1: सर। और शेर कहना चाहता हूँ सर मैं।
0: इरशाद।
1: फूलों में हंसी गुलाब है, फूलों में हंसी गुलाब है, पढ़ाई के लिए जरूरी किताब है। अगर हमसे कोई पूछे विविध भारती के बारे में तो हम कहेंगे वो बहुत बहुत लाजवाब है।
0: वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कातिलों में कातिल सर।
0: अरे बाप रे, कातिलों का कातिल, कौन सा गाना?
1: ये अल्लाह को खबर, ये मौला को खबर, बहुत अच्छा गाना है सर, मोहम्मद रफी की आवाज में सर।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: उत्तर प्रदेश जिला रामपुर ग्राम खेतांडे से मोहम्मद कामिल बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बताइए कैसे हैं आप?
1: सर एकदम अच्छे हैं, आप बताइए सर आप कैसे?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। विविध भारती का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए कौन सा है आपकी नज़र में?
1: सर मेरी नज़र में सबसे अच्छा प्रोग्राम तो देखिए सर फोन इन प्रोग्राम है ये।
0: अच्छा,
1: इसके अलावा जो आप मैसेज के आधार पर जो सॉन्ग सुनवाते हैं वो, और रात में

0: भोले विश्व गीत और ये पिटारा के अंतर्गत जो प्रोग्राम आते हैं सर,
1: हाँ जी,
0: ये सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं सर।
1: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की बात आपने कही, विविध भारती 3 अक्टूबर को अपनी सालगिरह मना रहा है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: सर देखिए, विविध भारती हमारे दिलों पर राज करता चला आ रहा है इस जमाने से
1: जी,
0: और सर यही ऐसी जो प्रोग्राम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहें और हम इससे जुड़े रहें, हम सुनते रहें, आप हमारा मनोरंजन करते रहें सर, इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं।
1: आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
0: फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी और गाने के बोले कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया।
1: वाह भाई वाह,
0: गाने के गाने के बोले सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही गाने के बोल बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी हो रही है आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। कितना

ये था आज का फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग होती है सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा नंबर है 0224002466 यानी 4002462। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से। और अब ये

0: भेजा कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं उनसे ये निवेदन है कि अगले 2 महीने तक हमें फोन न करें ताकि हमारे नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लीकर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM 101.3 MHz पर। शाम के 5 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज की सभा में शेष मुख्य कार्यक्रम, उनका प्रसारण समय।

कुछ ही पलों में। आप सुनेंगे अर्पिता जैन से युवाणी कार्यक्रम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आप सुनेंगे 7 बजे जयपुर केंद्र से।

फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे रात्रि 10:20 पर। समाचार संध्या 8:45 पर। जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स आप सुनेंगे रात्रि 10:00 दिल्ली केंद्र से।

हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 6:30 पर, जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम 7:30 पर।

वातायन का समय रहेगा 7:20 पर। कुछ देर से कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत 8:45 पर।

सुगम संगीत का आनंद 9:10 पर, ठीक 11 बजे भी, 11:30 पर फिल्म संगीत। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुन पाएंगे 9:30 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से 9 बजे। समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से प्रातः 8 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से 7:30 पर प्रातः 10 बजे। दिन के 12 बजे के बाद भी आप विविध भारती सुन सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न किया। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम युववाणी।

स्वयं करने और चलने की हिम्मत रखो, तुम देखना एक दिन पूरा काफिला तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम में युवाणी लेकर हाजिर है आपकी दोस्त अर्पिता जैन, तो स्वीकार कीजिए मेरा स्नेहिल नमस्कार। दोस्तों, सच ही कहा है कि कोई भी कार्य खुद से करने की हिम्मत जरूर रखनी चाहिए। हर कार्य के लिए किसी और पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों कहा तो जाता है कि हर कार्य आसान नहीं होता है, आसान कार्य को बनाना पड़ता है, वो भी अपनी लगन से, मेहनत से, हिम्मत से और साथ ही निरंतर कोशिश करते रहने से। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति में, हर युवाओं में कुछ करने का जज्बा तो है, लेकिन उस जज्बे को हमें आगे निखार कर सामने लाना है। खुद से कुछ करने का जज्बा रखकर कुछ नया शुरू करें और देखें कि कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों आज हर इंसान कुछ बनना चाहता है, अपने करियर में कुछ आगे बढ़कर कुछ नई हासिल उपलब्धि हासिल करना चाहता है, अपने दम पर कार्य करना चाहता है। अगर मन में आत्मविश्वास है तो हर कार्य को आसान बनाया जा सकता है। और युवा वर्ग तो आज की वह पीढ़ी है जो हर कार्य को आसान बना सकती है। जरूरत है आत्मविश्वास की, कोशिश की, मेहनत की और साथ में उनके लिए नई उम्मीदों की। दोस्तों कहा गया है, हालात अगर मुश्किल है तो अपने इरादों को मजबूत बनाओ, न उलझो किसी की बातों में, अपने सपनों को सच कर दिखाओ, डरो

से कभी हर मुमकिन कोशिश आजमाओ, जीत तुम्हारे करीब होगी, आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाते जाओ। तो दोस्तों, इसी तरह कदम बढ़ाते जाना है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है और हर मैदान को फतह करना है, कुछ इस तरह।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों जैसे जैसे दुनिया में लोगों के जीवन प्रत्याश बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, वैसे ही स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और आवास जैसी प्रणालियों में भी सुधार करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए प्रतिवर्ष आज के दिन प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन, जिसे वरिष्ठ नागरिक दिवस भी कहा जाता है, ये आज के दिन मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के योगदान को सम्मान करना है, उनके कार्यों का सम्मान करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना और वृद्धावस्था में उनके सामने आने वाली चुनौतियों व स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता को बढ़ाना इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को एक प्रस्ताव पारित कर हर वर्ष आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जिसे पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया था। दोस्तों इस दिन को मनाने का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक जो घर में बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में समाज, परिवार और देश के नवनिर्माण में जो योगदान दिया है उसे स्वीकारना है, उनके अनुभवों का लाभ उठाना है, साथ ही उम्र के आधार पर होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव और दुर्व्यवहार को खत्म करना इसका मुख्य लक्ष्य है। दोस्तों बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और संस्कृति के सच्चे ध्वजवाहक हैं। उनके पास जीवन के व्यापक अनुभव और ज्ञान होता है, जिससे नई पीढ़ियों को सही ज्ञान और मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन आधुनिक समय में एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण कई बुजुर्ग अकेलेपन, उपेक्षा और आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह दिन समाज में वरिष्ठ नागरिकों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों आज का दिन सभी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पाने, सम्मान दिलाने का अवसर है, साथ ही हमारा और हमारे समाज के तौर पर यह कर्तव्य है कि हम अपने घर के बुजुर्ग और साथ ही घर के आसपास रहने वाले सभी बुजुर्गों को सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन सम्मान, सुरक्षा और सबसे बढ़कर उन्हें कीमती समय दें। दोस्तों हमारे बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज की वह अमूल्य धरोहर हैं जिनके अनुभव और संस्कारों से हमारी पीढ़ियां, हमारे युवा समृद्ध होते हैं। इसीलिए दोस्तों आज इस अवसर पर हम सभी युवा वर्ग, हम सभी श्रोता संकल्प लें कि हम अपने वरिष्ठ जनों का सम्मान करेंगे और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके सम्मान का हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वृद्ध ही हमारी देखभाल और हमारे देखभाल करने वाले और साथ ही हमारे भगवान हैं। इसलिए दोस्तों वृद्ध जनों की देखभाल और उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान जरूर करें और आज के इस दिवस को सफल बनाएं। सुनते हैं दोस्तों प्यारा सा गीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आज के दिन 1 अक्टूबर 1926 को भारतीय सैनिकों के लिए एक स्थायी नर्सिंग सेवा का गठन किया गया था और इसे इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, आज ही के दिन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1926 में हुई थी। लेकिन दोस्तों, इसका इतिहास और भी पुराना है। 28 मार्च 1888 को तत्कालीन मुंबई में 10 प्रशिक्षित ब्रिटिश नर्सों के आगमन के साथ भारत के सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग की शुरुआत हुई थी। और यह दोस्तों सशस्त्र बल एक ऐसी कोर है जिसमें केवल महिला अधिकारी ही शामिल होती है, जो युद्ध, राष्ट्रीय आपातकाल और आपदाओं के दौरान सैनिकों और उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों, इस वर्ष 2026 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अपना 101वां स्थापना दिवस मना रही है। जी हाँ दोस्तों, इस दिवस की शुरुआत को आज 101 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं। इस सर्विस का एक आदर्श वाक्य है, सर्विस विथ अ स्माइल। जी हाँ दोस्तों, मुस्कान के साथ सेवा। और दोस्तों, हर कार्य में मुस्कान के साथ सेवा बहुत जरूरी है। युद्ध की परिस्थितियां हो, शांति का समय हो या प्राकृतिक आपदा, ये नर्सिंग अधिकारी अग्रिम मोर्चों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात रहकर हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवार की चिकित्सा और देखभाल करती है। इसलिए दोस्तों, आज मिलिट्री नर्सिंग सेवा स्थापना दिवस है और उन सभी नर्सिंग सेवाओं देने वाले अधिकारियों के आज सम्मान और उनकी याद दिलाने का, उनके कार्यों को सम्मान करने का आज दिन है। और साथ ही दोस्तों, आज है डॉक्टर एनी बेसेंट की जन्म जयंती। जी हाँ दोस्तों, ये भी 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। इनका जन्म तो 1847 को लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। ये एक ब्रिटिश नागरिक थी, लेकिन उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और समाज सुधार में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसके कारण उन्हें माँ बसंत भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उनकी त्याग, समर्पण और उनके बलिदान को प्रत्येक वर्ष उनके 1 अक्टूबर जन्म दिवस पर याद किया जाता है और उन्हें माँ बसंत के नाम से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है विजू शाह का और फिल्म का नाम है गुप्त।

तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार।

0: मजनू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना,
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच।
2: अगर तुम मिल जाओ,
0: मजनू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियाँ। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
3: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है प्रिंस।

ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जा।

0: जाए।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ।

बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

समीर का लिखा गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है बेटा।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: करीना जी का ये सबके मन बहलावा रे भैया।
4: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार है हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है अंदाज़।

0: आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
1: अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू।

परवाह ना कहे, कोई परवाह ना कहे जलने को बेपरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू।

0: बच्चों को मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को ना जानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू हो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र यूडीआईडी कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422

पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरू ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। साथियों एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना।

0: जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में
1: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी।

गया आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर सबको मार।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में, गीत रचना समीर की, संगीत रचना आनंद मिलिंद के, फिल्म का नाम है सुहाग।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार में होना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें गाने और

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

0: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।
1: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

हरगिज नहीं की था हमको अनहोनी बात होगी। तुम जान हो तो तालम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुम उसे अच्छा

बहती गंगा तकदीर भी बन जाए। पैसे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा।

वो आधर पे होगी, जो आध है अपने दिल में वो आध उधर भी होगी, जो आध है अपने दिल में वो आध उधर भी होगी। कभी हम

नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी गल जाएगा, देखो

0: पत्थर भी पिघल जाएगा देखो तुमसे अच्छा कौन है देखो तुमसे अच्छा।
1: साथियों कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है।
2: तराने नए पुराने।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया, कहा परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्थाओं की शुचिता आवश्यक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गरीब कल्याण योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने की अपील की। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि कुछ की देरी भी युवाओं के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है, इसीलिए परीक्षा प्रणाली को समय की निश्चितता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हो। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी और सक्रिय सुशासन।
1: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार विदेशी बाजारों में एक्सपोर्ट सुविधा केंद्रों का विस्तार करके देश के कपड़ा निर्यात को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। श्री सिंह नई दिल्ली में टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार भारतीय कपड़ा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। नए एक्सपोर्टर्स को जानकारी देने और प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट सुविधा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
2: हम 40 देशों को चिन्हित किया है और 18 ऐसे देश हैं जिनका जीडीपी अच्छा है और 6 जगह हम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर खोला है जहां नए लोगों को हम एजुकेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं।
0: लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में देश भर से कपड़ा सेक्टर से जुड़े 400 से ज्यादा सूक्ष्म और लघु उद्योग शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शेखावा

0: पार्टी के दौरे पर रहे। उन्होंने चमड़िया कॉलेज खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को 1277 करोड़ रुपए से अधिक के 83 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने वाले काम शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 34,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यमुना जल परियोजना के तहत 3 पाइपलाइनों से हथिनी कुंड बैराज से सीकर, चूरू और झुंझुनू तथा आसपास के क्षेत्रों तक पीने का पानी लाया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने गरीब कल्याण योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने की अपील की।
1: क्या जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है वे सेकावाटी क्षेत्र की प्रगति को नई गति देंगे। हमारा विकसित सेकावाटी, विकसित राजस्थान, विकसित भारत के निर्माण में आप सभी का योगदान हो। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप गरीब कल्याण की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आप सभी से कहना है। आपका विकास आपके द्वारा हो ये सुनिश्चित करना है।
0: सपनों की उड़ान सशक्त युवा संवाद कार्यक्रम कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शर्मा युवाओं से संवाद करेंगे। इस दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। भवानी निकेतन महाविद्यालय में होने वाले इस कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा मानव श्रृंखला भी बनाई जाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधिकारी ग्रामीणों को नए कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, पारदर्शी प्रक्रियाओं और सुरक्षा से जुड़े बदलावों के बारे में बतलाएंगे। इससे पुलिस और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री देवनानी ने कहा कि गांधी जी की शांति, सद्भाव, स्वच्छता और सामाजिक समरसता के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी है। वहीं शास्त्री जी के जीवन की सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता राष्ट्रीय सेवा का आदर्श प्रस्तुत करती है। देशभर के पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में हर साल 5,00,000 रुपए तक का कैशलेस और मुफ्त इलाज मुहैया कराती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ABPMJAY को लागू हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: योजना के तहत देश में 48 करोड़ से ज्यादा कार्ड बनाए गए हैं। ये कार्ड स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देते हैं और देश के करीब 33% आबादी को कवर करते हैं। इसके तहत अब तक 2,00,000 करोड़ रुपए मूल्य से ज्यादा के 13.25 करोड़ से ज्यादा इलाज किए गए हैं। इससे लोगों के स्वयं की जेब से होने वाला चिकित्सा खर्च काफी कम हुआ है। ये 27 स्पेशलिटी के साथ करीब 2,000 प्रक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में से एक है। इसके तहत 38,000 से ज्यादा सार्वजनिक और निजी अस्पतालों का नेटवर्क है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये पहल प्राथमिक देखभाल और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर अस्पताल आधारित इलाज और स्वास्थ्य सेवा की निरंतरता को मजबूत कर रही है। समाचार कक्ष से सलीहा गाजी।
0: अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम हुए। जिला अस्पतालों सहित विभिन्न स्थानों पर बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए गए। पाली में वरिष्ठ जन के लिए जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई। उधर चूरू और भरतपुर में समाज कल्याण सप्ताह के तहत आज वृद्धजनों का सम्मान किया गया। सलुम्बर, बालोतरा और अजमेर सहित विभिन्न स्थानों पर वरिष्ठ और शतायु मतदाताओं का अभिनंदन किया गया।

हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में दिव्यांग वरिष्ठजन को ट्राई साइकिल दी गई, साथ ही रोडवेज यात्रा के रियायती स्मार्ट कार्ड वितरित किए गए। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के शल्य चिकित्सकों ने एक दुर्लभ और बहुत जटिल सर्जरी को सफलता से पूरा करते हुए एक महिला के शरीर से करीब 29 किलोग्राम वजन का ट्यूमर बाहर निकाला। रेट्रोपोलिटोनियल सार्कोमा नाम की ये सर्जरी डॉ. जीवन काकरिया के निर्देशन में की गई। दुनिया भर में अब तक ऐसे चुनौतीपूर्ण केवल 20 मामले ही रिपोर्ट हुए हैं। प्रदेश में सुरक्षित, पौष्टिक और स्वस्थ खानपान की जागरूकता के लिए 3 अक्टूबर से अभियान चलाया जाएगा। सही खानपान, स्वस्थ राजस्थान थीम पर यह अभियान 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थानों पर ईट राइट गतिविधियां होंगी, जिसमें संतुलित भोजन, पौष्टिक नाश्ता, श्री अन्न के उपयोग सहित अन्य जानकारी दी जाएगी। साथ ही मौके पर लोगों द्वारा लाए गए खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच भी की जाएगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, हॉस्टल संचालकों और कैटरिंग प्रतिष्ठानों को भोजन की बर्बादी रोकने का संदेश दिया जाएगा। बनास नदी के गहलोद में राजस्थान का सबसे बड़ा हाई लेवल ब्रिज बनाया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से करीब 135 करोड़ रुपए की लागत से बना ये पुल जन सुविधाओं के लिहाज से परिवर्तनकारी साबित होगा। इससे पीपलू, मालपुरा, टोडा रायसिंह, फागी और अजमेर क्षेत्र में सुरक्षित और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। गौरतलब है कि बारिश के मौसम में पुराने रास्ते में पानी भर जाता था और टोंक जाने के लिए करीब 30 से 40 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती थी। ये पुल लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा है और 243 टन भार क्षमता वाला है। इस पुल की लोड टेस्टिंग 5 चरणों में सफलतापूर्वक पूरी की जा चुकी है। बांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक वन रक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये वन रक्षक गढ़ी रेंज के तलवाड़ा वन नाके पर तैनात था। उसने विभाग में परिवादी की पत्रावली को आगे बढ़ाने की एवज में ये राशि मांगी थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया, कहा परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्थाओं की शुचिता आवश्यक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गरीब कल्याण योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने की अपील की। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में कल विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। जिले में इस बार मॉनसून कम मेहरबान रहा। सितंबर तक जिले में औसतन सिर्फ 49 मिलीमीटर बारिश हुई है। जिले के 25 प्रमुख बांधों में से एक भी बांध अब तक ओवरफ्लो नहीं हुआ है। कम बारिश से किसान मायूस हैं और पेयजल संकट गहराने की भी संभावना है। जिले में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। जिले की पांचों निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 3 निकाय में भाजपा का दबदबा रहा जबकि 2 निकाय में कांग्रेस का बोर्ड बना। राजसमंद नगर परिषद सहित नाथद्वारा, भीम, देवगढ़, आमेट नगर पालिका में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान निकाय क्षेत्रों में चुनाव चर्चाओं को लेकर सरगर्मियां तेज रहीं। राजसमंद नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए कुल 118 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे। भाजपा और कांग्रेस के बीच 24 वार्डों में सीधा मुकाबला रहा, वहीं 13 वार्डों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। राजसमंद नगर परिषद की मतगणना में 45 में से 27 वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी को जीत मिली, जबकि 14 वार्डों में कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और 4 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी। जिले में पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद सदस्यों सहित वार्डों के लिए लॉटरी की प्रक्रिया पूरी की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

के पदों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया गया, जबकि ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण लॉटरी के आधार पर किया गया। जिला परिषद के 29 सदस्य पदों में एससी के 4, एसटी के 5, ओबीसी के 5 और सामान्य वर्ग के 15 वार्ड रखे गए हैं। इनमें महिलाओं के लिए एससी के 2, एसटी के 2, ओबीसी के 2 और सामान्य वर्ग के 8 वार्ड

0: और 2,458 वार्डों के लिए संबंधित उपखंड स्तर पर लॉटरी निकाली गई। राजसमंद शहर की सभी आंगनबाड़ियों में सेवा पखवाड़े के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संदेश का वाचन किया गया, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उपमा, तुलसी का पौधा और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर सभी केंद्रों पर उत्साह का माहौल रहा। रंगोली और सजावट के साथ महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राजसमंद पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने राजसमंद शहर में संडे ऑन साइकिल अभियान में भाग लिया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर नौचौकी से शहीद स्मारक तक साइकिलिंग की गई। कार्यक्रम के माध्यम से नियमित व्यायाम, दौड़ और साइकिलिंग को दिनचर्या में शामिल करने का संदेश दिया गया। साथ ही फिट इंडिया और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर श्रीनाथ जी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, चारभुजानाथ मंदिरों में बड़े स्तर पर धार्मिक आयोजन किए गए। श्रीनाथ जी मंदिर में जन्माष्टमी की शुरुआत मंगला दर्शन के समय पंचामृत स्नान से हुई, जहां बड़ी संख्या में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित देश भर से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। वहीं शाम को शोभा यात्रा और रात के समय कान्हा के जन्म पर 350 सालों से चली आ रही 21 तोपों की सलामी की परंपरा को पूरा किया गया और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। अगले दिन मंदिर में दूध दही का छिड़काव कर नंदोत्सव मनाया गया। गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजसमंद शहर का प्रमुख मंशापूर्ण महागणपति मंदिर में 5 दिनों तक विशेष आयोजन किए गए। वहीं गणपति की 9.25 फीट ऊंची प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके अलावा शहर में नगर परिषद द्वारा अरविंद स्टेडियम में 5 दिवसीय गणेश उत्सव मनाया गया, जहां गणेश प्रतिमा विराजित कर रोजाना सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन किया गया। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीएससी शताब्दी समारोह ने संबोधित किनो, परीक्षा कराने वाली संस्थाओं ने साफ कोई जरूरी बताई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गरीबारा भलारी योजना वारो फायदो पात्र लोगों ताई पुगावन री अरज कीनी। कजरी न्यारी न्यारी ग्राम पंचायत माए काल खास ग्राम सभा वा राखी जावेला। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस रे मौके राज्य माए भांत भांतरा कार्यक्रम राखी जिया। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि देश में परीक्षावां करावन वाली संस्थावां ने देश री जरूरत रे मुजब सुधारा माथे काम करनो चाहिए। वे आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग रा शताब्दी समारोह में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि परीक्षा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि नौजवानों रा भविष्य जुड़ी हुई है। वे कहो कि कुछ महीना रो मोड़ो नौजवाना सारू मुश्किलों पैदा कर सके है। इन कारण परीक्षा प्रणाली ने टीम री निश्चितता रा सिद्धांत री पालना करनी चाहिए। श्री मोदी सरकारी ओहदारी बजाय जन सेवा सारू नौकरी री सोच वाला नौजवाना ने सरकारी नौकरी माए लावण री जरूरत न थे जोर तीनों कहो कि दैशी सक्रिय और सुशासन री नवी संस्कृति सागे आगे बढ़ रही है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह कहो है कि सरकार एमएसएमई इकाइयां न बधा

0: सेवा की निरंतरता को मजबूत कर रही है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
1: अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के मौके आज प्रदेश में भांत भांतरा कार्यक्रम रखी चिया। इस मौके जिला अस्पताल समेत न्यारी न्यारी ठोणा बुजुर्गों सारू स्वास्थ्य जांच शिविर लगाई चिया। पाली में बुजुर्गों सारू जागरूकता शिविर लगार साइबर अपराधों बचाव री जानकारी दी रही ची। भरतपुर में समाज कल्याण सप्ताह तहत आज बड़ा बूढ़ा रोमान करी चियो। सलुम्बर बालोतरा और अजमेर समेत न्यारी न्यारी ठोणा वोट देवन रा पात्र बुजुर्गों और 100 साल री उम्र वाला रोमान करी चियो। हनुमानगढ़ जिला रा टिब्बी में दिव्यांग वरिष्ठ जन ने तीन पहिया ने साइकिल तीरी ची। इस आगे रोडवेज माए सफर सारू भाड़ा माए रियायत रा स्मार्ट कार्ड बांटी चिया। जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल रा डॉक्टर घणो मुश्किल ऑपरेशन कर एक महिला रा शरीर करीब 29 किलोग्राम वजन री गांठ निकाली। रेट्रो पोरिट्रोनियल सार्कोमा नाम रो ओ ऑपरेशन डॉक्टर जीवन कांकरिया री अगुवाई माई करी चियो। दुनिया में हाल तई एड़ा महज 20 मामला सामने आया है। प्रदेश में सुरक्षित पौष्टिक और स्वस्थ खान पान सारू जाग जगावन रा मकसद 3 अक्टूबर और 16 अक्टूबर तई खास अभियान चलायो जावेला। सही खान पान स्वस्थ राजस्थान मुद्दा वाला ई अभियान रा तहत स्कूल कॉलेज अस्पताल और जनतारी आवन जावन रे ठोणा ईट राइट उनजुड़िया कार्यक्रम रख्या जावेला। आ कार्यक्रम में संतुलित भोजन पौष्टिक नाश्ता और श्री अन्न काम लेवन समेत न्यारी न्यारी जानकारियां दी जावेला। ये मौके जनता कानियों लाई जावन वाली खान पीन री चीजा नमूना री जांच करी जावेला। टोंक जिला रा गहलोद माए प्रदेश रो सबो मोटो हाई लेवल पुल बनाई चियो है। सार्वजनिक निर्माण विभाग कानियों करीब 135 करोड़ रुपया रा खर्च बनाई चिया। ई पुल पीपलू मालपुरा टोडराई सिंह फागी और अजमेर हलका माए आवन जावन आसान भ सकेला। ओ पुल करीब 3.25 किलोमीटर लंबो है जो 243 टन बोझ सह सके है। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग री ओर चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना रा तहत पोर्टल अपडेट करन री आखिरी तारीख 30 सितंबर उम्रधार 31 अक्टूबर करती रीची है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग रा निदेशक ललित कुमार बतायो कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 सारू शिक्षण संस्थाओं रा छात्रवृत्ति पोर्टल माथे पंजीयन और दूजी जानकारी अपडेट करन सारू अब 1 महीना रो और बगत मिलेला। मांसवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो री टीम एक वन रक्षक ने 5,000 रुपये की घूस लेता थका रंगे हाथा पकड़ लीनो। आरोपित वन रक्षक गढ़ी रेंज रा तलवाड़ा वन नाका माथे तैनात हो। वा माथे महकमा में एक जनारी फाइल आगे बढ़ावन री एवज में आ रकम मांगन रो आरोप है। अरब एशियाई खेलों खबर। जापान में चल रहा एशियाई खेला में भारत नौकायन रो पहलो तमगो जीत लीनो है। पुरुषों री स्किफ होड़ में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरुसिंकल नोबल चांदी रो तमगो जीतियो। 9 दौड़ में फ्रांसिस और नोबल 23 अंक हासिल कीना और 1 रेस जीतर देश ने चांदी रो तमगो जीता दीनो। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु आज पुरुषों रा व्यक्तिगत वर्ग में वियतनाम रा कोंग डुक डांग ने 149-144 हरार कांसा रो को जीतियो। स्क्वैश होड़ रा सेमीफाइनल में हांगकांग रे खिलाफ 1-2 मिली हार पाछे भारत ने कांसा रो को मिलियो। सेपक टकरा रा पुरुषों रा क्वाड्रेंट इवेंट में वियतनाम ने 2-0 हरार भारत सेमीफाइनल में पूग गयो है। इस आगे मारो एक और तमगो पक्को भे गयो है। भारत हाल तई सोनारा 10 चांदीरा 22 और कांसारा 32 तमगा समेत कुल 64 तमगा सागे पदक तालिका माए 8वीं ठौड़ माथे है। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीएससी शताब्दी समारोह ने संबोधित कीनो कहो परीक्षा करावन वाली संस्था वारी साफ कोई जरूरी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गरीबाना भलारी योजना मारो फायदो पात्र लोगां ताई पूगा वनरी अरज कीनी। राज्य री न्यारी न्यारी ग्राम पंचायत माई काल खास ग्राम सभा राखी जावेला।

0: अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस रे मौके प्रदेश में भांत-भांतरा कार्यक्रम राखी जिया इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। शुरू शाम के 7 बजे ही लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
5: किसान वाणी कार्यक्रम में आप सबको घणो घणो स्वागत। स्वीकार करो अदिति भट्टरो ने भरो नमस्कार और राम राम सा। सागे ही दौलत भाई, आपने भी घणो घणो राम राम।
6: बिल्कुल अदिति जी, आपने और किसान वाणी सुन लिया सगला किसान भाया ने दौलत पारी करी, घणी घणी राम राम।
5: रामा श्यामा के सागे सागे बात करा, आज एक अनोखो दिवस छे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस।
6: बिल्कुल, आपा का बुजुर्ग जो आपा का घर परिवार में है, आसपास पड़ोस में है, वहाँ की देखभाल करबा को एक दिन, यानी कि और दिन आपा ने याद दिलावे है, एक दिन नहीं बल्कि हमेशा के लिए बुजुर्ग जो है वहाँ की देखभाल करनी और वहाँ को अनुभव जो है वो आपा ने लेबा की जरूरत है, क्योंकि वे दुनिया में बहुत कुछ देख चुका है और आपा ने वहाँ की सीख ले आगे बढ़ना है
5: जी। और अपना घर की नींव है, अपना बड़ा बुजुर्ग, वहाँ की छत्र छाया का मायने जी हाँ, एक बड़ा बरगद का पेड़ में नीचे छोटा छोटा पौधा पनपे छे, विकास करे छे और आगे चालर बड़ा पेड़ बने छे, वृक्ष बने छे। ठीक वैया ही आपा, वहाँ के सामने बौना छा छोटा पेड़ छा, लेकिन वहाँ की जो अनुभव छे वहाँ सुलेर आपा आगे चालर अपनी जिंदगानी में खूब तरक्की कर सका छा, लेकिन वहाँ की छत्र छाया में रह रही।
6: बिल्कुल, आज को दिन आपा ने याद दिलाया के जठे भी बुजुर्ग है, वृद्ध जन है, वे ई टाइम के मायने एकाकीपन महसूस ना करे। कई बार आपा देखा कि बुजुर्ग है वो परिवार वाला है, वहां ध्यान कौन देवे, भी वजह सुबह अकेलापन महसूस करे। यो दिन आपा ने याद दिलावे कि माने अकेला ना छोड़ा, वहां की सार संभाल करा, वहां की देखभाल करा, और वृद्ध जन आपा सु काई चावे, सिर्फ इतो ही चावे कि आपा वहां सु बातचीत करा, वहां के पास बैठा और वहां की बात सुना, क्योंकि बाने भी पतो है जो समय है वो बदल चुके है, वहां के जमाना के मायने, वहां के टाइम के मायने जो चीजें ही वे बिल्कुल बदल चुकी है। आज का नया लोग, आज का युवा, आज का जितना भी लोग है वो अलग तरीका से काम करे
5: जी।
6: लेकिन बुजुर्ग सिर्फ आपके पास बैठ करके वहां की बात सुन ले, उस खुश हो जावे
5: जी सर।
6: तो कोशिश करा आज के दिन वृद्ध जन दिवस के तौर पर के जितना भी आपांगे आस पास बुजुर्ग है, आपांगे परिवार में है, घर परिवार में है, गली मोहल्ला में है
5: जी,
6: कोशिश करा कि आता जाता वहां से बात कर लिया, वहां के पास बैठा, वहां को अनुभव है, बिन समझा और कोई सीख देवे तो बिन माना और आगे।

0: जी। और करसा भाईर भेणा, ये तो आप बिल्कुल मासू 100% आप सहमत होला कि आपना जो नवाचार छे वह सब चीजा वह सब तकनीका आप अपना रहा छे, लेकिन थोड़ी सी जो वहां का अनुभव छे वो अपना खेती किसानी में घना काम आवे, तो ये भी आपने अनुभव वहां से लेता रहना है। वहां को आशीर्वाद हमेशा आप के ऊपर बढ़ो रहे लो, पर आप वहां के साथ रहवा वहां से मिलर चाला।
1: खेती बाड़ी के अलावा जीवन का अनुभव भी वे जो देवे
0: जी
1: वाकई में, क्योंकि वे जीवन का वे पल वे समय वो टाइम देख चुका है कि आप सोच ही कौन सका, वे बात कई बार आपने कहवे और आप वो की चीजा है सही हो जावे। तो बुजुर्गों को वृद्ध जना को आशीर्वाद ही एक काफी है आपा के लिए, और वहां को आशीर्वाद अगर आपा के साथ रहे तो आप आगे बढ़ सका। और अवार की बात करा तो श्राद्ध पक्ष चाल गया है, तो बुजुर्ग ने आपा याद तो करा
0: जी,
1: लेकिन जीता जी जो बुजुर्ग आपा के आसपास है, आपा के परिवार में है, गवाड़ी में है, गली में है, तो माने आता जाता अनदेखा नहीं करा।
0: बिल्कुल,
1: कोशिश आ करा कि जितो भी समय मिले वहां सो नजर मिलावा, वहां के पास बैठा और वहां की बात सुना। बुजुर्ग सिर्फ इतना सो ही चाहे कि मारी बात सुने। कई परिवार में आप देखा कि दादाजी दादी जी समय के अभाव के मायने बेटा पोता वासु दूर होता जावे, कई आप देखा खबरा के मायने कि बेटा पोता विदेशा के मायने है और बुजुर्ग अकेला अटे बैठा है। कोशिश आ करो कि कम सु कम आपा के परिवार के मायने जो भी बुजुर्ग है वहां आप समय देवा, बाकी पास बैठ बो 5 मिनट बैठ बो, बाकी जो है वे खुश हो जावे।
0: बिल्कुल,
1: और संभव हो और आपा के आसपास ऐसा कोई बुजुर्ग है कि जिका परिवार वाला ना हो या वे अकेला महसूस करे, माने आपा सारो देवा की कोशिश करा। वे सिर्फ इतो सो चाहे कि मां के पास बैठ जाओ, मां की दो बात सुन ले।
0: और साहब दो बात आपा भी आगे चलावा काम करा, जानकारी रो बखत भी हो आयो तो ले लेवा चंद्रमान सिंह जी से जानकारी।
1: बिल्कुल,
0: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम चल रहा है किसान वाणी और आज हमारे बीच में जानकारी के लिए आए हैं चंद्रभान सिंह गिल जी। आप सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड से हमारे बीच में पधारे हैं। चंद्रभान जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार।
2: राम राम।
0: आज हम जानकारी लेंगे बीज, बीज के वर्ग, बीज प्रमाणीकरण और बीज विधायन के बारे में। चंद्रभान जी सबसे पहला प्रश्न मेरे मन में भी उठा है और शायद मेरे किसान भाई बहनों के मन में भी आया ही है कि बीज है क्या और इसका क्या महत्व है।
2: किसान भाइयों बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी बुआई का समय भी सामने है, अक्टूबर नवंबर में फसलों की बुआई की जानी है और बीज के महत्व के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। बीज का मतलब ये होता है जैसे कोई फूड क्रॉप हो, एडिबल ऑयल क्रॉप हो, आपने फल हो, सब्जियां हो, कॉटन सीड हो, जूट सीड हो, सीडलिंग हो, या राइजोम हो, ट्यूबर हो, बल्ब हो, या जो वेजिटेटिव प्रोपगेटिंग मटेरियल है, इन सब क्लासेस का जो बीज है वो बुआई के लिए और प्लांटिंग के लिए काम में आए, तो ये बीज की परिभाषा में है।
0: अगर हम इनके वर्गों की बात करें तो कौन कौन से वर्गों में हम इनको बांटेंगे?
2: बीज में सबसे जरूरी चीज है उसका एम्ब्रियो स्वस्थ होना
0: जी,
2: और यदि बीज का एम्ब्रियो स्वस्थ है और हम देखते हैं कि बीज बोने के बाद में जब वो जर्मिनेट होता है, उगता है, तो उसको खुराक की जरूरत होती है
0: जी,
2: तो वो बीज के अंदर संग्रहित होता है, तो या तो बीज से लेता है या फिर जब वो सीडलिंग ग्रो करता है तो जो देखा होगा कुछ फसलों के अंदर दो मोटी मोटी पत्तियां निकलती हैं जिसको कॉटिलेडन बोलते हैं, उससे वो खुराक लेता है
0: जी।
2: तो अब हम बात करें बीज के वर्ग की, तो बीज के वर्ग में मुख्य रूप से एक तो ब्रीडर बीज होता है, एक होता है सर्टिफाइड बीज। सर्टिफाइड बीज के अंदर जो फाउंडेशन बीज भी होता है और सर्टिफाइड कैटेगरी भी होती है, तो ये मुख्य रूप से बीज जो है प्रमाणित बीज ये होता है। इसके अलावा दूसरे जैसे आपने मार्केट में देखा होगा किसान भाइयों कि टीएल बीज के नाम से भी बीज बिकता है, जिसको टीएफएल यानी ट्रूथफुल लेबल बीज भी होता है, और आजकल तो बहुत सारे रिसर्च के नाम से भी बीज जो है दुकानों पर मिल जाते हैं, रिसर्च हाइब्रिड, रिसर्च बीज, इस तरह के। लेकिन हमें किसान भाइयों के इस बात का ध्यान रखना है कि बीज प्रमाणित होना चाहिए, और वो जो प्रमाणित बीज ले, फाउंडेशन बीज ले, चाहे वो सर्टिफाइड बीज ले,

0: वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो जो वर्ग की बात हम कर रहे हैं, ब्रीडर बीज के बारे में मैं आपको बताता हूं। ब्रीडर बीज जो होता है वो न्यूक्लियस बीज से बनता है, और ये जो है प्लांट ब्रीडर यानी जो साइंटिस्ट होता है वो अपनी देखरेख में, अपने कंट्रोल में, अपने सुपरविजन में, ये रिसर्च स्टेशन के ऊपर, वहां फार्म के ऊपर इस बीज को न्यूक्लियस से, ब्रीडर बीज की एक प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया के तहत उसकी, उनके कंट्रोल में ये बीज मल्टीप्लाई रेप्लीकेट होता है, यानी न्यूक्लियस से ब्रीडर बीज बनाता है। तो ये तो हुई कैटेगरी सबसे पहली जो ब्रीडर बीज की है। अब ब्रीडर बीज होता क्या है, साइंटिस्ट तो बनाता है लेकिन उसकी मुख्य रूप से क्या विशेषता है
1: जी?
0: तो किसान भाइयों, ब्रीडर बीज जो है उसके अंदर सबसे पहली गुण, पहला गुण तो ये होना चाहिए कि उसमें जो आनुवंशिक शुद्धता है, जो जेनेटिक प्योरिटी है, वो 100% होनी चाहिए। यानी वो जो बीज है, जो पौधा है, वो ट्रू टू टाइप होना चाहिए। जो वैज्ञानिक ने जो बीज विकसित किया है उसमें उसी तरह के पौधे और उसमें जो गुण है वो होने चाहिए। तो ब्रीडर बीज की सबसे बड़ी खासियत ये जो है उसकी आनुवंशिक शुद्धता की है। और जब हम बात करें अगले वर्ग की, तो ब्रीडर बीज से फाउंडेशन बीज बनता है
1: जी।
0: और फाउंडेशन बीज जो बनता है वो या तो जो बहुत प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं, या जैसे बीज निगम के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, या इस तरह से उनको ये बीज, ब्रीडर बीज दिया जाता है, और बहुत ही कड़ी देखरेख के अंदर उस बीज को ब्रीडर से फाउंडेशन में मल्टीप्लाई किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। और अपन बीच में ये बात कर लें कि जो ब्रीडर बीज है उसको हम पहचाने कैसे
1: जी?
0: तो ब्रीडर बीज को, किसान भाइयों, सबसे बड़ी पहचान ये है कि ब्रीडर बीज के जो टैग लगा होता है, जो लेबल लगाता होता है, जो प्लांट ब्रीडर लगाता है उस पर, वो गोल्डन येलो कलर का होता है। तो ये एक उसकी पहचान है। और बीज, चाहे वो ब्रीडर बीज हो चाहे सर्टिफाइड बीज हो, सभी बीज ये पहले देख लेना चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से पैकिंग है कि नहीं है
1: जी।
0: और बीज की पूरी जानकारी, जैसे उसका काइंड यानी वो फसल कौन सी, उसकी वैरायटी कौन सी है, उसका वर्ग ब्रीडर है कि नहीं है, फिर नीचे जो है उसमें बहुत सारी दूसरी टेस्ट, जैसे जर्मिनेशन, भौतिक शुद्धता, उसका लॉट नंबर, ये सब चीजें, और प्लांट ब्रीडिंग के उस पर हस्ताक्षर, ब्रीडर के जो है हस्ताक्षर, तो ये सब चीजें अपने को देखने की होती है। उसका रंग जो है वो हमें गोल्डन येलो कलर का भी देखना होता है, तो वो ब्रीडर बीज की पहचान है। इसी तरह से किसान भाइयों, जैसे ब्रीडर बीज से अपन फाउंडेशन बीज जो बना रहा है किसान, बहुत बड़े जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वहां इसका जो उत्पादन हो रहा है, तो उसमें अपने को ये देखना है कि ब्रीडर से फाउंडेशन जो बीज बनता है, और फाउंडेशन जब पैक होता है थैलियों में, तो उस थैली का जो टैग लगता है थैली के ऊपर, वो सफेद रंग का टैग लगता है उस पर, तो ये हमें देखना है। दूसरा जो साइज है, ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए कि ब्रीडर बीज के ऊपर तो किस साइज का टैग होता है, और फाउंडेशन बीज के ऊपर किस तरह का होता है, किस साइज का होता है, और सर्टिफाइड बीज पर टैग कितनी साइज का होता है। तो आपने देखा होगा 12 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर साइज का ब्रीडर सीड का टैग होता है
1: जी।
0: और 15 गुना 7.5 सेंटीमीटर साइज का फाउंडेशन और सर्टिफाइड बीज का टैग का साइज होता है। तो ये भी हमें देखने की जरूरत है। और जो फाउंडेशन बीज है किसान भाइयों, ये गुणवत्ता में हमें जो जेनेटिक प्योरिटी है फाउंडेशन बीज में, वो कम से कम 99% होनी आवश्यक है
1: जी।
0: इसी तरह से यदि हम हाइब्रिड की बात करें, तो जैसे जेनेटिक प्योरिटी उसमें 95% आवश्यक है, और यदि हम कोई सर्टिफाइड बीज की बात करें, तो सर्टिफाइड बीज के अंदर हमें ये देखना है कि जैसे वैरायटी है, कंपोजिट है, ये सब इनकी जेनेटिक प्योरिटी, आनुवंशिक शुद्धता वो 98% होनी चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता का मतलब मैंने शुरू में बताया कि वो ट्रू टू टाइप होना चाहिए, वो जीनोटाइप जो है उसके अंदर जो विशेषता वैज्ञानिक ने शुरू में जब उस वैरायटी को डेवलप किया वही उसके अंदर होनी चाहिए 100%। उसमें एक भी पौधा ऐसा नहीं होना चाहिए जो, जैसे मान लीजिए गेहूं की बात करें, गेहूं में बाली ऊपर आ गई, किसी के नीचे आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रीडर बीज में तो एक सिंगल पौधा भी नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन बीज में 99% तक है, और जैसा मैंने बताया हाइब्रिड में 95% इन जनरल है, कुछ स्पेसिफिक केसेस को छोड़कर। तो इस तरह से हम ब्रीडर बीज की से फाउंडेशन बीज बनाते हैं, फाउंडेशन बीज से

0: सर्टिफाइड बीज बनाते हैं। किसान भाइयों, जो फाउंडेशन सीड है, ये एक चयन है, ये प्रक्रिया है कि बीज किससे कैसे बनेगा। तो वो फाउंडेशन जो एफएस फर्स्ट होता है, वहां से तीन जनरेशन से ज्यादा मल्टीप्लाई सीड नहीं हो सकता, ये देखने वाली बात है। यानी तीन जनरेशन तक जो है वो उसको मल्टीप्लाई किया जाता है फाउंडेशन फर्स्ट के बाद में। इस तरह से सर्टिफाइड बीज, यदि प्रमाणित बीज की बात करें, तो किसान भाइयों को ज्यादातर जो दुकानों पर मिलता है वो ब्लू टैग वाला बीज मिलता है, जिसको सर्टिफाइड बीज है। और उस ब्लू टैग जो लगाया जाता है, ब्लू एज्योर करके जो टैग आता है, वो यानी नीले रंग का टैग उस पर मिलेगा
1: जी। अब आपसे अगला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि बीज विधायन क्या है और बीज के कौन कौन से टेस्ट आवश्यक है, और हम किसान भाई बहनों को कहां पर करवाने की सलाह दें।
0: देखिए, जो बीज है, बीज की फेजेस क्या क्या है, आपने पूछा कि बीज विधायन क्या है।
1: बीज विधायन,
0: हाँ, तो बीज विधायन का मतलब ये है कि जो बीज इंस्पेक्शन, बीज प्रमाणीकरण संस्था की रेगुलेटरी जो बॉडी है, ये उनका अधिकारी खेतों में जाकर के इंस्पेक्शन किया, रिपोर्ट्स, निरीक्षण रिपोर्ट जारी की, और उसके बाद में वहां से इस बात की, हर अलग अलग फसलों में अलग अलग, जैसे किसी में दो है, किसी में चार है, किसी में छह है इंस्पेक्शन होते हैं। तो अब इसके बाद में जो बीज विधायन है, यानी जो सीड है जो पास हो गया खेतों में, उसको फिर जो सीड है उसको प्रोसेसिंग प्लांट पर लाया जाता है और वहां उसका विधायन किया जाता है, यानी उसकी ग्रेडिंग की जाती है। सबसे पहले उसकी क्लीनिंग होती है, उसके बाद में उसका जो है आपके सीड ट्रीटमेंट भी होता है और उसका ग्रेडिंग भी होती है। ग्रेडिंग होने के बाद में ग्रेडेड सीड के लॉट बनाए जाते हैं और लॉट के जो है फिर उसमें से सैंपलिंग की जाती है। दो तरह के सैंपल लिए जाते हैं, एक तो सीड टेस्ट, जो सीड लैब है राजस्थान में, वहां सीड टेस्टिंग के लिए जो है किया जाता है, तो सैंपल लिया जाता है और वो लैब को भेजे जाते हैं, जिसमें जर्मिनेशन, फिजिकल प्योरिटी, डिजीजेज और मॉइस्चर, ये सब के लिए वो सैंपल जाता है। तीन सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं, एक सैंपल प्रोड्यूसर के पास रहता है, एक सैंपल बीज प्रमाणीकरण का जो गार्ड के रूप में रहता है, और एक लैब को चला जाता है।
1: तो श्रोताओं, अभी हमने जानकारी ली बीज, बीज के वर्ग, बीज प्रमाणीकरण और बीज विधायन विषय पर। और जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए चंद्रभान सिंह गिल जी, आप सेवानिवृत्त संयुक्त निदेशक कृषि, संयुक्त सचिव राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड से आप पधारे और इतनी बढ़िया सरल शब्दों में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना।
3: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
2: वो कैसे?
3: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना। कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
2: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहा?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो, पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: अरे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: हाँ तो अदिति
1: जी सर,
0: बीज, बीज वर्ग, बीज प्रमाणीकरण और बीज विधायन, पूरा विषय पर बीज के बारे में, बीज काई है वे, की तरीका से बीज काम आवे, डॉक्टर चंद्रवान सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप बहुत ही बढ़िया सवालों के साथ में किसानों के लिए यह जानकारी दिलाई। और अब आगे बढ़ा
1: जी सर,
0: और मनोरंजन की ओर बात करता हुआ सुना एक गीत।
1: चलो सर
0: सुनो सर।

0: सुंदर खान की मीठी सी आवाज में अबार आपा सुनी लोक रचना।
1: और अब देखो अदिति, अबार केंद्र सरकार है वो रबी सीजन 27-28 के लिए 6 प्रमुख रबी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी में मंजूरी दी है। सरकार को मुख्य फोकस दलहन और तिलहन की खेती ने बढ़ावा देवो है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम यानी कि सनफ्लावर के मायने करी है और 675 रुपया यानी अब 7215 रुपया प्रति क्विंटल की रेट हो गई है। और समूह कम अगर बात करा तो गेहूं के मायने 25 रुपया बढ़ोतरी करी 2610 रुपया प्रति क्विंटल। साथ ही बात करा सरसों में 413 रुपया की बढ़ोतरी हुई 6613 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर है वो अब 7390 रुपये प्रति क्विंटल होगी के मायने 390 रुपये की बढ़ोतरी हुई है जो 2286 रुपये प्रति क्विंटल यानी 136 रुपये की बढ़ोतरी एमएसपी के मायने हुई है। और चना की बात करा तो 5928 यानी कि 83 रुपये की बढ़ोतरी करके सरकार है वो लागत पर किसाना ने 50% से लेर 106% तक मुनाफो मिलबा को अनुमान इसू मिल रियो है
0: जी सर। और चलता चलता सीकर मंडी का भाव की बात कर लिया चना की तो अधिकतम मूल्य रहो 6500 और न्यूनतम की बात करा तो 5000 और सौंफ की बात करा तो 11500 अधिकतम और न्यूनतम रहो 7500। और सर किसान वाणी कार्यक्रम से विदा लेवा को बखत हो आयो छे तो देव अदिति ने
1: और दौलत पारिक ने
0: आज्ञा चाला और करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा पेंशन का सहारा कृषक ना होगा बेसहारा जुड़ेगा खुशियों से नाता कटेगा सुख से बुढ़ापा सुरक्षित होगा अन्नदाता सुरक्षित होगा अन्नदाता।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
5: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
3: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
5: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
3: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
5: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुन रहा सगड़ा किसान भाया ने दौलत पारिक री घनी घनी राम राम और अदिति आपने भी घनी घनी राम राम
1: राम राम दौलत भाई और सुनभाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
0: देखो खेतीबाड़ी में आज है कार्यक्रम फोन इन और फोन इन कार्यक्रम के मायने आज विशेषज्ञ है वो आपके स्टूडियो के मायने मौजूद है। सब पहले ओळखाण करा दिया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल जी स्वागत है खंडेलवाल साहब।
2: राम राम साहब।
0: और देखो अदिति विशेषज्ञ भी आपके साथ में आ गया और अब जो फोन इन कार्यक्रम है जो फोन नंबर है वो एक बार किसानों ने बता दिया 22006002200700002208000 और चौथा नंबर है 23664777 और जयपुर से बाहर जो भी फोन कर रहा है जयपुर का एसटीडी कोड 0141 लगा वो नहीं भूले। तो अब किसान है वो आपकी समस्या से जुड़ी हुई जो भी कोई समस्या है वो स्टूडियो में आप फोन करके जानकारी ले सके।
1: जी सर आप इंतजार करा कि देखा कोई स्वास्थ्य श्रोता अपने से आगे जुड़ रहे हैं उससे पहले आप बात करा डॉक्टर साहब से सरसों की बुवाई को टाइम चल रहे है
2: तो हाँ, बिल्कुल
1: पहले देखा कौन सा श्रोता अपने से आगे जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो
1: राम राम सर खेतीबाड़ी कार्यक्रम
3: राम राम सर राम राम
1: जी नाम बताओ कहीं परेशानी आ रही है आपने वह बताओ।
3: बंसीलाल बोल रहा हूँ सरसों की फसल बोनी है तो कौन सी किस्म सही रहेगी
2: क्या बोनी है आप इतना एक तो रेडियो जो चालू है उसकी आवाज गूंज रही है।
3: अच्छा
2: हाँ आप वापिस बताएं
3: सरसों की फसल बोनी है जो कौन से सप्ताह में बोनी।
2: देखो सरसों की फसल का जो बुआई का समय बिल्कुल अभी आ गया है हालांकि अभी थोड़ा सा तापमान ज्यादा है थोड़ा और इंतजार कर लीजिए और अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसकी बुआई की जा सकती है और इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं उसमें गिरिराज RH30 Bio 902 लक्ष्मी पूसा बोल्ड रोहिणी वरुणा इनमें से कोई सी भी किस्म जो आपके यहाँ क्षेत्र में उपलब्ध है वो आप ला सकते हैं और इसकी बुआई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाई जो फोन से जुड़ रहे हैं सभा से निवेदन है कि जब भी फोन पर आपको स्टूडियो में फोन जुड़ जावे तब आपको जो रेडियो सेट है की आवाज बहुत कम कर लियो या आप रेडियो से थोड़ा दूर चले जाओ क्योंकि बिकी वजह से अपा की बातचीत अच्छी तरह से नहीं हो पाए। एक और किसान अपा के साथ बात करा। हेलो
4: हेलो नमस्कार जी
0: नमस्कार खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आपको स्वागत है नाम बताओ कथों बोल रहे हो।
4: मैं जी राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी।
0: स्वागत है राजेंद्र यादव जी कटो बोल रहे हो
4: गांव रायपुर अहिरान तहसील वहाँ झुंझुनू से बोल रहा हूँ
0: जी। झुंझुनू से आपको स्वागत है आप सवाल करो काई समस्या आ रही है।
4: सवाल जी ये है कि मेरे 60 पेड़ है जी नींबू के
0: जी
4: तो उसमें वो 10-10, 12-12 फुट के बढ़ गए जी उसको कोई अभी फल नहीं दिया जी।
2: कितने साल के हो गए वो पौधे
4: ये 4 साल में लाए गए जी वो।

0: हाँ एक्चुअल में क्या होता है कि नींबू के जो पौधे होते हैं जो बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसमें 3 साल से लेकर के 6 साल तक का समय लगता है पहली फलत आने में। अभी आपके 4 साल के हुए हैं तो एक तो इसमें आप जो पानी का है वो उचित प्रबंध रखें, खाद एवं उर्वरक जो है सिफारिश के अनुसार देवें और अभी इंतजार करें, हो सकता है कि आपके अगले साल तक फूल आने लग जाए।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी झुंझुनू से। एक और किसान आपके साथ में बात करा वासु। हेलो
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपको स्वागत है, नाम बताओ, कटाऊ बोल रहे हो?
2: सुभाष बोल रहा हूँ जी, मैं हरियाणा से।
1: सुभाष जी हरियाणा से आपको स्वागत है, कई समस्या आ रही है खेती बाड़ी के मायने बताओ।
2: समस्या आ रही है जी, मेरे एक ये पपीता का पेड़ है तीन
1: जी,
2: तो उनको एक के तो लाग रहा है बहुत ज्यादा, वो पीड़ा नहीं हो रहा, 2-3 महीना हो गया बड़ा बड़ा हो रहा है, आधो को लाग गई कोई
1: जी। बता रहे बताओ।
0: देखो पपीता के जो पौधे होते हैं अभी जैसे आपके 3 महीने हुए फल लगे हुए तो अभी समय लगेगा, करीब करीब 4 से 5 महीने का समय लग जाता है फल लगने के बाद पकने में, तो इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा होता है
1: जी। बिल्कुल धन्यवाद। एक और किसान आपके साथ है, बात करा वासु। हेलो
3: हेलो,
1: फोन कटियो। एक और किसान है, बात करा वासु। हेलो, कार्यक्रम खेती बाड़ी में आपको स्वागत है, कौन बोल रहे हो?
4: नमस्कार जी, हम तो हरियाणा से बोल रहे हैं जी।
1: नमस्कार हरियाणा से, कहीं समस्या है पूछो साहब।
4: सर हम तो बिना खाद गेहूँ कैसे करें जी?
1: बिना खाद गेहूँ कैसे करें?
0: देखो बिना खाद गेहूँ की खेती यदि आपको करनी है तो नेचुरल फार्मिंग के तरीके से करनी होगी। इसके लिए आप जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा को एक तो मिट्टी में बढ़ाएं, उसके लिए आप गोबर की खाद काम ले सकते हैं, कंपोस्ट ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट काम ले सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक पदार्थ हैं उनका भी समय समय पर उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें जैसे जीवामृत है या जो दसपर्णी है उनका छिड़काव करना पड़ेगा, तो उस तरीके से आप गेहूं की खेती कर सकते हैं।
4: सर मैं ऐसे बोला जी, मैं जी यूरिया की जगह क्या प्रयोग करें जी?
0: क्या जी?
4: डीएपी और यूरिया की जगह कौन सा खाद प्रयोग करें?
0: हाँ यूरिया और डीएपी की जगह मैंने आपको बताया ना, आप एक तो ऑर्गेनिक पदार्थ की महत्ता को बढ़ाएं, जिसके लिए आपको कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है या खलियों को भी प्रयोग में ले सकते हैं आप, और इसके अलावा जो जीवामृत है, सप्तपर्णी है, इनका भी प्रयोग करेंगे तो उससे भी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी।
1: बिल्कुल
4: जी, फसल बढ़वार करेगी जी।
0: हाँ जी
1: धन्यवाद साहब, हरियाणा से आपके साथ किसान जुड़िया वहाँ के लिए, और कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा, पहली छोटो सो विराम।
5: सुनो इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सुनो इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
1: एक बार फिर से खेती बाड़ी कार्यक्रम में स्वागत है, फोन इन कार्यक्रम चाल जो है 2-600-2700-2800-2-3-6-6-4-7-7 किसान आपके साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। बिसु पहली आपका जो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल साहब है प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर से यहां से बातचीत कर लिया, और चना की अगर बीज दर की बात करें क्योंकि कितनी होवे, क्योंकि किसानों ने कई बार समस्या आ जाएगा कितनी काई होनी चाहिए, तो इसके बारे में बता दें।
0: बुआई का भी समय आ गया है और इसकी भी जो बुआई करते हैं वो अक्टूबर के जो प्रथम सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करते हैं, और इसके लिए 60 से 70 किलोग्राम बीज जो है एक हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है। इसके लिए उन्नत किस्म जो है GNG 1581, GNG 2144, GNG 2171, RSG 974, CSG 515, इनमें से कोई सी भी जो किस्म है उसको आप ला सकते हैं और इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं
7: जी। सर अब बात करें आप सरसों की, तो सरसों में अंकुरण के पाछे छोटा छोटा पौधा होगा छे और उनकी पत्तियां जो छे कीड़ा खा जावे छे, तो इनकी बात करा, लेकिन उससे पहले देखा कौन सा श्रोता अपने साथ जुड़ा है।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, नाम बताओ, कठौ बोल रहे हो?
1: नाम राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी।
0: जी जी, कई समस्या आ रही है आपने?
1: समस्या जी है कि मेरा फोन है वो काट गया था आपने।
0: नहीं नहीं सर, हाँ सर बताओ, आप बताओ कोई परेशानी और कहीं?
1: हाँ जी, अमरुद का 10 पेड़ है जी।
0: जी
2: हाँ बताएं।
1: मैं अभी ये फल लेना है कि नहीं लेना है जी?
2: कितने साल के हो गए
1: ये जी? 4 साल के हो रहे हैं जी अभी।
2: और ये बीज कलमी पौधे हैं या बीज वाले पौधे हैं
1: जी? ये तो मेरे कोई वो नहीं, मतलब फल लग रहे हैं जी उसके, बहुत ज्यादा फल लग रहे हैं जी।
2: हाँ तो ऐसा है कि अमरुद में पौधे लगाने के बाद में 3 साल के बाद में फल लेना, वैसे तो 1 साल बाद में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 साल के बाद में पहली फसल लेना चाहिए। और इसमें 3 बार फल आते हैं, फूल और फल लगते हैं। तो हमें जो जुलाई के महीने में जो फूल आते हैं और नवंबर दिसंबर में जब फल पककर के तैयार हो जाते हैं, उस फसल को हमको लेना चाहिए। उसको मृग बहार बोलते हैं, तो मृग बहार लेनी चाहिए, तो उसमें हमको उपज भी अच्छी मिलेगी और फल की जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी मिलेगी।
1: ठीक, तो अब ये सर ये फल लेक तोड़ दें जी?
2: हाँ अभी तो समय होगा, अभी पकने दो, अभी तो अगले महीने से जाके आपको दिखाई देंगे पके हुए।
1: ठीक है जी, धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद सर। हेलो हेलो,
3: नमस्ते सर।
0: नमस्कार सर, नाम बताओ आपको?
3: मेरा नाम महेंद्र सिंह है
0: जी। कहीं परेशानी आ रही है आपको?
3: जी मेरे बड़बेर है एक, उसमें फूल खूब आते हैं परंतु झड़ जाते हैं
2: बेर में।
3: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बेर है।
2: देसी बेर है या कलमी है?
3: कलमी है सब।
2: हाँ जी कलमी है। तो अभी जो है जो अगस्त और सितंबर के महीने में इसमें फूल आकर के और फल लगे होंगे, और अभी भी कुछ थोड़े बहुत फल फूल दिखाई दे रहे होंगे, बाकी फल जो इस समय मटर के दाने के बराबर हो जाते हैं। हाँ लेकिन आपके जो फल झड़ रहे हैं, या तो आप उसमें खाद उर्वरक अच्छी मात्रा में नहीं दे पा रहे हैं, तो खाद उर्वरक का प्रबंधन करें जिससे कि पौधा स्वस्थ हो, या दूसरा ये हो सकता है कि बरसात के दिनों में जो छोटे कीट होते हैं जिसमें एफिड होता है, जैसिड होता है, हरा तेला होता है, तो ये जो कीट है ये रस चूस करके पौधे को कमजोर कर देते हैं, पत्तियां भी मुड़ जाती हैं, तो इसकी वजह से जो फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि उसमें कीट की वजह से नुकसान हो रहा है या वो खाद उर्वरक की कमी है।
3: खाद कौन सा देना चाहिए?
2: खाद भी इसमें देखो सभी पोषक तत्व देने पड़ेंगे। गोबर की खाद दे दीजिए आप 50 से 60 किलो एक पौधे में, और इसके अलावा जैसे नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है, इनकी भी पूर्ति करनी पड़ेगी। इसके अलावा आजकल मैदान में सूक्ष्म पोषक तत्व की भी कमी देखने को मिलती है, तो उसके लिए भी हमें जो मिश्र आते हैं इसके सूक्ष्म तत्वों के वो भी आपको देने होंगे।
4: धन्यवाद। एक और किसान आपके साथ है, बात करा वासु। हेलो
5: नमस्कार जी,
4: कार्यक्रम खेतीबाड़ी में आपको स्वागत है। कौन बोल रहे हो? थोड़ा तेज बोलो आवाज।
5: मैं मास्टर धर्मेश सिंह बोल रहा हूँ हरियाणा से।
4: हरियाणा से काई समस्या आ रही है बताओ?
5: उदयराम जी और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और बहन जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: आपको भी
5: सर, हमारे यहाँ टेम्परेचर चल रहा है 33 डिग्री
4: जी।
5: अब सरसों बोए कि नहीं बोए?
2: अभी मैंने आपने यदि पूरा प्रोग्राम सुना हो तो मैंने बताया था अभी तापमान थोड़ा सा अधिक है, तो अभी सरसों की बुआई के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। तापमान को थोड़ा सा और नीचे जाने दीजिए, और ये 25 से 30 के बीच में जब आ जाए तापमान, तब जाकर के आप इसकी बुआई करें।
5: ओके थैंक यू।
0: फोन करवा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद। और खेती बाड़ी कार्यक्रम में थोड़ो सो लेवा अंतराल।
6: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेकू सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
0: श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है खेती बाड़ी, और अपने सागे विषय विशेषज्ञ छे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल। फोन इन कार्यक्रम छे आपको मन चित्र कार्यक्रम, आप फोन करो और आपकी समस्याओं को समाधान पाओ।

0: जी
1: इनको भी मेरी वो हार्दिक बधाई देना, ये जो बोलते हैं ना वैसे ही वर्षा आती है
0: जी।
1: तुम्हारे रेडियो का बहुत पुराना सत्ता हूँ, रेडियो आज भी मेरे पास रख रखा है
0: जी सर जी।
1: प्रधानमंत्री की जो भी है ये 137 कड़ी ये भी मैं सुन रहा हूँ प्रधानमंत्री।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आपने कहीं समस्या आ रही है, कोई परेशानी आ रही है आपने खेती बाड़ी से जुड़ी?
1: खेती बाड़ी कोई परेशानी नहीं आ रही, की मैं रेडियो से सुनता हूँ बीज खाद सारी बातें। मैं किताब मन वो बात आती ना खेती की बात
0: जी,
1: वो भी किताब मंगाता हूँ मैं। बहुत सब चीज में बह गए आगा हुआ एडवांस हूँ सर मैडम जी।
0: जी जी जी महाशय जुड़वा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सर। तो आप फोन लाइन पे जाबासू पहले जुड़वासू पहले आप डॉक्टर साहब से पूछ रहा है कि सरसों का अंकुरण के पाछे छोटा छोटा सा पौधा हो बचे वहाँ की पत्तियां कीड़ा खा जावे छे, तो आंका नियंत्रण के लिए मैं कई उपाय अपनावा?
2: हाँ ये अभी क्योंकि सरसों की बुआई का समय आने वाला है
0: जी,
2: इसलिए बहुत ही जरूरी सवाल है ये कि एक आरा मुखी नाम का कीट होता है, तो वो जो ही अंकुरण होता है और पौधे 10-15 दिन के होते हैं उसी समय वो पत्तियों को खा जाता है, तो उससे पौधों की बढ़वार हो जाती है, पौधे मर जाते हैं। तो इसके लिए जो क्विनाल फॉस नाम की जो एक डस्ट आती है 1.5% के हिसाब से आती है, तो उसका 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरखाव करना है, तो उससे ये कीट नियंत्रण हो जाएगा
0: जी। और अगर बेर की बात करा तो बेर का मायने आप बता तो दिया कि फल भी आ गयो, छोटा छोटा सा फल बढ़वा भी लग गया, लेकिन कई बार देखबा में आवे छे कि वह फल काणा होवे छे, तो काणा होबा सु बचावा के लिए के उपाय में अपनावा और ये उपाय करबा को सही टाइम छे कई?
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि बेर में क्या होता है किसान भाई समस्या का जो की फल काने हो गए ये बताते हैं जब फल पकने की स्थिति आती है फरवरी मार्च के महीने में, तो उस समय फल काने हो जाते हैं उसका कोई इतना अच्छे तरह निदान नहीं है, क्योंकि अभी फल बगर से लेकर बने हैं और मटर के दाने के हैं, यदि इसी समय हम 15 दिन के अंतराल पे दो छिड़काव कर दें किसी कीटनाशी का, जिसमें कीटनाशी में जैसे हम डायमेथ्यूट ले सकते हैं, डायमेथ्यूट 30 cc 1 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर के छिड़काव कर दें, और उसके बाद में दूसरा जो हम फ्लूबेंडामाइड जो है उसको काम में ले सकते हैं 39.4 ac आता है ये, तो इसका आधा ml दवा 1 लीटर पानी में मिला करके और 15 दिन के बाद में छिड़काव कर, तो इस प्रकार से यदि 15 दिन के अंतराल पर हम दो छिड़काव कर देंगे तो जो ये फल मक्की है जो क्योंकि अभी ये जो छोटे छोटे फल होते हैं इनकी सतह के अंदर ऊपरा जो छिलका होता है छिलके के अंदर कीट देती है और वो कीट फिर अंदर ही अंदर बढ़ते रहते हैं और वो फल को खाते रहते हैं, जब हमें पता चलता है जब फल हम तोड़ने की स्थिति में आते हैं तब
0: जी।
2: तो यदि हम ये दोनों छिड़काव कर देंगे तो हमारा ये कीट का नियंत्रण हो जाएगा
0: जी। जी हाँ डॉक्टर साहब आप बताया कि सरसों की बुवाई को ये सही टाइम छे, थोड़ा सा तापमान ऊपर नीचे हो रहे लेकिन फिर भी अपना कर्जा भाई बहन कर सके छे, तो उन्नत वहां की किस्म कौन कौन सी छे और कई बाता को वह ध्यान रखे और फिर सरसों की बुवाई के लिए आगे बढ़े?
2: देखो सरसों की बुवाई का समय अभी आने वाला है, इसके लिए जो अच्छी किस्म है उसमें गिरिराज बायो 902 RH 749 RGM 298 लक्ष्मी वरुणा रोहिणी इनमें से कोई सी भी किस्म का चयन कर सकते हैं और 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होगा। बीज की बुआई करने से पहले बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है
0: जी।
2: और बीज उपचार के लिए कार्बन रेजिम 50 WP 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से इसमें बीज की बुआई से पहले इसमें मिलावे तो उससे बीज उपचार हो जाएगा। तो बीज उपचार करने से कई तरह के रोगों से फसल का बचाव होता है, इसलिए कि हर किसान भाई को कोई सी भी फसल की बुआई करे बीज उपचार करना जरूरी है
0: जी सर। और साथ में और कौन कौन सी ध्यान दे वाली बात है सरसों की बुआई का टाइम पे?
2: देखो इसमें बीज उपचार तो है ही, साथ के साथ हमें तापमान का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे समय तो हो गया इसकी बुआई का, लेकिन अभी वातावरण में तापमान अधिक है
0: जी।
2: तो अधिक तापमान में यदि हम बुआई कर देंगे तो पौधे उगते ही जलने लग जाएंगे, तो इसलिए हमें एक तो तापमान थोड़ा सा कम हो करीब 25 डिग्री के आसपास का तापमान आ जाए तब जाके हमें बुआई करनी है, और बुआई हमें कतारों में करनी है जिसमें जो पौधों की लाइनों के बीच में जो दूरी है 30 सेंटीमीटर रखनी है और पौधे से

0: की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रखनी है। और बुआई करने से पहले हमें इसमें खाद एवं उर्वरक भी मिलाने हैं, और ये जो सिफारिश होती है खाद एवं उर्वरक की वो क्षेत्र के हिसाब से होती है, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से। तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग से आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ क्षेत्र के हिसाब से जो भी सिफारिश की हुई है खाद एवं उर्वरक की उसको काम में ले। इसके लिए जिप्सम भी मिलाना काफी आवश्यक होता है, तो 300 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यदि खेत की तैयारी के समय मिलाएं, और गोबर की खाद जो है वो 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाएं, तो वो फसल बहुत बढ़िया होगी।
1: जी डॉक्टर साहब, आपका बिरखा जो छे थोड़ी सी रूसी रूसी रही छे आपने से।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कोई जगह पे चौकी होगी पर कुछ जगह पे अशी सुनबा में आ रही छे कि कमती छे सिंचाई का पूरा साधन ढंग से कौन है, पूरा पानी छे कौन है, तो उन टाइम पे आपने सरसों के लिए और कई कई चीजें करनी छे।
0: देखो सरसों की बुआई से पहले एक तो पाटा लगाना जरूरी है, क्योंकि जिससे कि खेत में नमी बनी रहे, और सिंचाई जो करनी है वो हमें पानी की उपलब्धता के आधार पर करनी है, और जो बिल्कुल इसका जो क्रिटिकल टाइम होता है उस समय जरूरी है। एक जैसे पहली सिंचाई जो है वो 35 से 40 दिन के बाद में कर दें, और दूसरी सिंचाई बुआई के 70 से 80 दिन बाद में, और तीसरी सिंचाई 100 से 115 दिन बाद में जब फलियां बन रही होती है। तो क्योंकि उस समय जब यदि हम सिंचाई करते हैं तो उससे जो फलियों में बीज का जो दाना का आकार है वो बड़ा बनता है, तो उससे हमारी पैदावार में बढ़ोतरी होती है।
1: जी तो ये छोटी छोटी सी बात को आपने ध्यान रखना चाहिए कि सरसों की बुआई को समय बस अब नजदीकी है। डॉक्टर साहब अब बात करा प्याज की पौध की तैयार करवा की, तो कहीं ये सही समय है?
0: देखो प्याज की पौध तैयार करने का अभी थोड़ा सा और इंतजार करना है आपको, करीब करीब ये कह सकते हैं कि 15-20 दिन बाद में आप बुआई कर सकते हैं इसकी, क्योंकि पौध की जो रोपण है वो 15 दिसंबर से लेकर के और 15 जनवरी के मध्य करनी होती है। तो उससे पहले हमें पौध तैयार करनी होती है, और पौध तैयार करने के लिए 6 से 7 सप्ताह का समय लगता है, तो उसी हिसाब से हम हमारी कैलकुलेशन करके और बुआई कर सकते हैं। और बुआई करने के लिए हमें जो भी उन्नत किस्म है जिसमें जैसे आर ओ एक है, आर ओ 59 है, इसके अलावा नासिक रेड है, पूसा रेड है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, इन किस्मों का चयन कर सकते हैं। और इन किस्मों का बीज जो है वो 10 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए प्राप्त होता है, तो उसके हमें पौध तैयार करनी है। पौध हमें उठी हुई क्यारी में तैयार करनी चाहिए, और उसके बाद में बीज बुआई करने से पहले हमें बीजोपचार करना जरूरी है। बीजोपचार करने के लिए कार्बन डाइजीन 50 WP जो है 2 से 2.5 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से हम काम में ले सकते हैं, और नर्सरी में कतारों में ही बुआई करें जिससे हमारी पौध अच्छी तैयार होगी। और 6 से 7 सप्ताह में जब तैयार हो जाएगी तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के मध्य हम खेत में इसकी रोपण कर सकते हैं।
1: जी सर, अब बात करा रबी की मौसम में उग बाड़ी जो साग सब्जियां छे वहां कौन कौन सी छे और वहां की तैयारी में क्या करा?
0: देखो साग सब्जियों में अभी रबी का मौसम आ रहा है और बुआई चालू भी हो चुकी है। इसमें जैसे गोभी वर्ग है जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, इनकी बुआई कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा टमाटर, बैंगन, मिर्च, फिर जड़ वाली फसलें हैं जिसमें गाजर है, मूली है, शकरकंद है, ये हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये मीट पत्ती वाली सब्जी जो है इसमें पालक है, मेथी है, हरा धनिया है, इनकी बुआई हम कर सकते हैं
1: जी। तो इसके लिए खेती अपने तैयार करवा के लिए, पौध तैयार करवा के लिए अपने कहीं कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी, वह बताओ सर।
0: देखो इनमें से जो जिन सब्जियों के बीज छोटे होते हैं जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, गोभी, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकोली है, इनके हमें पहले नर्सरी तैयार करनी होगी
1: जी। एक बार डॉक्टर साहब आपने देखा कौन सा श्रोता अपने साथ जुड़िया, फिर आपसे विस्तार से जानकारी ले वाला। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: राम राम सर, नाम बताओ आपको।
2: मुकेश गुजर।
1: मुकेश जी आपने कहीं परेशानी आ रही है, कठे बोल रहे हो?
2: मैं राजस्थान जलावाड़ से बोल रहे हो
1: जी। आपने कहीं परेशानी आ रही है?
2: परेशानी आ रही है मको वार्ड नंबर 43 है। मकई 30-40 घर है
1: जी।
2: जी अवैध बस्ती मका पास है तेजी महाराज की।

0: जी, आपने खेती बाड़ी से जुड़े हुआ कोई सवाल हो तो वह पूछो सा। जी सा, आप डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं कि रबी का मौसम है, कौन कौन सी ऐसी साग सब्जियां हैं जिनके लिए आपने पौध तैयार करनी है, उनके लिए आपने किन बात की तैयारी करनी पड़ा ली, तो डॉक्टर साहब आप बताओ सा।
1: तो जैसे मैंने बताया कि फूलगोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली, टमाटर, बैंगन, मिर्च, प्याज, इनकी हम पौध तैयार करेंगे। पौध तैयार करने के लिए जो सिफारिश है उसके अनुसार बीज का चयन करेंगे। जो भी किस्म है, जिस किस्म का आप चयन करना चाहते हैं उस किस्म का बीज लाएं, और बीज की बुआई करने से पहले बीज उपचार करना जरूरी होता है। संकर किस्मों के जो बीज यदि हम काम में ले रहे हैं तो वो काफी महंगे होते हैं, तो उनके पौध के लिए मैं चाहता हूं कि आप उसको बजाय खेत के सीधे और उसके जो फ्रूटरे आती हैं उनमें तैयार करें तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि बीज बहुत ही महंगा होता है। जैसे टमाटर है, टमाटर का बीज जो है 70-80 हजार रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से होता है, तो यदि हम उसको खेत में क्यारी में बीज तैयार करेंगे, पौध तैयार करेंगे, तो उसमें नुकसान होने की संभावना होती है। तो फ्रूटरे में क्या होगा कि जो भी बीज हम तैयार करेंगे वो हर बीज जो है वो पौध में बनेगा। तो प्रोटीन के लिए हम कोकोपिट काम ले सकते हैं, कोकोपिट में, और इसके अलावा उसमें वर्मिकुलाइट और परलाइट मिला लें तो उससे उसमें हवा का आवागमन अच्छा होगा, और उसमें हर एक प्रोटीन में, जैसे 144 खाने की प्रोटीन होती है तो एक खाने में एक बीज की हमें बुआई करनी है।
0: जी सर,
1: यदि हमें जो खेत में तैयार करने, खेत में जो मिर्च लगानी है, जैसे प्याज है, बैंगन है, मिर्च है, गोभी है, तो इनके लिए हम उठवी क्यारी काम में लेवे और करीब जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए, और उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कतारें बना लेवे। खेत की तैयारी, जब क्यारी की हम तैयारी करते हैं तो उसमें 4 से 5 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आपके पास उपलब्ध है तो वो भी काम ले सकते हैं। एक स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको अच्छी तरह मिला लें। कच्ची खाद यहाँ पे काम में नहीं लेनी है, यदि कच्ची खाद काम लेंगे तो हमें पौध जलने का डर रहेगा, तो उस खाद को ऊपर की सतह पे मिला के और उसमें फिर क्यारियों में हमें बीज की बुआई करनी है। बीज के बीच में जो आपस की दूरी है वो 7 से 8 सेंटीमीटर रखनी है, और बीज को फिर ढक देना है, और करीब अलग अलग फसलों के हिसाब से अलग अलग है, 5 से लेकर के और 10 दिन के दौरान इसमें अंकुरण चालू हो जाएगा। और इसमें अंकुरण होने के बाद में एक बीमारी लगती है जिसको डैम्पिंग रोग बोलते हैं, आधगलन रोग। आधगलन रोग की पहचान यह है कि जो ही हम सुबह सुबह नर्सरी में देखने जाएंगे तो कुछ पौधे जो है जमीन पर गिरे हुए मिलेंगे, यदि हम उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसमें जो मिट्टी के पास वाला जो हिस्सा है वो गला हुआ दिखाई देगा, तो उससे हमें पहचान कर जानी चाहिए कि ये पौधा अधगलन रोग की वजह से हमारी खत्म हुई है। तो इसके लिए सबसे पहला तो उपचार यही है कि हमें बीजोपचार करके ही बुआई करनी चाहिए, और यदि उसके बाद में भी हमें ये समस्या देखने को मिलती है तो कैप्टान नाम की जो दवा आती है उसका 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिला लें, या कार्बन रेजीम 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके, और उसका जो 3 से 4 लीटर का जो सॉल्यूशन है 1 स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसमें पिलाएं, तो इस तरीके से हम पौध को बचा सकते हैं।
0: जी सर, आप बहुत ही सरल शब्द का मायने इतनी अमूल्य जानकारी दिया डॉक्टर सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर से आप विषय विशेषज्ञ हो, और आप फोन इन कार्यक्रम में पधारा ई के लिए आपको घना घना धन्यवाद, और खेती बाड़ी कार्यक्रम को समय पूरे होते जा रहे हैं तो देव अदिति ने आज्ञा चाला और करा। राम राम।

श्रोता में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी, इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।

0: कार्यक्रम हमारी बेड़िया में।
1: प्रिय मित्रों, जब कभी आप भविष्य के बारे में सोचते हो और किसी काम को आरंभ करने का प्रयास करते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या भविष्य को लेकर आपके अंदर एक डर होता है? भविष्य के बारे में सोचते समय हमारे मन में अक्सर एक सवाल आता है और वो सवाल ये होता है, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अक्सर परीक्षा से पहले यही डर छात्र और छात्राओं के मन में होता है। अक्सर इंटरव्यू से पहले बहुत से युवाओं में भी यही डर देखने को मिलता है। कई बार नया व्यापार शुरू करने वाले लोगों के मन में भी इसी प्रकार नया व्यापार या कोई नया कार्य करने से पहले डर लोगों के जीवन में पाया जाता है। यही डर कई बार हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम किसी नए काम को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद हम सफल नहीं होंगे। आज के इस कार्यक्रम में हम असफलता का डर और आत्मविश्वास के बारे में बात करेंगे और कैसे हम असफलता के डर पर विजय पा सकते हैं और अपने जीवन में आत्मविश्वास को लेकर चल सकते हैं, इसी के विषय में हम बात करेंगे। मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसा ही सोचते हैं कि जीवन में आने वाली असफलताएं हमारे भविष्य को नष्ट कर रही हैं? क्या इसी कारण आपको भविष्य का डर सता रहा है? क्या आपके जीवन की असफलता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है? तो आज मैं एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसने अपनी असफलता को अपनी सफलता का एक कारण बना लिया था। माइकल जॉर्डन, जिन्हें दुनिया के महानतम बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माना जाता है, उनका जन्म 17 फरवरी 1963 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय शिकागो बुल्स के लिए खेलते हुए बिताया और अपनी मेहनत, अनुशासन, लगन, भावना और असाधारण प्रतिभा के कारण बास्केटबॉल की दुनिया में एक महान नाम बनाया। माइकल जॉर्डन ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में इस बात को कहा, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट मिस किए हैं। मैं लगभग 300 मैच हार चुका हूं। 26 बार मुझे मैच जिताने वाला अंतिम शॉट लेने का भरोसा दिया गया, लेकिन मैं चूक गया। मैंने अपने जीवन में बार बार और बार बार असफलता का सामना किया है और यही कारण है कि मैं आज एक सफल खिलाड़ी हूं। माइकल जॉर्डन की सफलता की खास बात यह है कि उन्होंने असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके शुरुआती जीवन में भी ऐसी घटनाएं थी जिनसे उन्हें निराशा मिली। हाई स्कूल में वे टीम में चुने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अंतिम असफलता नहीं माना। उन्होंने अभ्यास जारी रखा और अपने खेल को बेहतर बनाया। बाद में वो कॉलेज और फिर जिस टीम से उन्होंने भविष्य में खेलना शुरू किया उसके द्वारा वो महान खिलाड़ियों में शामिल हो गए। पेश होता हो, असफलता का डर हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं है कि हमारे मन में कोई डर नहीं होगा, बल्कि आत्मविश्वास का अर्थ यह है कि डर होने के बावजूद हमें विश्वास हो कि हम उसका सामना कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ डर का ना होना नहीं है। आत्मविश्वास यह विश्वास है कि डर के बावजूद हम ठीक रहेंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। एक ओलंपिक खिलाड़ी इसलिए आत्मविश्वासी नहीं होता कि उसे कोई डर नहीं लगता। किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी से यदि आप पूछेंगे तो वह जरूर इस बात को बताएगा कि प्रतियोगिता से पहले उसे भी डर और चिंता होती है, फिर भी वह आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन करता है क्योंकि उसने बार बार कठिन और डरावनी परिस्थितियों का सामना किया है। उसने कई बार असफल होकर भी अभ्यास जारी रखा है। उसकी सैकड़ों और हजारों अभ्यास प्रतिक्रियाओं में कई बार गलतियां और असफलताएं हुई होंगी, लेकिन हर बार उसने कुछ नया सीखा और फिर से प्रयास किया। इन्हीं अनुभवों ने धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास पैदा किया कि डर के बावजूद वह अपना काम कर सकता है। यही आत्मविश्वास है। इसी तरह एक पेशेवर सिंगर को भी हम मंच पर हजारों लोगों के सामने गीत गाते या बजाते हुए देखते हैं।

कलाकार वर्षों तक मंच पर प्रदर्शन करने के बाद भी घबराहट और डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के कारण पीछे नहीं हटते। वे डर के बावजूद मंच पर जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं। बार बार ऐसा करने से उन्हें यह अनुभव होता है कि मैं डर को सह सकता हूं और फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। यही अनुभव धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको अपने जीवन में किसी भी काम को करने का डर लग रहा है और यदि आपने उस काम को करते हुए अपने जीवन में कई बार असफलताओं को प्राप्त किया है, तो आप ये ना सोचें कि आपका भविष्य नष्ट हो गया है, बल्कि उन असफलताओं के कारण ही आप एक न एक दिन जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। इसलिए आत्मविश्वास कोई ऐसी भावना नहीं है जो हमें अचानक मिल जाती है। यह अनुभव, अभ्यास, असफलता और बार बार प्रयास करने से विकसित होता है। जब हम असफल होने के डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और बार बार प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर यह विश्वास पैदा होता है कि हम भविष्य की चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। इसलिए असफलता से मत डरिए, डर के बावजूद कदम उठाएं, गलतियों से सीखें और फिर से प्रयास करें। हर बार जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाएगा। कुछ लोग इसलिए सफल होने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे अपने आप को दूसरों के सामने साबित करना चाहते हैं। उन्हें डर रहता है कि यदि वे असफल हुए तो उन्हें लोग कमजोर या असफल समझेंगे, इसलिए उनकी सफलता के पीछे डर और असुरक्षा होती है। इसलिए दूसरी ओर आत्मविश्वासी लोग चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें स्वीकार भी करते हैं क्योंकि वे अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे जानते हैं कि असफलता भी सिखाने का एक हिस्सा है, इसलिए वे अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते जाते हैं।

0: करके
1: प्रिय श्रोताओं, सफलता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितना हासिल कर सकते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि हम सफलता के पीछे किस भावना और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए अपना कमरा नहीं था और जो कभी कभी दोस्तों के कमरे के फर्श पर सोता था, क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास कभी खाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, वही व्यक्ति बाद में ऐसी तकनीक बनाएगा जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल करेगी? और क्या आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उसकी अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, वही कुछ वर्षों के बाद वापस लौटकर उस कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना देगा? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जो एप्पल के सह संस्थापक थे। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए। वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत आए थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों की यात्राएं की और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से प्रभावित हुए। भारत से लौटने के बाद उनकी सोच में काफी बदलाव आया। उन्होंने जीवन को केवल धन और भौतिक सफलता के दृष्टिकोण से नहीं देखा, उनके लिए सरलता, अनुभव और जीवन के गहरे अर्थ भी महत्वपूर्ण हो गए। बाद के वर्षों में उन्होंने आध्यात्मिकता और जो उनके पास अंतर्ज्ञान था, उसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण माना। स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई। वॉजनियाक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने में बहुत प्रभावशाली थे। जॉब्स तकनीकी को समझने के साथ साथ ये सोचने में माहिर थे कि किस तकनीक को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। दोनों की प्रतिभाएं एक दूसरे से अलग थी, लेकिन एक दूसरे के पूरक थी। वॉजनियाक मशीन बना सकते थे, जॉब्स उनमें एक बड़ा अवसर देख सकते थे। यहीं से एक ऐसी साझेदारी शुरू हुई जिसने कंप्यूटर की दुनिया को बदल दिया। 1976 में जॉब्स स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन ने एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत किसी बड़ी फैक्ट्री या शानदार ऑफिस से नहीं हुई। उन्होंने जॉब्स के परिवार के घर के गैरेज से काम शुरू किया। उनका पहला महत्वपूर्ण उत्पादक था एप्पल। यह आज के आधुनिक कंप्यूटर जैसा नहीं था, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्तिगत कंप्यूटर था जिसे लोग खरीद कर इस्तेमाल कर सकते थे। स्टीव जॉब्स का स्वभाव बहुत दृढ़ था। वे अपने विचारों को लेकर बेहद जुनूनी थे और अपने उत्पादों के बारे में बहुत ऊंची अपेक्षाएं रखते थे। आखिरकार 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से बाहर निकाल दिया गया, जिस कंपनी को आपने

खुद शुरू किया, जिसके लिए आपने अपना जीवन लगा दिया, उसी कंपनी से आपको निकाल दिया जाए। स्टीव जॉब्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने बाद में कहा भी कि एप्पल से निकाला जाना उनके जीवन की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक था, लेकिन यही घटना आगे चलकर उनके जीवन का एक नया अध्याय बन गई। असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है। 1990 के दशक में एप्पल कठिन परिस्थितियों से गुजर रही थी। एप्पल ने 1985 में मैक्स को खरीद लिया। इसके साथ ही स्टीव जॉब्स एप्पल में वापस आए। यहाँ उनके जीवन का सबसे बड़ा कमबैक था। जिस कंपनी से उन्हें कभी निकाल दिया गया था, उसी कंपनी में उन्हें वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने एप्पल को पूरी तरह बदलने का काम शुरू किया और उन्होंने इस काम को कर भी दिखाया। प्रिय मित्रों, असफलता हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल यानी कि रुकावट तो बन सकती है, लेकिन हमें उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ना होता है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं।

0: तो अब प्रश्न ये है कि असफलता के डर पर काबू पाने के लिए हम क्या करें। प्रिय मित्रों, असफलता के डर को समझना जरूरी है, लेकिन केवल समझना ही काफी नहीं है। आत्मविश्वास और मजबूती के लिए हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना और लगातार अभ्यास करना जरूरी है। जैसे स्वास्थ्य के बारे में किताबें पढ़ने से शरीर अपने आप में मजबूत नहीं होता, वैसे ही मनोविज्ञान को समझने से आत्मविश्वास अपने आप नहीं बढ़ता है। हमें धीरे धीरे ऐसी आदतें विकसित करनी होती हैं जो हमारे दिमाग को ये सिखाए कि डर और चिंता खतरा नहीं है। तो सबसे पहली चीज, डर से भागने की बजाय उसे स्वीकार करें। जी हाँ दोस्तों, जब आपको डर या चिंता महसूस हो तो खुद से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन ये सामान्य है। डर लगना गलत नहीं है, मैं डर के बावजूद ये काम कर सकता हूँ। दूसरी चीज, कोई नया शौक सीखें। ऐसा कोई काम शुरू करें जिसमें आप पहले से अच्छे नहीं थे, जैसे कि कोई नया खेल खेलना सीखें, खाना बनाना सीखें, संगीत या गीत गाना सीखें, नृत्य करना सीखें, साइकिलिंग या फिर कोई और काम जिसमें आप अच्छे नहीं हैं, उस कार्य को करने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य सफल होना नहीं, बल्कि गलतियां करने और असफल होने को स्वीकार करना सिखाना है। जब हम किसी नए काम में शुरुआत करते हैं तो हम गलतियां करते हैं, इससे हमें सीखने का अवसर मिलता है कि असफल होना बुरी बात नहीं है। तीसरी चीज, हमें अपने जीवन के मूल्यों पर विचार करना चाहिए। कई लोग मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने या दूसरों के सामने कमजोर दिखने का डर होता है। यह डर से प्रेरित जीवन है। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे ईमानदारी, साहस, प्रेम, सेवा, अनुशासन और करुणा। तो दोस्तों, असफलता के डर से बचने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा उससे भागना नहीं है, डर को स्वीकार करें, कठिन काम करने का अभ्यास करें और अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिए। धीरे धीरे आपका डर कमजोर होता जाएगा और आप आत्मविश्वास में मजबूत होते जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं या आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001, और हमारा फोन नंबर है 9414066730। जी हाँ, 9414066730। तो आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।

मीडिया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर नाथद्वारा करौली भरतपुर झुंझुनू अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी लाइव सुन सकते हैं।

यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। श्रोताओं, अब सुनेंगे आप फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में सबसे पहले आगाज कर रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम के इस गीत के साथ। आवाज अनिल साबरी, फरीद साबरी, समीर।

तेरे बिना दिल को चैन कहां, तेरी मुस्कान है मेरी जान, हर खुशी तुझसे ही जुड़ा है क्योंकि तू ही है मेरे दिल का अरमान। श्रोताओं, सिर्फ तुमके इस गाने के साथ ही आज का फिल्म संगीत का प्रोग्राम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आपके रेडियो दोस्त शंकर पारी को नमस्कार, खुदा हाफिज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, कुछ ही देर बाद हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम होंगे 8:30 पर स्पोर्ट्स गेम। तत्पश्चात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। साथ ही रात्रि 9:00 होगा न्यूज एट 9 और 9:15 पर होंगी उर्दू में खबरें। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। एशियाई खेलों में जारी रोमांच और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के साथ खेल जगत की हर अहम हलचल पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं

0: आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई खेलों के ग्रीको रोमन कुश्ती में नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। पुरुषों के एस्केप प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने देश के लिए पहला रजत पदक हासिल किया। महिला टीम ने जीता कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। गणेश मणि रत्नम ने पुरुषों के कंपाउंड व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली है और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में जगह बनाई, सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से, जहां आज भी भारतीय एथलीटों ने कई पदक देश के नाम किए। आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुश्ती से, जहां एशियाई खेलों में आज भारत के नितेश सिवाच को ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नागोया सिटी इनाय स्पोर्ट्स सेंटर में नितेश को पुरुषों के 97 किलोग्राम फाइनल में जापान के यूरी नाकाजुतो के हाथों 0-4 से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: नितेश वर्ष 1962 के बाद एशियाई खेलों की ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। 1962 में मारुति माने ने इसी वर्ग में रजत पदक जीता था। पहले राउंड के बीच में नितेश को पेनल्टी मिली, जिससे नाकाजुतो ने 2 अंक के साथ अपना खाता खोला। ब्रेक के बाद 0-2 से पीछे चल रहे नितेश को शेष 3 मिनट में वापसी की जरूरत थी। इसके बजाय नाकाजुतो ने मुकाबले की गति पर नियंत्रण बनाए रखा और भारतीय पहलवान को आक्रमण का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद यूरी नाकाजुतो ने नितेश पर अपनी बढ़त 4-0 कर ली। नितेश लगातार वापसी की कोशिश करते रहे, लेकिन यूरी नाकाजुतो ने मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया और नितेश को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बेडी अगामा मेदेव को 7-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। इसके बाद उन्होंने मंगोलिया के गन बातारिन गन खुयान को सेमीफाइनल में 9-0 से शिकस्त देकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: ऐतिहासिक दिन था आज भी, क्योंकि 1962 के बाद इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाले नितेश पहले भारतीय बने। लगातार उनका प्रदर्शन अच्छा रहा और आज भी अलग अलग स्पर्धाओं में भारत ने कई पदक जीते हैं। अब हम चलते हैं नौकायन की तरफ। एशियन गेम्स में भारत के नौकायन ने अपना पहला पदक जीता है। पुरुषों के स्किप इवेंट में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने रजत पदक देश के नाम किया। उधर नौ रेस के बाद वे चीन की जोड़ी के से दूसरे स्थान पर रहे। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारतीय जोड़ी ने 23 पॉइंट्स के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। चीन की जोड़ी वेन जाई डिंग और लियू तिया ने 16 पॉइंट्स के साथ स्वर्ण पदक जीता। हांगकांग चीन के अकीरा ल्यू सकाई और रसेल आल्सवर्थ 24 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे। फ्रांसिस और नोबल का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा। भारतीय सेलर्स ने रेस 3 जीती और रेस 1, 5 और 9 में दूसरे स्थान पर रहे। 9 रेस में उन्होंने कुल 29 पॉइंट्स हासिल किए। रेस 8 में छठे स्थान पर रहने के नतीजे को हटाकर उनका नेट स्कोर 23 रहा। ये पदक पुरुषों के स्किफ इवेंट में भारत का पहला एशियन गेम्स रजत पदक और इस इवेंट में देश का दूसरा मेडल था। वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने जकार्ता 2018 में कांस्य पदक जीता था। मनु और प्रिंस का सिल्वर मेडल एशियन गेम्स में भारत का 24वां सेलिंग मेडल भी था। हांगझोउ 2023 में भारत ने 3 मेडल जीते थे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि चीन ने स्टैंडिंग में टॉप पर अपनी बढ़त बनाए रखी और 9 में से 4 रेस जीती। यह सिल्वर मेडल 31 साल के फ्रांसिस और 30 साल के नोबेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सेलिंग की अगर बात की जाए तो सेलिंग में कम पॉइंट्स वाला स्कोरिंग सिस्टम होता है। इसमें रेस जीतने वाले बोट को 1 पॉइंट, दूसरे स्थान पर रहने वाले बोट को 2 पॉइंट मिलते हैं और इसी तरह आगे भी पॉइंट्स मिलते चले जाते हैं। सबसे कम कुल स्कोर वाला विजेता बनता है। और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है, तो देश के नाम एक और पदक आज आ गया है। और अब बात स्क्वाश पर करते हैं। एशियाई खेलों के स्क्वाश में आज भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता।

0: दोनों टीमों को सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: अभय सिंह को व्यक्तिगत स्पर्धा में एनयू से 0-3 से शिकस्त मिली, जिसके बाद वीर चुटरानी ने संजय जीवा को 3-0 से मात देकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। निर्णायक मैच में विलावन संतन कुमार को अमिशेन राजचंद्रन के हाथों 3-1 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत की स्वर्ण पदक मैच तक पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गयी और टीम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। फाइनल में मलेशिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। उधर भारतीय महिला टीम ने भी कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वैश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। अनाहत ने चान सिन युग के खिलाफ शानदार शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। इसके बाद तन्वी खन्ना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दूसरा गेम जीत लिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा हो तेजे लोक से हार गई। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग के खिलाड़ियों ने निरंतरता बनाए रखी और मुकाबले को जीत लिया। ज्योत्सना पांडे, स्पोर्ट्स कैन।
0: 2 ब्रॉन्ज मेडल आए स्क्वैश में और श्रोताओं आपको बता दें कि एशियन गेम्स में स्क्वैश में इस प्रतियोगिता का ये 4th मेडल है। इससे पहले भारत व्यक्तिगत स्पर्धा में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था, जबकि मिक्स डबल्स में जोशना चिनप्पा और विलावन संथिल कुमार की जोड़ी ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। और अब बात हॉकी पर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को एक रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया। मौजूदा चैंपियन ने अब एक और मेडल पक्का कर लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया यह सेमीफाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और मैच के अधिकांश समय में भारतीय टीम ने दबदबा बनाए रखा था। मैच के आखिरी हाफ में पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की कोशिश की, लेकिन आखिरी मिनट में अभिषेक के किए गए गोल ने सिर्फ पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाई बल्कि एशियन गेम्स के फाइनल का टिकट भी पक्का कर लिया है। भारत 3-0 की बढ़त के साथ आसान जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने वापसी करते हुए आखिरी क्वार्टर के शुरुआत में ही स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद अभिषेक ने आखिरी मिनट में निर्णायक गोल करके भारत को फिर से बढ़त दिलाई और टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है भारत का हॉकी में भी और अब भारत को हॉकी में भी पदक की उम्मीद होगी। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। एशियाई खेलों में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में 124 रन से श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने श्रीलंका को 170 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 9 ओवर और 5 गेंद में सिर्फ 45 रन ही बना सकी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 169 रन बनाए। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन जल्दी पवेलियन लौट गए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी महज 13 रन बनाकर आउट हुए। वैभव सूर्यवंशी ने पारी को संभालते हुए 38 रनों की दमदार पारी खेली। वहीं दूसरी ओर ईशान किशन ने मोर्चा संभाले रखा। ईशान ने 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 80 रन की पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका के थारिंदु रत्नायके और कप्तान सहान अराचिगे ने 2-2 विकेट चटकाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सिनेथ जयवर्धने, लसित क्रूसपुले और सोहन डी लिवेरा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। शीर्ष क्रम के आउट होने के बाद पूरे मुकाबले में श्रीलंका पर दबाव बना रहा। नुवानिदु फर्नांडो ने 11 गेंद में 15 रन बनाए, जबकि कप्तान सहान अराचिगे 9 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहा और श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 45 रन पर ही ढेर हो गई। भारत के जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट चटकाए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। फाइनल मुकाबले में अब भारत का सामना 3 अक्टूबर को पाकिस्तान से होगा, वहीं श्रीलंका कांस्य पदक मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बेहतरीन खेल प्रदर्शन दिखाया है भारतीय खिलाड़ियों ने और भारत को क्रिकेट से भी एक स्वर्ण पदक की उम्मीद होगी। पहले ही महिला टीम ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है इस प्रतियोगिता में और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। आज का खेल काफी बेहतरीन था, 45 रन पर ऑल आउट कर दिया श्रीलंका जैसी टीम को। आज कई इतिहास भी बने हैं विशेष, कैसा रहा भारत का प्रदर्शन और कौन कौन से इतिहास बनाए भारतीय टीम ने? भारतीय टीम का प्रदर्शन आज प्रशांत

0: बहुत ही शानदार रहा है और भारत डिफेंडिंग चैंपियन है इस प्रारूप में। और भारतीय टीम ने आज इतिहास रचते हुए मेंस टी20 इंटरनेशनल के किसी भी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल या फाइनल में रनों के लिहाज से अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। टीम इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले भारत ने टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया था। मेंस टीम टी20 इंटरनेशनल में 100 से ज्यादा रनों से अधिक सर्वाधिक जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड भी भारतीय टीम के नाम हो गया है। टीम इंडिया ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 11वीं बार 100 से ज्यादा रनों से जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने इस मामले में कनाडा को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 10 बार यह कारनामा किया था।
1: भारतीय टीम ने तो कई कीर्तिमान बनाए, लेकिन एक स्पेशल खिलाड़ी है भारतीय टीम में जिनका नाम है ईशान किशन। उन्होंने 46 गेंद पर 80 रन बनाए। और विशेष अगर ईशान किशन की बात की जाए तो जब भी बड़ा मौका होता है, चाहे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बात कर ले या फिर लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, अभी दिलीप ट्रॉफी उन्होंने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 100 लगाया था फाइनल में और कप्तानी करके टीम को जीता है। आज कैसा रहा उनका प्रदर्शन और कौन कौन से कीर्तिमान उन्होंने बनाए हैं आज?
0: प्रशांत, अगर ईशान किशन की बात करें या उनकी तारीफ करें तो बहुत ही कम शब्द पड़ जाएंगे उनके लिए, क्योंकि ईशान किशन जिस भी टीम से खेलते हैं उस टीम के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। अगर ईशान की आज बल्लेबाजी की बात करें तो उन्होंने मनीष पांडे का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ईशान ने 46 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 80 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के लगाए। भारत की ओर से नंबर 5 या उससे नीचे बैटिंग पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले मनीष पांडे ने साल 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 79 रनों की नाबाद पारी खेली थी।
1: और वैभव सूर्यवंशी की भी बात की जाए श्रोताओं, तो उन्होंने 21 गेंद पर 38 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 6 चौके शामिल थे। और आज जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा है, विशेष 45 रन पर ऑल आउट कर दिया है पूरी टीम को, गेंदबाजों ने कैसा किया आज प्रदर्शन?
0: गेंदबाजों ने आज पूरा डोमिनेट किया है प्रशांत। श्रीलंका जो कि कई बार भारत के सामने जो है बिखर चुकी है, कभी 55 रन कभी 59 रन, और आज न्यूनतम स्कोर पर जो है सिमट गई 45 रन पर 9.5 ओवरों में। जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करी जिन्होंने 2 ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं अक्षर पटेल ने भी 3 ओवर में 1 मेडन डालते हुए 8 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिला। वहीं अभिषेक शर्मा ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते हुए मात्र 5 गेंदों में 2 विकेट अपने नाम किए और 3 खिलाड़ी जो है वो रनआउट से आउट हुए।
1: उधर अगर एक दिवसीय क्रिकेट की बात की जाए तो भारत ने दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है और कई प्रमुख बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन
0: प्रशांत? कल का जो एक दिवसीय मुकाबला रहा वो रनों का अंबार था, क्योंकि वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 405 रन बनाए 50 ओवर में, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्कोर था। लेकिन भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 406 रन बनाए, जहां रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 133 गेंदों पर 223 रन बनाए। अंत में ऋतुराज गायकवाड़ ने 37 गेंदों पर 31 रन बना के पारी को अंत किया।
1: बेहतरीन प्रदर्शन उधर भी रहा है, भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। और अब बात तीरंदाजी पर। भारतीय कंपाउंड आर्चर गणेश मणि रत्नम थेरुनम ने पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में कांस्य पदक जीत लिया। गणेश ने वियतनाम के कांग डुंग धांग को 149-144 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.ear@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने

भी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्ति

0: नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1,000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है।

0: शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमान मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
2: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
3: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही है। एक रिपोर्ट।
4: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जानबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चाचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गयी, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
6: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहाँ 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
7: दिल्ली के बीन यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक

0: ये एक नया स्मारक बनाया गया है, राष्ट्रीय सैनिक स्मारक। स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
2: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है, बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगवन पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबू मारिनई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल है। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने की मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल गोबल ने रजत तथा स्किप में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए। मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम है चोरी चोरी।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी का लिखा गीत। तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है लव मैरिज।

0: तो दिल पे चले कटारी।
1: है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी।
0: तू झूम के चले तो दिल पे चले

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है। और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्य। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है जिद्दी।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया।

0: अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जाने अनजाने।

आइए सुने अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है आई मिलन की बेला।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आज और कल।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गो।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम का सर्टिफिकेट दिलवाया। बाद में असरार उल हसन उर्फ मजरू ने लखनऊ के तकमील उल तिब कॉलेज से यूनानी चिकित्सा की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे के

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरूह सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी

1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

0: तुझे।
1: दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया।

0: जो न कह सकता।
1: 24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आमी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। रात के 10 बजे ही आप सुनिए जापान में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के 20वें संस्करण की डेली हाइलाइट्स, दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैच पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
3: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगहुयाग गंगबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6

0: से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गयी। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन टोकटोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गयी। इससे पहले मानसी ने प्रीक्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़नेत्सोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाय फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रूहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
1: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में घसब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की मुरिसा दियान अश्वरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं, और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
3: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता, तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गयी। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। खुद से तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को

0: फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब एक दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच, 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हुटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट, जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी, जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो यू डोंट थिंक सो मच, वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम यू नो यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।
1: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: इंडिया सिक्योर्ड अ मेडल इन मेंस क्वाड्रेंट सिपक टॉकरा आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन देयर फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंट इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश्ड टॉप ऑफ देयर ग्रुप एंड आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम। अर्लियर इन द डे वी सॉ इंडिया डिफीट वियतनाम इन द मेंस क्वाड्रेंट ग्रुप ए मैच ऑफ द सिपक टॉकरा इवेंट। दे वन in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
1: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश थे, अधिकतम 2 निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया, हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही काइनन चेनई के साथ

0: मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
1: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
2: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
1: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इन जूडो यामिनी मौर्या'स कैंपेन एंडेड विद अ डिफीट इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम रेपेचेज एट द एशियन गेम्स। व्हाइल इंडियाज इनन गल्बी तकलम्बाम फर्स्ट बीट नेपाल्स पूनम श्रेष्ठा बाय इपो टू क्वालिफाई फॉर द क्वार्टर फाइनल्स। हाउएवर शी लॉस्ट बाय इपो टू नॉर्थ कोरिया सोंग हुई मून इन द क्वार्टर फाइनल्स। सोंग्स रीचिंग द फाइनल ओपन्ड अप द रेपेचेज राउट फॉर तकलम्बाम। द इंडियन वाज शेड्यूल्ड टू फेस चाइनाज जिंग टैंग इन द रेपेचेज राउंड। हाउएवर द चाइनीज जूडोका वाज डिस्क्वालिफाइड before the bout. Consequently, Taklambaam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inan Gambhi Taklambaam lost the bronze medal bout in the women's 70 kilogram event, getting defeated by Anujin Uzi, who won the bout by Waza Ari.
1: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही है साक्षी मंडवाल।
3: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144 while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
1: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेज तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
3: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
1: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
1: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
1: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है।

0: वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वही रहेंगी, भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पर हमारे साथ रहिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैच पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टॉकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: ये आकाशवाणी बांसुड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। 10:20 हुए हैं, ये चीज सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गुलजार के बोल है संगीत भूपेंद्र का। फिल्म है रूडाली।

अगला किताब सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, साजन बिन सुहागन फिल्म का से

अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की ही आवाज में, उषा खन्ना का संगीत है, फिल्म है एक फूल एक भूल।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे फकीरा फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है। संगीतकार और गीतकार है रविंद्र जैन।

फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, बोल शैलेन्द्र के हैं, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म है गीत।

चार लगे तो आप सुनेंगे मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में। साहिर के बोल है, संगीत जयदेव का।

छोटी सी बात फिल्म से अभी आपने ये सुना, आशा भोसले और यशुदास की आवाज में। योगेश के बोल थे, संगीत सैन चौधरी का। अगला गीत आप सुनेंगे आशा भोसले की आवाज में, फिल्म है सत्ते पे सत्ता।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत आप सुनेंगे सवाल फिल्म से अनवर और लता मंगेशकर की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है बोल आनंद बख्शी के।

0: लता मंगेशकर और अनवर की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर यही थमता है। रात्रि के 11 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर

0: निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और एक विशेष निगरानी टीम 2400 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की ये उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति की देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। एफएम मेन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज की प्रसारण सभा अब यही समाप्त होती है। कल प्रातःकालीन 5:53 पर फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।